সুপ্রভাত। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सनसिटी चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक्तमवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 21वीं तिथि। तदनुसार तारीख 11 जून सन 2026। इस वक्त सवेरे के 5:57 हो चुके हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम FM सनसिटी से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच

0: मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। सवेरे के 6:05 हुए हैं। अब से लगाकर सवेरे 8 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती से रिले होने वाले कार्यक्रम।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। झरोखा भी अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस। प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2:00। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 से तय करेंगे सुरीला सफर। दो बजकर 30 पर सदाबहार नगमे। 3 सुनिए सखी सहेली। 4 हेलो फरमाइश। 5 छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे। लेखन है चंद्र भारद्वाज का। निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 10 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

भरत को यह प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकेयी तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। यह सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में यह विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत होती है। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है,
2: हाँ।
1: उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: दिल पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है। और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत जरूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोजर भी रहे हैं। अन्ना जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका

0: रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
1: जी,
0: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं। और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
1: अच्छा।
0: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
1: जी,
0: लाएंगे
1: जी।
0: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीजें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूजिक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले ऐसे एक साथ बिठाए,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है, तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
1: जी।
0: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
1: बहुत सुंदर
0: तो
1: रचना है,
0: उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
1: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
0: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध

0: किया जा सकता है।
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी,
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं, तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूंगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है वो ताल, जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया, तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा। जैसे पृथ्वी जो है वो सूरज के
0: इर्द गिर्द चक्कर लगाती है,
1: तो उसमें भी एक ताल है
0: जी।
1: पूरे सृष्टि में जब अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है
0: जी।
1: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
0: जी जी,
1: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
0: जी,
1: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो
0: जी। हाँ जी,
1: तो तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
0: क्या बात है।
1: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है
0: जी,
1: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है, मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है
0: जी,
1: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है
0: जी जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
1: पलकों की छाव में, इस फिल्म का, कोई मेरे माथे की बिंदिया।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
1: हाँ,
0: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही गीत।

पलकों की छांव में इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे

0: आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविंद्र खासनीश जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीश। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

सुलोचना कदम की आवाज में आप सुन रहे थे ढोलक फिल्म से ये गाना श्याम सुंदर का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना अफसर फिल्म से। सुरैया की आवाज में नरेंद्र शर्मा के बोल, संगीत है सचिन देव बर्मन का।

सुना रहे दौर के सदाबहार गानों की महफिल, सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप नौजवान फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रही थी सजा फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी, हेमंत कुमार की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है हम हेरा ही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमें राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है खेल खेल में, इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बावरा के बोल, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

सीता और गीता इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे लाखों में एक, इस फिल्म से ये गाना। आनंद बख्शी के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल

0: के का बाद।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

करके इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मौसम फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गुलजार की बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
3: कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म से। मुकेश और कंचन की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं अपने रंग हजार इस फिल्म से, किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अनजान के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एफएम बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री

0: बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और

0: के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
3: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरू। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। आइए सुनिए।

AR रहमान, नरेश अय्यर और साथियों की गुल आवाजें थी। फिल्म रंग दे बसंती से प्रसून जोशी का लिखा हुआ गीत था AR रहमान की धुन। फिल्म संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के FM सन सिटी चैनल के साथ। कभी अलविदा ना कहना, इस फिल्म से सफाकत अमानत अली और शंकर महादेवन के साथ आवाज है कुरलिसा की। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत है, शंकर एहसान लॉय का।

फिल्म संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंचुरी चैनल के साथ आप सुन रहे हैं। केदारनाथ फिल्म से अगला गीत हमने लिया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की युगल आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा हुआ और अमित त्रिवेदी का संगीत है।

फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM संजीडी चैनल है। अगला कार्यक्रम हमारे प्राथमिक चैनल से रिले होगा।

0: જય હો, શુભ હો માય ડિયર રેડિયો લવર્સ, શુભ વાણી, લાભ વાણી, મધુર વાણી ઓર આપ સબકી ફેવરેટ વાણી આકાશવાણી જોધપુર પર શરૂ હો ચલા હૈ મોર્નિંગ ઇન્ફોર્મેશન પ્રોગ્રામ. નમસ્કાર. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी बात से, और आज की अच्छी बात यह है श्रोताओं कि अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, और हाँ प्रार्थना भी अच्छी कीजिए. और प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं होता श्रोताओं, जो मिला है उसके प्रति आभार प्रकट करना है.
1: तो आभार प्रकट करने की इस कड़ी में हम भी आभार प्रकट करते हैं हमारी सार्थक टीम का, और परिचय करवाते हैं आपसे हमारी आज की टीम का.
0: श्रोताओं, एचपीटी पर है चंद्राराम पटेल और प्रकाश.
1: कंट्रोल रूम से हमें साथ मिल रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का.
0: वहीं एफएम ट्रांसमिशन पर है प्रवीण कुमार.
1: एफएम ट्रांसमिशन पर अनाउंसर ऑन ड्यूटी नेमी चंद.
0: और श्रोताओं, अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए हमें म्यूजिकल ट्रैक सुनाएंगी सोनिया.

0: और इन सभी के साथ मैं कविता पंवार
1: और न्यू न्यू नूतन सोनी।
0: और अब वो आधा घंटा जहां हम पीछे मुड़कर नहीं देखते, वर्तमान की ऊर्जा में जीते हैं, तो सुबह सवेरे सुनते हैं गीत नए नवेले।

0: श्रोताओं, म्यूजिकल ट्रैक के बाद आइए फिर से कुछ बातें करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब डर पूरे गांव पर राज करता था ना, तो एक कहानी, एक किरदार उस डर को हंसी में बदल देता था। ठीक वैसे ही जैसे 2018 में स्त्री फिल्म ने किया था, 2024 में ये फिल्म दोबारा आई स्त्री 2 के रूप में और साथ में लाई एक बेहद खूबसूरत गीत, तुम्हारे ही रहेंगे हम।
1: सुनने में तो ये लगता है दोस्तों कि रोमांटिक गाना है, पर गौर कीजिएगा, ये सिर्फ इश्क नहीं, ये वादा है। वादा वो कि डर के साए में भी हम साथ रहेंगे। और इतिहास में भी जब जब समाज डरा, लोक गीतों ने, कहानियों ने और कई सारे कलाकारों ने उन्हें हौसला दिया और हौसलों से बांधे रखा। ये गाना भी वही काम कर रहा है, डर को हल्का करना और रिश्तों को मजबूत करना।

0: और अब चलते हैं 1942 की तरफ जब अंग्रेजों के खिलाफ हर गली में एक धुरंधर जो छुपा बैठा था वो सामने आया।
1: बिल्कुल,
0: न नाम न चेहरा, पर मकसद एक, आजादी। और अभी की हाल ही की फिल्म गहरा हुआ धुरंधर उसी जज्बे की एक तस्वीर को उठाती है और इसका एक गाना है, मिशन बड़ा है पर दिल शांत रखो।
1: और सब जैसे उस रंग में रंग गए, गाने के रंग में। और सोचिए, भगत सिंह जेल में भी कविता लिखते थे, क्योंकि युद्ध सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से भी लड़ा जाता है। श्रोताओं,
0: तो ये गाना भी वही याद दिलाता है, जब काम बड़ा हो तो शोर कम करो, फोकस अंदर रखो और वार बाहर होगा।
1: वाह,
0: तो अगर आप अभी, आपके सामने कोई टारगेट है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई डेडलाइन है, कोई मुश्किल है, तो इस गाने को सुन लीजिए ना। ये कहता है, गहरा हो जाओ पर धीरज मत खो।

0: बात करते हैं अब पर्यावरण के श्रोताओं। जब जब इंसान ने प्रकृति को लूटा तो प्रकृति ने उसे सबक सिखाया, ये आपने नोट किया ही होगा। और 2023 में आई फिल्म जवान में शाहरुख ने कहा था, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो शाहरुख कहते हैं कि बेटे को हाथ लगाओगे तो बाप से भिड़ोगे। और 2025 में आई कॉकटेल फिल्म और इसका गाना आपने सुना ही होगा कि अगर धरती को बचाओगे तो आने वाली नस्लें तुम्हें सलाम करेंगी।
1: ये गाना एक सिर्फ डांस नंबर नहीं है, गौर से सुनेंगे तो इसकी बीट्स के नीचे एक मैसेज छुपा है, प्लास्टिक कम करो, पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि पर्यावरण की लड़ाई में कोई स्टंट डबल नहीं होता, जो करोगे वही पाओगे। तो उठिए, एक छोटी सी शुरुआत कीजिए, एक प्लास्टिक बॉटल कम कीजिए, एक पौधा ज्यादा लगाइए, बाकी का काम तो ये गाना खुद ब खुद कर ही देगा।

दोस्तों, गीत कोई भी हो, नए नवेले हो या पुराने हो, हर एक गीत में छुपा है कोई ना कोई ऊर्जा छुपी है। एक हौसला देते हैं, एक संदेश देते हैं, और कभी-कभी ये सबक भी देते हैं। गीतों को अगर आप ध्यान से सुने तो आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, जो पाठ पाठशाला पढ़ाती है, जो ज्ञान जिंदगी बांटती है, वही कहीं ना कहीं शब्दों में उकेर कर गीतकार आपके सामने एक तस्वीर पेश करता है।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में जयपुर केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक

समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर, आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस बैठक का विषय 2027 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास रखा गया है। ये हर भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। बैठक में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा देश में स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। श्री शर्मा कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में रामजल सेतु लिंक, यमुना जल समझौता, जयपुर मेट्रो फेज 2 और रिफाइनरी जैसी ऐतिहासिक परियोजनाओं से राजस्थान में विकास का नया युग शुरू हुआ है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गों को मिल रहा है। पाली के रहने वाले किसान रामचंद्र ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कुसुम बी योजना के तहत 5 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। इससे बिजली की बचत होने के साथ ही खेती में लागत भी कम हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: भारत सरकार की जो वाटरशेड की स्कीम है उसके तहत मैंने एक डिक्की बनाई, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कुसुम की योजना के तहत ये 5 किलोवाट का सोलर लिया जिसकी लागत 3,05,000 है, लेकिन सरकार किसानों को मात्र 1,30,000 उपलब्ध करा रही है। इस योजना के लाभ से ये कृषि कार्य में सुगमता आने लगी है एवं खेती की लागत में बहुत कमी आ गई। और सरकार ने जो ये सराहनीय कार्य किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। वे अब से कुछ देर बाद आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस ट्रांसमीटर के उद्घाटन के साथ ही प्रदेश में कुल एफएम ट्रांसमीटरों की संख्या 39 हो जाएगी। वर्तमान में आकाशवाणी के 38 केंद्र हैं। ये राज्य की 94% क्षेत्र को कवर करते हैं और 99% आबादी तक आकाशवाणी की पहुंच है। कार्यक्रम के बाद श्री वैष्णव एमएनआईटी जाएंगे। इसके बाद वे दुर्गापुरा स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से देश में हुए ऐतिहासिक विकास, सुशासन और जनहित के कामों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आग जैसी किसी भी आपात

0: स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखना है। इस ऑडिट के तहत स्टेशन भवनों, बिजली व्यवस्था, वातानुकूलन, आपातकालीन निकास, फायर फाइटिंग सिस्टम और पानी की उपलब्धता सहित सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा इंतजामों की गहन जांच की जाएगी। स्टेशनों की जांच के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों की संयुक्त टीमें बनाई जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य अग्निशमन विभाग और विशेषज्ञ एजेंसियों का सहयोग भी लिया जाएगा। ऑडिट के दौरान सुरक्षा मानकों का कड़ाई से आकलन किया जाएगा। और अब मौसम। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल कुछ क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। इनमें अलवर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और भरतपुर के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में 14 जून तक तेज आंधी और बारिश का दौर बना रह सकता है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कई क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर उत्तर पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पहले प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर लगातार बना हुआ है। कल श्रीगंगानगर 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जबकि 19 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण की सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार को देखते हुए यह फैसला किया गया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के सदस्य सचिव कपिल चंद्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण हवा की गुणवत्ता में यह सुधार दर्ज किया गया है। ग्रैप से जुड़ी उपसमिति प्रदूषण की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है और भविष्य में परिस्थितियों के अनुसार आगे के आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। डाक विभाग ने युवाओं और छोटे व्यापारियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी योजना 2.0 शुरू की है। पाली डाक विभाग के अधीक्षक तरुण कुमार शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग, पिकअप और डिलीवरी जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस और ट्रैक्ड पैकेज सर्विस की बुकिंग का भी काम होगा।
1: इस योजना के तहत स्पीड पोस्ट या पार्सल बुकिंग, पिकअप, कलेक्शन और पार्सल डिलीवरी, इंटरनेशनल ईएमएस, ईएमआई तथा इंटरनेशनल ट्रैक पैकेज सर्विस जैसी सेवाओं की बुकिंग की जा सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य डाक सेवाओं में आमजन की भागीदारी बढ़ाना है, ई कॉमर्स क्षेत्र में डाक विभाग की पहुंच मजबूत करना है और रोजगार के अवसर देना है। पाली के युवा और देश के युवा, राज्य के युवा अधिक से अधिक इस योजना से जुड़े और डाक विभाग में अपनी भागीदारी भी बढ़ाए और रोजगार के अवसर भी डाक विभाग के माध्यम से प्राप्त करें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर। आकाशवाणी जयपुर परिसर से जैसलमेर के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। भारतीय रेलवे देश भर के स्टेशनों पर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए फायर सेफ्टी ऑडिट कराएगा। और नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में आज से मौसम बदलने की संभावना, 13 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: समाचारों के बाद आप सभी सुधी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटते हैं तब ये ख्याल आता है और ये पता चलता है कि हर दिन कितना महत्वपूर्ण है, हर दिन से जुड़ी कितनी सारी बातें हैं जिन्हें बार बार दोहराया जाए तो वो आपके और हमारे जिंदगी का आदर्श बन सकती है। और कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जानकारी दर्ज करवाती हैं, और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इतिहास में आज क्यों है खास।

0: तो दोस्तों चलते हैं 1770 की तरफ, जिसमें कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ की खोज की थी।
1: सत्रह सौ छिहत्तर में आज ही का दिन अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी।
0: बात करें 1866 की, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी श्रोताओं इस दिन। इससे पहले आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था।
1: ब्राजील में आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि 1921 में आज ही के दिन ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला।
0: बात करें 1940 की, तो यूरोपीय देश इटली ने मित्र देशों के खिलाफ लड़ाई की घोषणा की थी श्रोताओं।
1: उन्नीस सौ पचपन में आज ही का दिन पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज की उड़ान भरी गई थी।
0: अब बढ़ते हैं 1964 की तरफ, जब प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों की भस्म को पूरे देश में बिखेरा गया था।
1: उन्नीस सौ सत्तासी में आज का दिन, जब 160 वर्षों में पहली बार मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी।

0: चलते हैं 11 जून 2006 की तरफ, जहां नेपाली संसद ने आम राय से नरेश के वीटो अधिकार को समाप्त किया था।
1: और 2008 में आज ही के दिन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। और 2010 में आज ही के दिन अफ्रीका ने 19वें फुटबॉल विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी की और ये पहला मौका था जब अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

0: ख्वाहिशें, ख्वाब, खलिश, उम्मीदें, रंजो गम, कुछ भी नहीं होता इनके पास, बस एक बचपन है और उसे खेलना है। श्रोताओं, अनुमान है कि आज दुनिया भर में लगभग 16 करोड़ बच्चे खेलने या सीखने के बजाय काम कर रहे हैं। अपने दादा दादी की पीढ़ी में याद है ना, लगभग 3/4 बच्चों के मुकाबले आज केवल 4 में से केवल एक बच्चा ही जो है गली के बाहर खेलता है, मस्ती करता है, जबकि उनके दादा दादी की पीढ़ी के लगभग 3/4 बच्चे बाहर खेलते थे। तो इसी आंकड़े में सुधार के लिए 11 जून यानी कि आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिवस पर खास तौर पर बात चीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ फोन आउट माध्यम से जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनील प्रसाद भाटी, जो कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के। ये नेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं श्रोताओं, और संतोष ट्रॉफी विजेता भी हैं और साथ ही साथ फुटबॉल कोच भी है। आइए हम उनसे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हेलो।
1: हेलो
0: जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी जोधपुर के केंद्र से जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।
1: जी थैंक यू मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने मेरे को आज अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मेरे को इनवाइट किया।
0: जी सर, हम भी बहुत एक तरह से खुशकिस्मत है कि हम आपसे बात कर रहे हैं और आपसे हमको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है अभी बातचीत के दौरान।
1: जी मैम,
0: और आपको अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं सर।
1: जी मैम, आपको भी और जितने भी श्रोतागण हैं उन सभी को भी अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है उसकी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा, संतोष ट्रॉफी में मैंने एज अ प्लेयर पार्टिसिपेट किया है। राजस्थान जो है वो संतोष ट्रॉफी विनर कभी रही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल का होता है। तो एज अ प्लेयर पार्टिसिपेट किया है राजस्थान यूनिट को मैंने।
0: जी सर, वो भी बहुत प्राउड की बात है सर हम सबके लिए। तो सर सबसे

0: पहले हम जानना चाहेंगे कि आप खेल से कब से जुड़े हैं सर?
1: मैम, खेल से जुड़ने की बात अगर करते हैं तो मैं बेसिकली जो है स्पोर्ट्स फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। मेरा फादर जो है वो खुद स्पोर्ट्स मैन रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर थे, और इवन उनका रिक्रूटमेंट भी एज ए स्पोर्ट्स कोटे से ही हुआ है। तो खेलने कूदने की तो जो ये एक है वो तो बचपन से ही बच्चों में होती है मोबिलिटी के तौर पर। बट स्पोर्ट्स के अंदर जो एक जाने की जो अपॉर्चुनिटी मिली थी तो शुरू से ही इंस्पिरेशन मिली थी फादर साहब से,
0: जी
1: और
0: सर,
1: वो भी खुद फुटबॉल के प्लेयर थे तो फुटबॉल खेल के अंदर ही उन्होंने परस्यू किया जाने के लिए।
0: जी सर, यानी कि आपको पिछली जनरेशन से ही ये खेल विरासत में मिला है। तो सर, आज की पीढ़ी के बारे में आपका क्या कहना है? आज की जो पीढ़ी के बच्चे हैं, वे खेल में इतनी रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं?
1: इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन तो अभी ये जो एक मोबाइल क्रांति आई है ये इसका एक बड़ा ड्रॉबैक है जो नए जो बच्चे हैं उन पर। तो वो क्या है कि खेलों के मैदान की तरफ ना जाकर घर पे ही ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, उसी में अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो है उसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो खेल मैदान की तरफ उनका रुझान कम रहता है और उसमें कहीं ना कहीं अभिभावकों का भी रोल होता है कि वो उनको मोटिवेट करें और ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं इससे थोड़ा दूर एक सर्टेन टाइम के लिए यूज करने के लिए उनको गाइड करें। और मैक्सिमम टाइम इवन एक दिन के अंदर कम से कम 2 से 2.5 घंटा इवनिंग में या मॉर्निंग के अंदर खेलों की तरफ, आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ जो है उनको अग्रसर करें, उनको मोटिवेट करें, तो उनकी बॉडी के अंदर जो मोमेंट्स वगैरह है, मोबिलिटीज, उनका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो भी प्रॉपरली फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स से ही होना है। तो ये अभिभावकों को थोड़ा सा उनको गाइड करने की जरूरत है आज के समय में बच्चों को, और उसकी इम्पोर्टेंस जो है उनको समझाना बहुत जरूरी है।
0: जी सर, जैसा कि देखा गया है कि आजकल जो है सब आउटडोर गेम्स के इम्पोर्टेंस तो जानते हैं और खेलते इंडोर गेम्स हैं सर।
1: वो है एक एक्चुअल में आउटडोर गेम्स जो होते हैं उनके अंदर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड, जो मोटर एबिलिटीज होती है उनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। और फिजिकल वर्कआउट जो है या फिजिकल एफर्ट्स की अगर बात करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। तो बच्चा थोड़ा सा क्या है कि मेंटली इन चीजों से थोड़ा सा एक फियर की वजह से वो आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ कम रुझान रखते हैं। इंडोर एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट सनलाइट वगैरह वो नहीं आती है तो वो थोड़ा सा धूप से बचने के लिए उसके हिसाब से थोड़ा सा इन चीजों से वो इंडोर एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। बाकी आउटडोर एक्टिविटीज जो है, इंडोर एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज दोनों है तो स्पोर्ट्स ही। और जितने स्टेमिना एंड्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द गेम, कौन सी एक्टिविटीज आप कर रहे हो या कौन सा स्पोर्ट्स आप खेल रहे हो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो और दूसरी चीज इंटरेस्ट पर भी निर्भर करता है। तो बच्चे इंटरेस्ट के हिसाब से इंडोर और एक्टिविटीज के अंदर, आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं।
0: तो सर, ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे खुद खेलना पसंद करें, उनकी रुचि जागृत हो, इंटरेस्ट उनमें खुद ब खुद पैदा हो, तो क्या करना चाहिए उसके लिए?
1: एक तो ये जो अब ये जो बच्चों के अंदर खेलों के प्रति जो आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर जो रुझान कम होने का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि आजकल जितनी भी जो सोसाइटीज है उन सोसाइटीज के अंदर प्लेग्राउंड्स और जो है ये चिल्ड्रन पार्क है जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस हो तो उसकी कमी जो है वो काफी है। और पुराने समय के अंदर सारे जो भी सोसाइटीज होती थी उनमें काफी स्पेस होता था, ग्राउंड घर से दूर ज्यादा नहीं होते थे, बच्चे घर से बाहर निकलकर गली में भी क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल खेल लेते थे, वॉलीबॉल खेल लेते थे, बैडमिंटन खेल लेते थे। आजकल तो सोसाइटीज और शहरों की बात करें तो व्हीकल्स इतने हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको खुला स्पेस नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से उनका रुझान जो है घर से बाहर एक्टिविटी में कम रहता है और एक घर के अंदर ही जो एक्टिविटीज जो है वो भी दूसरे कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा ये रीजन है। और दूसरा है कि स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंस है तो उस स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस को बच्चों को समझाना बहुत जरूरी है।

0: क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इसके लिए अभिभावकों को भी इनिशिएट लेना पड़ेगा और जो स्कूल टीचर्स हैं स्कूल्स हैं वहाँ पे भी फिजिकल एक्टिविटीज जो है वैसे होती है, ये स्पोर्ट्स जो प्लानिंग है उसके अंदर ये पार्ट होता है, तो बच्चों को स्कूल के अंदर भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक जो एज होती है ग्रास रूट लेवल की जो एज होती है 8-14 वर्ष की आयु होती है, उसके अंदर जो है बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है और लर्निंग कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, पर थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है और इम्पोर्टेंस समझानी होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्पोर्ट्स की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं।
1: बिल्कुल सर, जो खेल का बीज है वो बचपन से ही बच्चों में पड़ता है, लेकिन ये जो बचपन है ना सर वो बहुत एक तरह से बहुत छोटा होता जा रहा है, तो बच्चों में बचपन को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए सर?
0: मैं बच्चों में बचपन जिंदा रखने के लिए जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या अभिभावक हैं उनको भी जो है वो थोड़ा सा बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके साथ में जो अपनी जो डेली रूटीन का जो टाइम पीरियड है या है उसमें से कुछ समय जो है उनके साथ में स्पेंड करने के लिए निकालना पड़ेगा, और जो बचपन के अंदर जो स्पेशली जो छोटी मोटी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर हो तो वो उनके साथ में इन्वॉल्व होके एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट जो है वो बच्चों का जो बचपना है वो जिंदा रह सकता है।
1: कहने का मतलब है बड़े जो है केवल बच्चों को ये कहें ना कि मोबाइल छोड़ दो खेलो, उनके साथ खुद खेलें।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, अगर एक कहना और करना
1: जी।
0: कहने से ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, करने से ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है।
1: बिल्कुल
0: तो उसके साथ में अगर अपन अटैच होके उनके साथ में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो वो थोड़े से मोटिवेट होकर उसकी इंटरेस्ट या उसकी रुचि को बढ़ाया जा सकता है।
1: क्योंकि बच्चे जो है फॉलो करते हैं, जो बड़े करते हैं वही बच्चे करते हैं देख
0: जी मैम, क्योंकि वो एक एज ही ऐसी होती है कि आप उसको जैसा एटमोसफेयर या क्लाइमेट जो एटमोसफेयर या माहौल जो प्रोवाइड करोगे तो वो उसी के अनुसार उसकी एक्टिविटीज जो है वो एग्जीक्यूट होगी।
1: और सर एक हम जानना चाह रहे थे कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स फील्ड में बच्चों को प्रोफेशनल करियर के तौर पर क्या क्या अवसर मिल सकते हैं?
0: मैम प्रोफेशनल करियर के अंदर करियर की बात करते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर आप प्रॉपरली स्पोर्ट्स के अंदर ही अपना प्रोफेशन या अपना करियर बनाना चाहते हो तो एक जो एक ग्रास रूट एज है उसके अंदर आप कड़ी मेहनत करके ग्राउंड के अंदर कोई भी एक स्पोर्ट्स जिसमें आप रुचि रखते हो और उसमें अपना अच्छा अचीवमेंट अचीव करना चाहते हो तो आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट प्रैक्टिस के साथ साथ में हार्डवर्क करेंगे तो एक अच्छे प्लेयर की एबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस में भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो वो एनहांस होती है, तो धीरे धीरे उसको जो एक प्रोफेशनल प्लेयर के तौर पर उनको कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे, प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो एमेच्योर हो तो वो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो धीरे धीरे जैसे अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं जैसे इंडिया के अंदर क्रिकेट का बहुत ज्यादा वो है एक क्या कहते हैं माहौल है तो बच्चे क्रिकेटर ज्यादा पसंद करते हैं तो
1: और अभी वैभव सूर्यवंशी से सब बहुत इंस्पायर हो रहा है,
0: जैसे अभी आईपीएल के अंदर जो 15 साल का जो एक लड़का प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी उसने बड़े बड़े धुरंधर जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के साथ में जो उसने व्यवहार किया है मतलब एज अ प्लेयर तो वो उसकी एक हिडन जो उसका टैलेंट है उस टैलेंट को प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिला है और उसके जो कोचेज है उन कोचेज ने उसको जो पॉलिश किया है तो वो उसी का आउटपुट है, तो एज अ प्लेयर आज 15 साल की उम्र में कौन इतने बड़े एक प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करता है और वो भी परफॉर्म भी ऐसा कि मतलब जो बड़े बड़े दिग्गज जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जो पर्सनैलिटीज हैं वो भी मतलब उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उन्होंने अपना जो है वो करियर स्टार्ट किया है तो एज अ प्लेयर भी उसमें प्रोफेशनल करियर के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उसके अलावा एज अ प्लेयर के बाद में और भी स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ पाठ्यक्रम है सिलेबस हैं कुछ डिग्री डिप्लोमास भी होते हैं।

0: तो आप उनको उसके अंदर अपीयर होकर वो डिग्री डिप्लोमा करने के बाद में एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर है, स्पोर्ट्स कोच है, स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, या इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट और ये योग इंस्ट्रक्टर हैं, तो इस तरीके से भी आप अपना करियर जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर बना सकते हैं।
1: जी
0: तो
1: सर,
0: बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल खेलना रिक्रिएशनल करने के लिए ही या रिक्रिएशनल का ही एक पार्ट है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आप अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो एज अ प्लेयर भी आप अपना करियर बना सकते हो, और एज अ प्रोफेशनल करियर एज अ टीचर कोच स्पोर्ट्स मैनेजर भी आप अपना करियर जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर आप बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सर। सर आपका फेवरेट इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट कौन सा रहा है?
0: फेवरेट तो मैम जब इनिशियल लेवल पर जब छोटे थे गली क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट से ही जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ जो अपना रुझान हुआ था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे क्योंकि फादर साहब फुटबॉलर थे तो उन्होंने बोला भाई खेलना ही है तो फुटबॉल खेलो, तो फिर फुटबॉल के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो फेवरेट गेम तो फुटबॉल ही है, और फुटबॉल आज जिस मुकाम पर मैंने अपना प्रोफेशनल करियर जो बनाया है या तय किया है वो ड्यू टू द फुटबॉल ही है। तो आउटडोर एक्टिविटीज के अंदर तो फुटबॉल है ही है, इसके अलावा इंडोर एक्टिविटीज के अंदर जो है वो टेबल टेनिस जो है वो और चेस जो है वो है।
1: जी सर, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी हमको मिली और श्रोताओं को भी मिली। अब चलते चलते हम जानना चाहेंगे कि आपका कोई पसंदीदा गीत है जो हम आपको सुनवाना चाहेंगे सर।
0: जी मैम, अगर क्योंकि आज वैसे एक 11 जून है और आज बहुत बड़े दो स्पेशल इवेंट है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो खेल दिवस है वो है ही, वो तो है ही है, इसके साथ में आज ही से जो है वो 11 जून से वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो रहा है,
1: जी सर,
0: तो ये भी एक बहुत बड़ा वो अचीवमेंट है, इवेंट है कि 11 जून जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है उसी दिन फीफा वर्ल्ड कप जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है। तो और इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एक ही सॉन्ग मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर वो आप प्ले कर सकते हो तो खेलो इंडिया वाला जो थीम सॉन्ग है।
1: जी सर, हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सभी मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी थैंक यू मैम।
1: धन्यवाद सर।

0: डिवाइस को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
6: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
7: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
8: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
9: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
10: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
11: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस।

0: सॉफ्ट आन जोधपुर।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जो आज पर्यावरण से जुड़ा रहता है और आज का सेगमेंट है
4: बोहेल वेल।
3: बोहेड वेल, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये आर्कटिक और सब आर्कटिक के ठंडे पानी की रानी कहलाती है। जैसे ब्लू वेल धरती का सबसे बड़ा जीव माना जाता है तो बोहेड वेल उससे छोटा। और उम्र में बोहेड वेल दादाजी कहते कहलाती हैं और 200 साल तक जीती हैं। 200 साल यानी ये इनकी खोपड़ी जो है वो 5 मीटर तक लंबी होती है। बर्फ तोड़ने के लिए काम आती है। हम सड़क पर गड्ढा नहीं कर पाते और ये 60 सेंटीमीटर मोटी बर्फ तोड़कर सांस लेती है दोस्तों। पर अब आते हैं इन पर मंडराते हुए खतरे पर। तो बोहेड वेल को इंसान ने नहीं, इंसान के कचरे ने घेर रखा है जिसका नाम है प्रदूषण।
4: प्लास्टिक और माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं ना दोस्तों, वो जो है बोहेड वेल फिल्टर फीडर है और समुद्र का पानी छान कर खाती है। साथ में माइक्रोप्लास्टिक भी उनके अंदर चला जाता है। इससे जो है उनका पेट खराब हो जाता है और उनके जो हार्मोन्स है ना वो गड़बड़ हो जाते हैं और बच्चों का विकास रुक जाता है। इसके साथ ही तेल और जो काफी सारे रसायन है वो भी उनको नुकसान पहुंचाते हैं। आर्कटिक में तेल ड्रिलिंग बहुत बढ़ रही है दोस्तों, जिससे तेल के रिसाव से बोहेड की त्वचा जल जाती है और भोजन जो है वो की चेन जो है भोजन की उनकी जो चेन है वो जहरीली होती जा रही है। श्रोताओं,
3: और शोर और प्रदूषण का भी प्रभाव देखा जाता है। जैसे जहाज सोनार बर्फ तोड़ने वाले जहाजों का शोर बोहेड की आवाज को दबा देता है। ये वेल 20 किलोमीटर दूर तक एक दूसरे से बात करती है और शोर इनका रास्ता भटका देता है। ये इस शोर की वजह से खाना नहीं ढूंढ पाती।
4: और बोहेड वेल मरने पर जो है समुद्र की गहराई में डूब जाती है। उनका शरीर सैकड़ों साल तक कार्बन को समंदर में दबाए रखता है। इसे वेल फोल कहते हैं श्रोताओं। ये बोहेड वेल 33,000 पेड़ों जितना कार्बन स्टोर कर सकती है
3: और ये गहरे पानी से खाकर ऊपर की ओर आती है और मल मूत्र के जरिए पोषक तत्व सतह पर लाती है। ये फाइटोप्लैंक्टन को बढ़ाता है और फाइटोप्लैंक्टन ही समंदर का 50% ऑक्सीजन बनाता है। यानी हम जो सांस लेते हैं उसका श्रेय बोहेड को भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाता है।
4: और ये बोहेड वेल है ना दोस्तों, ये फूड चेन को कहीं ना कहीं बैलेंस करके रखती है। ये क्रील और छोटे जीव खाती है। अगर बोहेड न होना तो क्रील बढ़कर समंदर का संतुलन जो है वो बिल्कुल बिगाड़ देती है। तो दोस्तों, पिघलता बर्फ उनके आवास को निगल रहा है।
3: तो अगली बार जब प्लास्टिक की बॉटल फेंके तो जरूर सोचेगा कहीं वो आर्कटिक में किसी बोहेड के पेट में तो नहीं जाएगी। ये सबसे बड़ा संतुलन की ओर आपका पहला कदम होगा।
5: सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
6: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
7: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे ट्रिप पे, अरे वाह।
8: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
11: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने

0: इस प्यारे से नगमे के बाद श्रोताओं अब कर लेते हैं थोड़ी सी काम की बात। दोस्तों अभी माहौल चल रहा है छुट्टियों का और बच्चे अपनी मस्ती में मस्त हैं, लेकिन क्या आपने नोट किया कि मस्ती करते करते ही उनका मूड चेंज हो जाता है। खेलना या बात करना अचानक से बंद कर देते हैं, मुंह फुला लेते हैं और वो भी बिना किसी खास वजह के। श्रोताओं वे ऐसा करते हैं मूड स्विंग्स की वजह से। बच्चों के जो मूड स्विंग्स हैं यानी कि उनका भावनात्मक उतार चढ़ाव, उसके पीछे उनके फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, उनका एक अपना तनाव हो सकता है, भूख या नींद की कमी हो सकती है और इसे सही करने के लिए बच्चों की भावनाओं को समझना पड़ता है श्रोताओं। उन्हें खुलकर बात करने का मौका देना होता है और एक उनका निश्चित रूटीन बनाना जरूरी है श्रोताओं छुट्टियों में भी, और ज़रूरत पड़े तो उन्हें आराम भी देना चाहिए, उन्हें कंटिन्यू क्लासेस में ना लगाएं। और
1: ये बच्चों में जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, उसका कारण कई सारे होते हैं। सिर्फ ये नहीं कि वो खेलना नहीं चाहते या ये नहीं कि वो घर से

0: बाहर अच्छा अनुभव नहीं करते। उसके पीछे जो प्रमुख कारण देखे गए हैं उनमें है हार्मोन्स का बदलाव, शारीरिक जो ज़रूरतें उनकी होती हैं जैसे भूख लगना, थकान होना, नींद पूरी ना होना, चिड़चिड़ापन उसकी वजह से भी हो सकता है, तनाव और दबाव वो किसी भी तरह का हो सकता है, दोस्तों का, परिवार का, स्कूल का या और किसी भी तरह का।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: तो ये सब मूड स्विंग्स के कारण हो सकते हैं, इसको नियंत्रित कैसे करना है ये जानना है।
1: बिल्कुल, बच्चों के इस व्यवहार से निपटने के लिए उनसे नियंत्रित करना बहुत जरूरी। लाइक अगर वो गुस्सा करे तो आप शांत रहें और उनकी भावनाओं को समझें।
0: और आज का नमस्कार का ये अंक बस यहीं तक दोस्तों, तो हम इसे देते हैं विराम। कविता
1: और नूतन सोनी को
0: दीजिए अनुमति। नमस्कार,
1: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं जयपुर केंद्र से, जैसलमेर में 20 किलो वॉट ट्रांसमीटर के उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण।
2: यो प्रसारण के माध्यम से और भी लोग हमसे जुड़ पाएंगे, जो दूर दराज के लोग हैं, जैसलमेर के जो आसपास के इलाके हैं, जो गांव ढाणियां हैं, वहां तक हमारी बात पहुंच पाएगी, रेडियो की बात पहुंच पाएगी, आकाशवाणी की बात पहुंच जाएगी।
3: हाँ, क्योंकि हम मानते हैं कि ये रेडियो सिर्फ हमारा नहीं, आपका है। आपकी समस्याएं, आपकी कहानियां, आपके गीत, आपकी बातें और आपकी शिकायतें भी।
2: बिल्कुल, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेडियो ने जो हमारी सभ्यता है, कला है, संस्कृति है, उसको जीवंत रखने में एक अपनी महती भूमिका निभाई है। और ये एक मील का पत्थर साबित होगा कि जब हमारे यहाँ पर रेडियो का नेटवर्क उत्तर उत्तर बढ़ता जा रहा है।
3: बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गर्व का विषय और खुशी का दिन है कि ये नया FM ट्रांसमीटर स्थापित हो रहा है। इसके साथ ही आपकी आवाज और दूर तक और ज्यादा स्पष्ट रूप से पहुंचेगी। और जितेंद्र, जैसा कि प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं, हमारे चेयरमैन हैं श्री प्रसून जोशी, और वे बहुत अच्छे गीतकार भी हैं। अगर उन्हीं के शब्दों को, बहुत ही सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं, उन्हीं के शब्दों को अगर मैं श्रोताओं तक पहुंचाऊं तो कहना चाहूंगी कि पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, पुरानी राहों से हटकर नई डगर बनानी है, गिरकर उठना सीखा है, अब दौड़ लगानी है। ये नया हिंदुस्तान है, आंखों में अरमान है, हाथ में हुनर है, दिल में तूफान है, अब सपनों को हकीकत की जुबान देनी है, दुनिया को अपनी नई पहचान देनी है।

0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं ये कार्यक्रम चल रहा है, मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में आप प्रतीक्षा कीजिए मंत्री जी का उद्बोधन आपके रेडियो सेट पर।
1: तो बस श्रोताओं को लिए चलते हैं

शुरुआत थोड़ी सी जोश के साथ, भारत माता की, भारत माता की, ये हुई ना बात। जयपुर की धरती तो शूरवीरों की धरती है, कला की भी धरती है। यहाँ तो जोश भी है, कला भी है, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। आज ये बड़ा ही शुभ दिन है, आकाशवाणी के जैसलमेर के ट्रांसमीटर का इनॉग्रेशन यहाँ जयपुर में हम सब मिलके कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ आज सौभाग्य है कि सब एक से बढ़कर एक हमारे गणमान्य व्यक्ति, समाज के लीडर्स जुड़े हैं। मैं सबको नमस्कार करता हूँ। हमारे जयपुर की सांसद मंजू दीदी, दीदी सभी इनको दीदी बोलते हैं, पार्लियामेंट में भी दीदी बोलते हैं। वो दीदी अलग टाइप की थी, दूसरी वाली, ये हमारी जयपुर की दीदी, जयपुर की घेवर जैसी है बिल्कुल। सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार पार्लियामेंट में, सदन में, लोकसभा में, सभी आपको मंजू दीदी के नाम से जानते हैं। वैसे हमारी दीदी हमारे ऊर्जा के मंत्री, ऊर्जावान श्री हीरालाल नागर जी, जिन्होंने राजस्थान के ऊर्जा के मानचित्र को पूरी तरह से बदल दिया है। हमारे एमएलए साहब श्री गोपाल शर्मा जी, जो जब बोलते हैं मज़ा आता है सुनने का, एक अलग ही आनंद आता है। एक कार्यक्रम में मैं साथ था आपके, बहुत ही आनंद आया था। और जो अभी बोल रहे थे कि मानव संवेदनाओं के चितेरे, मुझे तो ऐसे ऐसे शब्द भी नहीं आते भाई। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जुड़े ऐसे श्री प्रसून जोशी जी, जिन्होंने जीवन में, समाज में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में एक ऐसा अद्भुत नाम कमाया है। और आज हमारे साथ प्रसार भारती को एक नया स्वरूप देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ और जुड़े हैं श्री पंडित विश्वमोहन भट्ट जी। आपने वीणा को दुनिया में एक नया नाम दिया। मेरे ख्याल से वीणा के बारे में आपसे बेहतर जानने वाले विश्व में शायद ही कोई होंगे। हमारा सौभाग्य आज आप पधारे इधर। उस्ताद मोइनुद्दीन खान जी, आप पधारे, बहुत ही अच्छा लगा। सारंगी में व्यक्ति की आवाज़ सुनाई देती है, मज़ा आता है। आप पधारे आप दोनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सलील भट्ट जी भी, आप भी पधारे। मैं पंडित जी को भी धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य कमज़ोर होते हुए भी आप यहाँ आए, बहुत धन्यवाद आपको। सीधा अस्पताल से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी श्री राजीव जैन जी, आप भी हैं। जैसलमेर में हमारे बहुत ही मजबूत विधायक छोटू सिंह जी भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, आपका भी नमस्कार। छोटू सिंह जी, जब हम जैसलमेर गए थे, वहाँ से स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू करने गए थे, भाई छोटू सिंह जी ने जो बाजरे का चूरमा खिलाया, मज़ा आ गया था। आज भी याद आता है, छोटू सिंह जी भेजिएगा भाई बाजरे का चूरमा, मज़ा आ गया था। बाजरे के सोगरे को फर्स्ट क्लास चूर के, छोटू सिंह जी राम राम भाई साहब खमागणी, बहुत मज़ा आ गया था। तो ऐसे हमारे मजबूत विधायक, और विशेषकर जितने भी हमारे कार्यकर्ता बंधु जुड़े हैं, हमारे अधिकारी बंधु जुड़े हैं, और पत्रकार बंधु जुड़े हैं, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो बॉर्डर इलाके का एक FM ट्रांसमीटर चालू हुआ है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस, सूचना संपर्क विभाग, आकाशवाणी का प्रसार, वो सब

ठीक है, लेकिन कुछ दिनों पहले माननीय गृह मंत्री जी बॉर्डर एरिया का निरीक्षण करके गए थे, बीकानेर गए थे और बॉर्डर एरिया को पूरा देख के आए थे। तब उन्होंने कहा कि हमारे पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कंप्लीट आकाशवाणी दूरदर्शन से पूरी तरह से कवरेज करना है, तो उस सीरीज़ में हम इसको काम को चालू कर रहे हैं। मैं राजीव जी को रिक्वेस्ट किया हूँ, अपने सीईओ साहब को भी किया था मैंने, गौरव जी को, राजीव जी आप भी पूरा एक पूरा बॉर्डर एरिया उठा लें, कच्छ से लेके कंप्लीट अपना जम्मू कश्मीर तक, जो भी एरिया में जहाँ पर भी कोई गैप हो बॉर्डर एरिया में आकाशवाणी का और दूरदर्शन का भी, दूरदर्शन का भी आप देख लें, प्रसार भारती की तरफ से आप सभी देखेंगे ही, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी का कहीं पर भी कोई भी गैप हो उस गैप को हमें फिलअप करना है, पूरे बॉर्डर एरिया को हमें कम्प्लीटली कवर करना है। आज ये पहली उसकी कड़ी है और जैसलमेर ज़िले का करीब करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल, 80 किलोमीटर का रेडियस कवर करके ये ट्रांसमीटर सब जगह पहुंचाएगा विश्व की हमारी संस्कृति की बात को। मैं थोड़ी बात रेलवे की करना चाहूँगा क्योंकि राजस्थान को वर्षों वर्षों तक रेलवे के हिसाब से इग्नोर किया गया था, वर्षों वर्षों तक। बॉर्डर एरिया है, इतना बड़ा विशाल प्रदेश है, एक सामरिक दृष्टि से भी स्ट्रैटेजिक दृष्टि से भी देखो तो राजस्थान का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश की स्ट्रैटेजिक टाइम फ्रेम, स्ट्रैटेजिक फ्रेम में। ऐसे में राजस्थान के लिए जब यूपीए की सरकार थी मात्र 682 करोड़ रुपए का बजट रेलवे के लिए दिया जाता था। इतना विशाल प्रदेश और इतना महत्व सामरिक, जनता की आकांक्षाओं पे कहीं पर भी यूपीए की सरकार के समय में रेलवे का खरे उतरने का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि जनता जो भी आकांक्षा करे, कोई उसके लिए काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो फंड्स होते नहीं थे। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेदारी ली और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि कल उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का एक नया कीर्तिमान बनाया। ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि ऐसा नेतृत्व हमको मिल रहा है जो देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाना और एक ऐसी नींव रखना जो कि भारत को विकसित भारत बनाएगी। तो जब मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली तो 10,228 करोड़ रुपए का अभी अपने को राजस्थान के लिए बजट मिलता है, यानी जो बजट पहले मिलता था उसका 15 गुना। हमारे जनरल मैनेजर साहब यहाँ पर है, अमिताभ जी, अभी जीएम साहब एयरपोर्ट से आते हुए मुझे बता रहे थे कि करीब 200 स्टेशनों का, पूरे प्रदेश में 200 स्टेशनों का प्लेटफॉर्म्स को ठीक करना, उनकी ऊंचाई पूरी करना, उनकी लेंथ पूरी करना, जीएम साहब 200

इस प्रसारण को यहीं पर विराम देते हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: एफएम सन सिटी पर लीजिए हाजिर है कार्यक्रम

0: फिल्मी अंताक्षरी
1: झुके जो तेरे में।

102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है एफएम सन सिटी. मैं हूँ आपकी रेडियो फ्रेंड कविता नेमी के संग और प्रोग्राम है फिल्मी अंताक्षरी.

0: ये संगीत की वो महफिल है जहां रहता है हमें आपका इंतजार, और आप डायल कर सकते हैं 2553-2554-300। 0291 हमारा एसटीडी कोड है, और जब आपका फोन कनेक्ट हो जाता है तो हम आपके साथ खेलते हैं फिल्मी अंताक्षरी। हेलो।
1: हेलो, जय हिंद मैम। कविता जी, तेजदान चारण हाजिर हो गया है
0: जी, बहुत स्वागत तेजदान जी, नमस्कार, कैसे हैं?
1: धन्यवाद धन्यवाद जी, आपका प्रोग्राम, आपके अनाउंसिंग बहुत खूबसूरत है, A1।
0: थैंक यू सो मच।
1: जी जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी धन्यवाद।
0: तो शुरू करते हैं, आगाज
1: शुरू
0: आप ही
1: करता हूँ
0: से।
1: मैं। कैसे जीते हैं भला, हमसे सीखो ये अदा।

0: या जाता है।
1: बहुत सुंदर। ये गाना भी संदेशात्मक लेकिन बहुत ऊर्जावान, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने
0: जी।
1: चुना और सदाबहार तरीके से आपने इसे निभाया है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ और नेमी आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये गीत।
0: धन्यवाद।

0: पांव में जंजीर भी रस किया जाता
1: क्या
0: है।
1: बात
0: आप बता दें,

0: इसमें जितने सारे शब्द हैं, कोई एक शब्द ऐसा होगा जिस पर आपको 3-4-5 गीतों के मुखड़े याद आ रहे होंगे।
1: इसमें तो शब्द ही मेरे को इतने कठिन लग रहे हैं कि गाने क्या ढूंढू, शब्द ही नहीं ढूंढ पा
0: अच्छा,
1: रहा। हाँ, शब्द बड़े कठिन कठिन है इसके अंदर।
0: गले, एक गले शब्द में भी आप,
1: हाँ, गले से हो सकता है कुछ हो, लेकिन 5 गाने एक साथ गले पर निकलेंगे नहीं तो। हाँ,
0: कोशिश तो की जा सकती है।
1: कोशिश एक बार की जा सकती है। गले पड़ी, ये भी तो पहले ही गाना तो नहीं याद आ रहा है। आज तो हम हार गए सब पूरी तरह।
0: लग जा गले, अगर कोई नहीं गाता है, गाने वाला
1: अरे बाप
0: व्यक्ति,
1: रे बाप रे बाप रे, लग जा
0: तो
1: गले की
0: फिर
1: भाई।
0: तो गाने का उद्यापन कर देना चाहिए उसको।
1: अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात कह दी आपने तो। मैं सोचा कोई दिल वगैरह आ जाएगा तो ले लेंगे, दिल से गा लेंगे, लेकिन यार तो दिल आया ही नहीं कोई,
0: पैर आया
1: कठिन कठिन
0: है,
1: शब्द है जी।
0: पैर आया है, गले आया है, इनमें भी गाने हैं। देखिए, एक गाना तो हमने सजेस्ट ही कर दिया आपको, लग जा गले।
1: लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो,
0: फिर
1: शायद
0: और आप
1: तेरी।
0: इस, देखो, इसी में उलझे रहोगे तो अगला गाना याद नहीं आएगा।
1: जी,
0: आप कोशिश कीजिए कि और कौन सा गाना है।
1: नहीं हो रहा है मैम, आज तो मैं बिल्कुल इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है जी।
0: गले दिल
1: ये भी मेरा
0: रुबा
1: फेवरेट गीत है,
0: कहाँ
1: लेकिन अब
0: रूठ
1: आपने
0: के
1: आज बताया।
0: चले, ए गुलाब
1: हाँ,
0: की
1: लगजा
0: कली,
1: गले दिलरुबा।
0: मुझे गले से लगा लो,
1: हाँ, ये बड़ा अच्छा गाना है,
0: बहुत क्या
1: ये
0: है,
1: बड़ा सुना
0: कैसे
1: है,
0: नहीं।
1: वो तो सुना हुआ था पूरा, मैं
0: तो
1: गाया भी था उसको तो कई बार।
0: फिर ऐसा नहीं है कि इन शब्दों पे गाने नहीं, पैर अगर आप चुनते
1: अरे
0: हैं
1: नहीं,
0: तो
1: वो
0: उसमें
1: पैर
0: भी
1: तो
0: पांच
1: है,
0: गाने,
1: पैर से भी आप
0: तो
1: मेरे
0: आप
1: पैरों में घुंघरू बंधा दे के फिर मेरी चाल देख ले, वो
0: वो अगली
1: पैरों में गाने तो है।
0: बार
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने किसी तरह सहारा देकर 4 गाने निकलवा लिए आखिर।
0: ना ना, हमने नहीं निकलवाए, आपने एक्चुअल में गाया ही नहीं, क्योंकि आपने मानसिकता ही बना ली थी कि आज फेल होना है, आज पास
1: अरे
0: नहीं
1: नहीं, ऐसी
0: होना।
1: तो नहीं थी, मैं तो बड़ी तैयारी के साथ आता हूँ, जब भी आता हूँ पूरा समर्पण 100% देने की कोशिश करता हूँ अपना, ताकि मैं, ये मेरा घर का आकाशवाणी है ये, और सैकड़ों
0: अच्छा।
1: जगह हमने काम किया होगा, लेकिन यहाँ हमने पसीने बहाया है कभी कभी।
0: नहीं, पर आप ही ने कहा कि आज तो मैं फेल हो गया है ना, तो
1: अच्छा,
0: मतलब
1: मैंने
0: ये
1: तो
0: जहां
1: टाइम दे
0: हमने
1: टाइम
0: ये मानसिकता
1: दे
0: बना ली
1: दो।
0: कि मैं फेल हो गया,
1: हाँ,
0: बस वहां से हमारी याददाश्त हमारा साथ देना छोड़ देती
1: साथ छोड़ देती, बिल्कुल सही है, सकारात्मकता नहीं रखी आज,
0: है
1: क्योंकि
0: ना।
1: ऐसे सब से मैं सोचता था कौन सा लूं कौन सा लूं, फिर मैंने तो आपसे गाना ही
0: चलिए,
1: खत्म कर दिया, तो
0: कोई
1: मैंने कहा
0: बात
1: इस पे तो भैया मैं तो फंस गया,
0: कोई बात
1: तो
0: नहीं,
1: अगली
0: लेकिन
1: बार
0: आपका आना ही बहुत अच्छा लगा, और ये बड़ा इंस्पिरेशनल होता है, आप बहुत प्रेरणा देते हैं जब भी आते हैं,
1: जी।
0: तो
1: आपका
0: शुक्रिया फोन
1: बड़प्पन
0: करने
1: है,
0: के
1: ये तो
0: लिए।
1: आपका बड़प्पन है जी, वरना तो मैं किस काबिल हूँ।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार, स्वागत।
1: नमस्कार कविता जी। शंकरलाल गोयल निवेदन कर रहा हूँ जोधपुर से
0: बेशक, आपकी आवाज, आपकी पहचान है शंकरलाल जी।
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा अभी एक दो दिन पहले थोड़ा सा मैं खुद ही चपेट में आ गया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्लीज अपना ध्यान रखें, घर से निकलते वक्त पहले अपना इंतजाम करें पीने का कुछ छाछ वगैरह, वरना कुछ भी हो सकता है। और
0: सही है, ये होते हैं दोस्त।
1: हाँ,
0: है ना,
1: क्योंकि
0: आपने अपनी
1: हमारा
0: मित्रता
1: परिवार है,
0: का परिचय।
1: आकाशवाणी परिवार है पूरा, जितने भी
0: बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल
1: जो है जो श्रोता बंधु है सब हमारे
0: बेशक,
1: परिवार के हैं, तो उनकी चिंता करना तो बनता
0: बिल्कुल
1: है
0: सही कहा है आपने, है ना। और ये
1: जी।
0: फर्ज भी है, मित्रता का दायित्व होता है। तो आज आप गाएंगे तो सही ना।
1: जी हाँ, मैं कुछ हम दोनों के लिए गा रहा हूँ, मैं और मेरी। आज सुबह मैंने उसके सामने कुछ ये गीत गाया तो सोचा आप लोगों को भी सुनाऊँ।
0: अच्छा, ठीक है।

0: इसलिए कभी बिछड़े ना हम दोनों, कभी बिछड़े ना हम दोनों,
1: इसलिए
0: इसलिए इसलिए।
1: आपने आज अपने जीवन साथी की उम्र बढ़ा दी, पता है आपको?
0: अरे वाह, बिल्कुल
1: इस तरह,
0: बिल्कुल।
1: हाँ, इस तरह की बात जब सुनने में आती है और आपने कहा कि मैंने सुबह उनके सामने गाया, निश्चित जानिए कि इसका बड़ा असर है ना?
0: जी।
1: चलिए सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेमी आपके लिए क्या प्ले कर रहे हैं।

0: जी लगता है, मुझे लगता है तेज दान जी जब ये गाना सुन रहे होंगे तो फिर अपने आप को कुछ सोचते होंगे कितने सारे शब्द इसके अंदर और उनकी इच्छा मैं पूरी
1: नहीं, पर तेज दान जी ने तो आज मतलब वो होता है ना, मन के हारे हार है मन के जीते जीत,
0: मन के जीते जीत।
1: बाकी गले शब्द से उनके लिए गाने बहुत मुश्किल बात नहीं है, उनको इतने गीत याद है
0: और कैसी पे भी बहुत अच्छे से गाने थे।
1: हाँ बहुत अच्छा, बहुत उनकी जानकारी है।
0: लेकिन लेकिन मैं चाहता हूँ कार्यक्रम का आगाज बिल्कुल दिल से हो ताकि क्या है कि ये रौनक बनी रहे।
1: चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपने क्या चुना है?

0: से ही सुना है,
1: ठीक है।
0: ठीक है, एक नया गाना है
1: मुझे
0: और
1: लगा आप
0: उसमें
1: जरा शब्द चुनेंगे।
0: क्योंकि
1: चलिए कोई
0: उसके अंदर
1: नहीं,
0: कुछ नए गाने आ जाते, मिक्स कर
1: ओके
0: देते
1: ओके
0: हैं।
1: ओके।
0: दिल पे गाना है, दिल ये बात कर रहा है धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं पालू हंसी यही धुन। एक दूसरा गाना है,
1: सेकंड।

0: को बिठा कर
1: यादों को
0: रखूंगा
1: तेरी
0: मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास।
1: थर्ड फोर्थ वाला.
0: एक और दिल का थोड़ा अच्छा गाना मुझे याद आ रहा है। ठीक
1: दिल क्या करे
0: जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। एक और रोमांटिक गाना याद आ रहा है, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दिल आसना है मगर आसना है, दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ
1: ये हुई
0: वतन
1: बात. हाँ
0: तेरे लिए।
1: बहुत सुंदर. बस ये ऐसा नहीं है कि गीत याद नहीं आते हैं. आपको ना बाकी सब चीजों को भूलना पड़ता है तब गीत याद
0: जी
1: आते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: है ना,
0: सही कहा आपने।
1: सब चीजों को भूल कर जब आप गीत में जुड़ जाते हैं तो एक के बाद एक गीत आपको जरूर याद आते हैं. और जरा सा भी अगर आपका ध्यान भटक गया तो फिर आपको
0: बिल्कुल
1: अगला
0: वो
1: गीत याद नहीं आता.
0: आया वो भी चला जाएगा।
1: अभी हम थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं. शंकर लाल जी, बड़ा ही खूबसूरती से आपने सेकंड राउंड भी क्लियर किया. ये सुनिए.

0: दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जान, दिल लेने वाले
1: दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी।

0: हाँ, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, है ना। पर आपने गाना पहचान लिया, ये बड़ी बात है ना, इसके लिए तो सल्यूट आपको। हम मतलब नेमी और हम, मतलब हम दोनों इशारों में ये सोच रहे थे कि गाना समझ आ जाएगा क्या।
1: क्योंकि आपने कभी हमारे ऊपर प्रेम से हाथ रखा था, तो उसी का असर है कि थोड़ा उसमें पुराने गानों में भी थोड़ा सा डूब जाए।
0: उसका उसका एक कारण है पता है, हम पर भी किसी ने प्रेम का हाथ रखा था सिर पे, है ना। तो हमने तो वही आदान प्रदान वाली परंपरा को निभाया है, जो हमको किसी ने दिया हमने वो आपको दिया, ठीक है।
1: बढ़ता जाए प्रेम और यही चलता रहे, एफएम सन सिटी का ये प्रोग्राम, आप और हम यही मिलते रहे।

0: हेलो
1: हेलो कविता जी, पवार मैडम को और रेडियो सुनने वाले सभी लिसनर को भाई दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
0: दिनेश जी, आपको भी हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार, स्वागत। कैसे हैं?
1: कैसे हो?
0: बहुत अच्छे, आपकी दुआ से हमेशा की तरह।
1: जी मैम, हमेशा आप स्वस्थ रहें।

0: हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते
1: दिल से शुक्रिया दिनेश जी इन दुआओं के लिए।
0: धन्यवाद मैम।
1: गाना शुरू करें प्लीज।
0: जी मैम। कर न फकीरी फिर क्या दिल गिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी नहीं कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। कर न फकीरी फिर क्या दिल गिरी, सदा
1: कर न फकीरी फिर क्या दिल की, सदा मगन में रहना जी। बहुत सुंदर। मीरा फिल्म में हमने इसे सबसे पहली बार सुना था और बहुत ही खूबसूरत है ना,
0: मेरा फेवरेट गाना मैम।
1: हाँ बहुत सुंदर रचना है और आपका प्रयास भी बड़ा सुंदर है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ और देखते हैं कौन सा गाना आपके हिस्से में आता है।

0: हाँ जी, कौन सा शब्द?
1: दिल, प्यार या आपको कौन सा, बता दीजिए आप।
0: दोनों ही बड़े सुंदर हैं, जिस पर गाने याद आ जाएं वो ले लीजिए।
1: प्यार पे गालूं आप गए तो, या फिर
0: पक्का?
1: आपको?
0: जरूर जरूर गाए।
1: जी आप कहे तो प्यार पे गा लेता हूँ। प्यार पे बहुत सारे गाने।
0: ठीक है।
1: प्यार को हो जाने दो, प्यार मांगा है तुम से, ना इनकार करो, प्यार हुआ इकरार हुआ है, फिर प्यार से
0: प्यार से
1: क्यों
0: फिर
1: डरता है
0: क्यों
1: दिल।
0: डरता है दिल?
1: प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां,
0: बहुत सुंदर।
1: तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहेजा।
0: तो आप
1: प्यार दिलों का मेला है,
0: बहुत सुंदर।
1: फिर कोई क्यों अकेला
0: तो
1: है।
0: तरतीब से तो आपने सेकंड राउंड पार कर लिया।
1: जी मैम,
0: अभी ट्रैक पर
1: थर्ड
0: गाएंगे?
1: राउंड के लिए माफी चाहूंगा मैम। और भी श्रोताओं को ज्यादा से
0: जी
1: ज्यादा जुड़ने का मौका देना चाहिए। तो आपका प्रेम है मैम,
0: हम
1: आपका
0: भी
1: श्रोताओं के प्रति प्रेम है, तब मैम फोन लगा देते हैं।
0: आपकी इस प्रेम और इस समझ की दिलो जान से
1: जी
0: कदर करते हैं दिनेश जी, बहुत
1: आपका बहुत बहुत
0: शुक्रिया।
1: धन्यवाद, आपका साधुवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें और प्रोग्राम निरंतर ये चलता रहे, और आप भी
0: थैंक यू,
1: हमेशा स्वस्थ और
0: थैंक
1: मस्त
0: यू
1: रहें।
0: सो मच। हेलो हेलो, कौन है कह तो जरा। हेलो, स्वागत है आपका। नमस्कार
2: कविता जी नमस्ते, मैं संतोष बोल रही हूँ मधुबन हाउसिंग बोर्ड से।
0: जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज
2: और
0: बड़ी
2: सुने,
0: मुश्किल से आई हम तक।
2: अच्छा ही हूँ। और सुनाइए, क्या हाल चाल आपके?
0: बहुत अच्छे, बस आप सुनाए। हाँ,
2: बस बढ़िया है, देखो चल रही है अपनी अच्छी खासी।
0: हमेशा इसी तरह चलती रहे अच्छी खासी, है ना? हंसते मुस्कुराते यही दुआ करते। चलिए गाना शुरू करें। हाँ,

0: मिलिता
1: बहुत सुंदर संतोषी,
0: शादी
1: गाना भी अच्छा है, आपने गाया भी बड़ा अच्छा है, इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ और देखते हैं नेमी क्या बजाते हैं आपके लिए।

0: जी संतोष जी, संतोष पूर्वक कौन सा शब्द आपने चुन लिया?
1: जी प्यार।
0: ठीक है, शुरू करें।
1: तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए,
0: वो तो है ना
1: मुझे
0: संतोष जी।
1: तो हरी भरी करार चाहिए,
0: नेक्स्ट।
1: तेरा प्यारी वो है के मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न
0: मेरा प्यार है ना।
1: देगा।
0: हाँ मेरा प्यार। ठीक है, सेकंड हो गया।
1: हाँ,
0: थर्ड।
1: तेरे प्यारी का दीवाना तेरे घर को ढूंढता
0: क्या बात है, क्या
1: हूँ।
0: बात है, बहुत सुंदर गाना। थर्ड, अभी एक और। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, माफी चाहते हैं संतोष जी। आप बड़े खूबसूरती से सेकंड राउंड जो खेल रही थी, लेकिन किसी कारणवश हम आपसे जुड़े नहीं रह पाए, क्षमा कीजिएगा। फोन आपने किया, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते कविता जी,
0: नमस्कार जी।
1: हाउसिंग बोर्ड से तेज सिंह खींची बोल रहा था
0: जी
1: मैडम।
0: खींची साहब, कैसे हैं?
1: ठीक है सर,
0: आनंद
1: आप?
0: है?
1: हाँ, आपकी दुआ है।
0: दुआ तो हमेशा रहेगी हमारी कि आप हमेशा, सभी हमारे सुनने वाले श्रोता
1: जी थैंक
0: हमेशा आनंद में रहें, स्वस्थ रहें। तो
1: यू।
0: शुरू करें गाना।
1: जी ये क्या है?

0: तेज सिंह जी,
1: जी
0: जब इतने खूबसूरत गाने चल रहे हों तो कोई बचकर जाना चाहेगा भी क्यों? क्या करते हैं आप इसे?
1: मैं रिटायरमेंट पर्सन रेलवे से, अभी कुछ बस मनोरंजन करता हूँ, गाने अशोक जी के पास जाता हूँ कभी।
0: अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर गाना आपने चुना और उतना ही सुंदरता से आपने इसे गाया,
1: थैंक यू।
0: बहुत ही खुशी हुई, इसीलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ।

0: और अब तो अपेक्षाएं और बढ़ गई हैं कि आपकी जुबानी क्या और अच्छे अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे। इस गीत को सुनिए और एक शब्द को चुनिए।
1: जब

0: हाँ जी तेज सिंह जी, कौन सा शब्द आपने चुना है ऐसा जिस पर आपको चार पांच गाने याद हो?
1: जी याद चीज याद पे गा रहा हूं।
0: ठीक है।
1: दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, के आ जा तेरी याद आए,

0: तेज सिंह जी
1: जी
0: बहुत अच्छा गाते हैं आप।
1: थैंक यू।
0: मुझे लगता है और लोग भी कहते ही होंगे जो भी आपको सुनते हैं
1: हाँ जी
0: कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। रेलवे के प्रोग्राम्स में गाया है कभी?
1: हाँ जी
0: रेलवे के प्रोग्राम्स में कभी गाया आपने?
1: वाह अशोक जी गया।
0: रेलवे के प्रोग्राम में
1: हाँ जी
0: गाया है ना? तो जरूर लोगों को बहुत पसंद आया होगा निश्चित रूप से। चलिए थर्ड राउंड की तरफ बढ़ते हैं। तेज सिंह जी
1: जी
0: एक म्यूजिक ट्रैक प्ले कर रहे हैं, उसे सुनिएगा और साथ गाइएगा।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
2: क्या आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाए।
3: इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
4: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
5: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
6: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
7: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
8: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
9: इस कॉमर्शियल ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत उस प्रोग्राम में जिसका नाम है फिल्मी अंताक्षरी, और मैं हूं कविता नेमी के संग। और देखें हमारे संग कौन है। हेलो
10: मैडम, मैं इकरामुद्दीन बोल रहा था, ज्योति नगर चांदना बाकर से।
9: इकरामुद्दीन जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत स्वागत है आपका।
10: सलाम अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है परवरदिगार का। नेमत बरस रही है, गर्मी हो या सर्दी या बरसात,
9: देखिए उसको पता है ना कि सभी चीजें जरूरी है, संतुलन।
10: जी जी बिल्कुल जरूरी है मैडम, उसने अपने हाथ में रखा ना।
9: बेशक बेशक,
10: कहाँ गर्मी चाहिए, कहाँ सर्दी चाहिए, कहाँ बरसात चाहिए।
9: हाँ, और वो कभी भी अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं कर सकती, ये तो हम जानते हैं।
10: नेमत पे शुक्र अदा करते रहेंगे तो अल्लाह ताला अपने आप ही हिम्मत ही देता रहेगा। बेशक, गर्मी हो या सर्दी सबको बर्दाश्त करनी पड़ेगी।
9: बेशक, इसमें कोई शक नहीं। चलिए, क्या चुना है आपने इकरामुद्दीन जी, क्या गाइएगा?
10: मोहम्मद रफी का गाना सुना है,
9: रफी साहब का।

0: गए।
1: बेशक, और भूलना चाहता भी कौन है इन आवाजों को, है ना?
0: शुक्रिया
1: क्या
0: शुक्रिया
1: करते हैं आप इकरामुद्दीन जी?
0: मैडम। वैसे मोटर रिवाइंडिंग का काम करते हैं, बैठे बैठे आप ही क्या FM सुनते रहते हैं और साथ साथ गुनगुनाते रहते
1: आप तो
0: हैं।
1: पड़ोसी भी हो हमारे।
0: हाँ, बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं।
1: चलिए सेकंड राउंड की तरफ बढ़ते हैं इकरामुद्दीन जी, और देखते हैं आपके
0: जी
1: हिस्से में कौन सा गाना आता है।

0: जी, कौन सा शब्द आपने चुना है? कौन सा शब्द आपने चुना है जिस पर आपको तीन चार पांच?
1: बाहर फूल ले लेते हैं मैडम, एक दो गाने याद आ रहे हैं
0: कोई
1: दिमाग में
0: बात
1: से।
0: नहीं, शुरू।
1: बाहरों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है,
0: ठीक है,
1: हटाओ
0: अगला गाना, अगला गाना,
1: फूल का।
0: अगला गाना। फूल पर दूसरा गाना। फूल
1: अरे मैडम तीन गाने याद में थे अभी।
0: तुम्हें
1: तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है।
0: तीसरा गाना।
1: सुनिए मैडम, अगली बार फिर पूरी कोशिश करेंगे।
0: अरे मैंने कहा
1: फूलों से मैडम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी।
0: चलिए कोई बात नहीं।
1: बहुत बहुत
0: इकरामुद्दीन जी,
1: आपका
0: पर
1: शुक्रिया।
0: अच्छा लगा, आप काफी अच्छे अच्छे गाने सुनते हैं। और कोई बात नहीं, आपने ये तो कहा कि अगली बार मैं जरूर कोशिश करूंगा, तो आपकी
1: कोशिश
0: इसी
1: करूंगा
0: बात
1: मैडम,
0: पर
1: मैंने
0: हम
1: कम से
0: यकीन
1: कम मैंने
0: करते
1: फिर से
0: हैं।
1: 6 महीने 7 महीने बाद में इस प्रोग्राम में फोन लगाया मैडम, लेकिन लगता ही नहीं है, टाइम भी नहीं मिलता है। गुरुवार को थोड़ा पूजा पाठ में रह जाते हैं, इसी तरीके से जलगांव
0: बिल्कुल
1: में
0: बिल्कुल
1: जाना रहता है ना
0: बिल्कुल
1: गुरुवार
0: बिल्कुल।
1: को,
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: उस हिसाब से थोड़ा सा उसमें रह जाता
0: चलिए
1: है।
0: कोई बात नहीं, वो भी बहुत जरूरी है। जितना स्नेह आपका मिला उतना ही बहुत अच्छा है। आपने फोन
1: जी
0: किया,
1: जी
0: बहुत
1: थैंक यू
0: अच्छा
1: मैडम,
0: लगा,
1: थैंक यू।
0: शुक्रिया। हेलो,
1: हेलो कविता जी, और सारा मुरे का पूरी पूरी आकाशवाणी टीम को कविता जी को प्यार भरा नमस्कार। कविता
0: नमस्कार जी।
1: जी कैसे हैं आप?
0: ठीक है, राम गोपाल जी बोल रहे?
1: मैं दारुरा मैगवाल बोल रहा
0: धारू
1: हूँ
0: राम
1: मैडम
0: जी।
1: जी।
0: हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ी सी, थोड़ा सा कोशिश करें अच्छे से आवाज आ जाए आपकी।
1: हाँ मैडम, अब आवाज आ रही है?
0: हाँ धारू राम जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
0: बड़े समय बाद आपका फोन आया, बहुत अच्छे हैं धारू राम जी, ठीक है सब कुछ।
1: हाँ मैडम, फोन लग नहीं रहा है मैं जो अभी भगवान से दुआ कर तो आपका फोन लग गया।
0: चलिए चलिए, हमेशा दुआ करते रहिए। क्या गाएंगे आप?
1: हाँ मैडम, मैं गुनगुना रहा हूँ। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत
0: इतना मुश्किल से फोन लगा और फोन कट गया। धारू राम जी, सच में दिल से बहुत क्षमा चाहते हैं हम, न जाने कैसे आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने के लिए। हेलो
1: है। हाँ जी नमस्कार, देवराज चौहान अर्थ।
0: जी,
1: मैं
0: देवराज
1: सुनीता
0: जी,
1: चौहान। कविता जी कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं देवराज जी। बीना जी, बहुत बहुत स्वागत और प्यार भरा नमस्कार आपको भी।
1: नमस्कार आपको, सभी को। ठीक
0: जी, आप कैसे हैं ये बताएं?
1: है जी, गाऊं
0: हमेशा ठीक रहिए। चलिए,
1: गाना।
0: क्या सोचा? हाँ जरूर गाइए प्लीज।

0: लाओ दिल हमारा हमको दे दो सनम, बतलाओ दिल हमारा हमको दे दो सनम।
1: तो ये दिल लेके वापस दिया नहीं जा, दिया जाए तो फिर जिया नहीं जा, हे जान चली जाए जिया नहीं जा, जिया

इस गाने ने एक याद ताजा कर दी देवराज जी, बीना जी। एक बारी अंताक्षरी के लिए जैसे ही हम आए, मतलब हम, मतलब मैं और भानु जी उस समय हुआ करते थे, भानु जी के साथ मैं होती थी, तो मैंने ऐसे ही कह दिया भानु जी से कि भानु जी आज हम है ना सूरज फिल्म का गाना बजाएंगे, इतना है तुमसे शुरुआत में। तो भानु जी ने कहा नहीं, आज तो गाना तो

0: कुछ और ही बजेगा। मैंने कहा कौन सा, बोले नहीं बस सुन लीजिएगा। सुनते ही दिल दिमाग सब तरोताज़ा हो गए, खुश हो गए, और इतना खूबसूरत ये गाना मुझे लगा। और ये गाना मुझे लगता है कि भानु जी ने ही मुझे याद कराया कि ये भी गाना है जिसे आप कभी सुनती नहीं है और बड़ा सुंदर है।
1: जी। हाँ, अनजाना मूवी का
0: अनजाना
1: गाना
0: फिल्म का, बबीता और राजेंद्र कुमार जी। सच में बहुत ही सुंदर गाना आपने चुना और बहुत ही खूबसूरती से आप इसे निभाते भी हैं हमेशा ही। हम भी आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं सुंदर सा गाना चुनकर आप तक प्रस्तुत किया जाए।

0: क्या चुना?
1: दिल।
0: देखो,
1: सबसे
0: बीना
1: सरल
0: जी को हंसी आ गई कि इतना सरल शब्द चुनते हो। चलिए शुरू कीजिए प्लीज।
1: तेरा दीवाना है सनम, वो दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। ये दिल दीवाना है,
0: हाँ,
1: दीवाना है।

0: बस
1: दिल के जहरों के मैं तुझको बिठा कर यादों की तेरी दुल्हन बना के रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो
0: मतलब
1: मेरी
0: बस का
1: जान।
0: मतलब ये नहीं कि किसी गाने को चुन के पूरा गाना है, बस का मतलब ये है कि और एक एक पंक्ति कितने गीतों की याद है।
1: मैं
0: चलिए बहुत बढ़िया, बहुत
1: क्या
0: सुंदर, बहुत सुंदर।
1: जानू
0: चलिए, भीगा भीगा है समा, इसमें बढ़ते हैं आगे, तीसरा राउंड भी है यहाँ। तो तीसरे राउंड का ये गाना।

0: नजर क्यों खफा हो गई, खता बस दो घर की खता हो गई।
1: सुन के सुन के

ये दो बार है, है ना, मुखड़ा दो बार आता है, ये तो आपको ख्याल होगा पूरा पूरा, तो अच्छा है ना गाने को मौका मिलता है। तो देवराज जी, बीना जी, ये जो खिलखिलाहट है ना सुरीली, बस ये हमेशा बनी रहे, यही दुआ करते हैं। आपने हमें फोन किया, हमेशा की तरह बिल्कुल आशीर्वाद से सराबोर कर दिया, शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार
1: जी, नमस्कार। विश्वा बात कर रहा हूँ
0: जी। विश्वा जी कैसे हैं?
1: जी। मैं ठीक हूँ। हाँ
0: अच्छे हैं ना?
1: जी,
0: चलिए, ढेर सारी दुआएं आपके लिए। आप हमेशा अच्छे रहें, संगीत से जुड़े रहें। क्या गाइएगा?
1: मैं दिल ने फिर याद किया, पिक्चर से सॉन्ग है जो
0: क्या
1: तीन
0: बात है,
1: सिंगर से मिलके गाए थे, रफी साहब, सुमन कल्याणपुर जी मुख्य।
0: टाइटल सॉन्ग है दिल ने फिर याद किया, है ना?
1: हाँ, उसमें सुमन कल्याणपुर जी अभी हमारे बीच
0: जी
1: में ही
0: जी
1: है,
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो मैं रफी साहब वाला पार्ट गा रहा हूँ।
0: ओके।

था कभी, खेल ही खेल में क्यों जान पे बन आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया।

0: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है और बहुत ही खूबसूरती से तीनों ही सिंगर्स ने गाया।
1: बुलंद पूजी का पार्ट गाएंगी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड राउंड की तरफ। हाँ,

0: जी, कौन सा शब्द है जो
1: जी
0: आपके
1: मतलब
0: हिस्से
1: मैंने
0: में है?
1: मुझको वर्ड लिया है, उसके
0: मुझको।
1: मुझे वर्ड
0: ओके
1: जाएगा जी।
0: ओके,
1: मुझे तुमसे मोहब्बत
0: क्या बात है।
1: है मगर मैं कह नहीं सकता,
0: नेक्स्ट।
1: मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, आवाज न दो, मुझे तुमसे कुछ भी।

0: अभी वो जो मुझे आपने बोल के छोड़ दिया था ना,
1: हाँ
0: उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। मुझे इश्क है तुझे से, मेरी जान जिंदगानी,
1: जानी तेरे
0: तेरे
1: पास
0: पास मेरा दिल है।
1: निगाहें मेरे प्यार की निशानी।
0: बहुत सुंदर। और अब अंतिम और थर्ड राउंड
1: जी
0: सुनिए।

0: गुलाब ओ जियादा चलके तेरी आंखों से।
1: जरा सा मुश्किल गाना आ गया पर कोई नहीं, बहुत सुंदर रहा आपका आना, गुनगुनाना, और फोन करने के लिए ढेर सारा शुक्रिया आपको।

और अब इस अंतिम क्षण में ताज मोहम्मद साहब ने फोन किया। क्षमा चाहते हैं ताज मोहम्मद साहब, आपसे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिल्मी अंताक्षरी का समय हो गया है यहीं पर पूरा। तो कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी अंताक्षरी, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। लीजिए हाजिर है कार्यक्रम टैम ने नमस्कार।
1: आपरी वाणी आकाशवाणी हाजिर है आपरो पसंदीदा प्रोग्राम टैम ने नमस्कार।

0: एक दो एक कोई मिनकट है जो एक गद्दू जी है जो है धुआं कर दियो और कांटा खाने को छींदरा बाल दिया जो मात भाई है ये दम कर चुका ये तपत घड़ी होगी
1: है ने
0: हाँ मैं ठा नहीं खोल लाई करिया बिन रह को नहीं नंबाई को हम पढ़ो ये रा हो जाए तो कौन करा भाई
1: भाई काकू मार बात हो ना थे खोड़ी लाई जानो बली है खोड़ी लाई को नहीं हो
0: तो पच कौन है कोई बिलो काम है
1: कचरो जुरो कर हैं बिलो और बाल देनो काम हावर बीच करे तो
0: अरे तो हूं तो कौन भाई देखे कोई
1: लगू उड़े
0: दिनरा बाल देता तो कम कम कोई तो बोकान तपत बिलो तपत हो जाए तो हमें
1: अरे दिनरा बाल ये डो काम रोनी इंजे पड़ियो पस बाल ये
0: तो कौन है कि
1: मानसर नहीं आवे
0: मैं कह भाई देखा मारे में कर्म में थारो कोई बात लिखी को नहीं हूँ टीपणो देखा मन कह थारो कोई कहो नहीं माने हाँ थे कहीं अड़ोसी पड़ोसी रहे जो कह नहीं बे हो बिलजिया मारो कौन मैं कह मैं तो कौन जो खोटी कहूँ भाई की
1: अरे, नहीं
0: अरे मैं तो खोटी कहा भाई
1: की कर खोटी को
0: ना ना मार
1: बात हूँ दंडित बार बोन दियो डरे जो बेरियो चौनी हो गई कि भाई हिंजा पड़े थोड़ो ओई बढ़ जाए
0: दे हूँ की कर ना
1: ही तो
0: थे आग ले करनु मारी है नहीं ऐडी है जो बतोली करना हो जड़ा हो खन उबा मैं तो है हम भाई मारे
1: एक बात कहू चलो मान ली एक बात बुझू थोने
0: कहू
1: थे माने हिकाई कि नहीं हिकाई के लुड़ताई सदाई राखनी जो जे
0: आ तो ही कई
1: एन मोटो हम आगती पागती अगर कोई मोटो मिने कह उम्र में थो तो वो ज्ञान और अनुभव में भी मोटो है तो उन्हों कदी बहस नहीं करनी मगज
0: काम बारो है जो कह तावड़े में है जो कह नहीं पिजले ही को नहीं बहस करे हवा करता उंदा करे इन बार धनी बनो थे
1: कह सकूं
0: थे धनी बनो ही फालतू
1: ना धनी नहीं बनो का
0: और कहूं
1: मैं तो थोड़ी ही काड़ी ही
0: अरे मारो कौन भाई मारो मैं हैंग मार तो मैं पंजीन धंजीन था है
1: पक्की बात
0: अरे मन तो हैंग खलक मुलक था है
1: पक्की बात है
0: रात और कहूँ
1: ते मान इन बैठ गया
0: मान का मारो कौन भाई है मारो है जो तो कौन भगवान बरसात करा दे तो नियाल कर दे आगो है ठाट वापस जाओ
1: आ है जो को तपत है नहीं आधार मगज ठाटो करना मेरी जरूरत है बीजू कहीं

0: वाह भाई, ये की मारी मगज में ठाट पड़ी
1: पड़ी के
0: आन बात है भाई, वो तो अरदास यू गीत है।
1: हाँ
0: कुदरत ने कहा भाई
1: कई जकीज बात हागिच
0: नी तो कहीं है कई चार पांच एक एड़ा मिनक मिलिया मने कू लकड़ा हाथ को भाई कह नहीं मार तो आप रे कह कह गुद्दा घना है जो कह नहीं क्या शब्द दिया
1: जने
0: मार भाई ये बोल
1: हमें मन ठा पड़ गई काकू बीजो थे तो यहाँ रिया पड़ो एक कोने
0: पर हम करूं कोई भाई मिन का जून है कटी देखो कोई घरे बैठे यहाँ है जिको की सत्ता उन रुक जात को करना भाई
1: हाँ कई कोनी तो
0: बात भाई हम बात चीज कराओ देखने को गुब्बारियां बोले बात करे कोई हम
1: मैं आड़ा करता थे लाड कर मन बोला राख
0: हाँ बोला राख तो भाई
1: तो जहाँ जहाँ थे हम थोड़ा अगरियां बोलो जन मैं मी थोड़ो गीत बजान हाँ
0: देखो मैंने बिल में उन बात है भाई राम राम
2: राम राम राम राम काकू ने कविता की बाईसा ने रेडियो सुनन वाला सगड़ा है चल सुरतो ने
1: राम राम सा राम राम राम
2: राम है काकू
0: हाँ हमें की के दिन भाई
2: रामलाल जी पवार लिदौन वाला भाई रोमा सोमा कया थाने कविता जी ने
1: घने मान रोमा सोमा बने इन थाने एंड दिन जी
2: राम जी जयपाल है डोंगरी वाला जैसलमेर वही थाने रोमा सोमा कया
0: हां हैं भाई सर ना खलक मुलक रा भेड़ा कर लिया हो मार के ना हूं हैं रोमा सोमा
1: अगलो नहीं
0: हमें पावड़ी सर ना हमें एक तो वह पायली और एक वह दायली
2: दायली मतलब कोई चीज ने धावे कोई चीज ने मन ने पूछो उनके दायली कोई भी चीज ने एक बड़ा कहीं पूछियो
1: पावली
0: पायली
1: पायली
2: हाँ पायली पावली एक तोड़न एक माँ एकमात्र को मन को पहले तोड़ना प्रभुद
1: दान चून पायली तोलता
0: तोलता
1: एंड पावली
2: पावली मतलब जो को कहा हमें जो कहा पाव कौन 250 ग्राम जो पुराने कहते पावली
0: चार रानी होती भाई वाह तो कहीं कौन पहले पावली सेट का हमें
1: दूसरी पावली
2: छाड़ो काकू
0: कुत्ता जाने चमड़ा जाने
2: मतलब अपना कोई लेना देना को नहीं।

0: तीजे
1: पौड़ी में
0: था। तीजे पौड़ी का कुआ है के जेठ है खेत में, खेत में रहे जेठ तीवती है हिंदे पालने, बहु जनरी गमक पिनियार, नारा मैली नार नार लुम्बाली, पत्ते का यो घोरो जी थड़िया करे, हाउ जिन अकंड कवार,
1: वाकई गोन मटकी बन खेत जता जाओ,
0: नहीं नहीं यार मटकी वाला की कोन काको देने बाद है, हमके भले टेलीफोन करूं काको,
1: हाँ मन का है प्रताप जी प्रताप न करूं बजनी मिनक है तो एक तो वह प्रताप जी रातिन दो एक वह जातिन दो जातिन दो जातिन दो जातिन दो जातिन दो कह
2: प्रताप जी पहले शब्द रो तो बताओ रातिन दो किने के
0: रातिन दो सर दिन रात आदमी नहीं हुजे उनके रातिन दो
2: दिन रात दिन रह नहीं हो हिंजे परियां पुट्टा नहीं दिखे
1: ना ना दिन रह नहीं दिखे
2: है हाँ हिंजे बदिया पसी नहीं दिखे जिन कह रहा तीन दो आवे है नी
0: हाँ भाई जी
2: एं जातीन दो जातीन दो
0: जातीन दो
2: हाँ
0: जातीन दो तो जात रही साहब वे कोई
1: नहीं जात को है कोई
2: जावत डो है नहीं
1: वाह की कौन थे
0: क्या तो बच्चे कोई जात हो गए तो क्या आ आ
2: इयो वो जातिन दो इस दी के इयो है नहीं हाँ जावत डे ने के जातिन दो सही
1: वाह चापे से पौड़ी सेट का
0: हाँ करो
1: के हंसा सर्वर ना तजो जेजल खारो होई डाबर डाबर डोलता भला ने क्या सीखो
2: कोई इन्हों कई मतलब हंसा सरवर न तजो जे जल खारो होए डाबर डाबर डोलता भला न क्या सीखो
1: ओ कोई क्या तनो ओ कानो से भजन गया पहले को कानी
0: हाँ
1: कौन जो गुरु
2: तो कौन जन इन्हों अर्थ आमनो पढ़े तो हैं
1: डाबर डाबर डोलता
2: भला न कैसी कोई
0: वो तो है के आदमी ने कह कर दे
1: अब आके कौन जिनी बात ये भले कर जो प्रताप जी हो प्रताप जी पहली बार फोन करियो
2: है नी
1: हाँ मन लग है रो राम राम
0: हाँ राम राम सा
1: राम राम सा कौन बोलो सा
0: टीकम चंदी संग्रह
1: ओ टीकम भाई है टीकम भाई एक तो वह जबाड़ो एक वह कबाड़ो हाँ बात तो बोल बोल घड़ी घड़ी है थरवा थी बैठा थे कि एक एक कान खोल ना लूनो का नहीं एक तो वह जबाड़ो एक वह कबाड़ो
0: हेलो
1: हाँ वाह हम के बल कर दो बात करो कोई हेलो हल्ली यूं भाई देखा मारे
2: मार
1: मार ले मार बैठे कौन ही बात करो बस जैसे बात करो नहीं मत करो राम राम
0: राम राम बाप पके लगू
1: बुआ चला आ गा अरे आया पके लगे
0: सबू राम राम
2: राम राम राम राम
1: अरे रहू दी जानी देख न के
2: अगला ही बुआ जाए जन ठेका हूँ करो
1: मैं बाद में
0: क्या बुआ सुनो होना तो कदाई कदाई
1: हाँ हंसला होना वे कागलिया होना वे।

0: डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
4: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: दुनिया रा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रा सुख एक तरफ।
7: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल शिप हाउस पावटा जोधपुर।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: अबार आप सुन रहे हो कार्यक्रम टीम ने नमस्कार।
4: वाह भाई वाह, संदेश आई हुना दिया गीत
5: हुना गीत हुना यो संदेश
4: बढ़िया करियो भाई। राम राम
6: राम राम राम
4: राम
6: का कोशल नैन कविता बन गणा
4: गणा। हां राम राम भाई, रुकम राम भाई आया।
5: हां
6: नहीं मैं
5: रामेश्वरी
4: बोल रामेश्वरी जी। रुकम भाई हम बात करो भाई।
5: रामेश्वरी जी, राम प्यारी जी, रुकमा जी है तो माया एक ही है।
6: माया ना तक लगे।
5: हाँ बस है ना। हाँ तो एक तो वे छोड़ो एने, एक वे खबड़ो, मतलब खबड़ो
6: छोड़ो तो वे छोड़ो पड़ो छोड़ो
5: है
6: कोई चीज रे छोड़ो पड़ो नियम रो छोड़ो।
5: हाँ
4: खेली रो दूजो बोली रो
6: नियम रो।
5: हाँ बिल्कुल सही।
4: क्या सब्जी
5: क्यारी क्यारी लेके फोटो ठीक
4: है। पाउडी भाई साडो बनी घी में घी
5: सब
4: गाल है, तेल में घी
5: कौन गाल है
4: कौन गाल है। सवाल उत्तर आतो आतो कोई अटी फेरे कोई अटी फेरे नाम कौन कहो भाई।
5: रामेश्वरी जी।
4: रामेश्वर भाई तीजे पौड़ी में आडी आको।
5: रामेश्वरी जी कोई आडी थो ने ध्यान है
4: सजग
5: है सजग रामेश्वरी भाई है। तो धन्यवाद रामेश्वरी भाई थाने फोन करने आरु।
4: बो साकीर भाई कहता हूँ खपत करी मारे कह तपत घनी हुई क्या हूँ।

0: कैलिफॉर्म लगाऊं जो को कह लागी को मिश्र भाई कह को आगी भों घणी है जो को कह लेना कपड़े को तो हूं ने और बेल भागी हूं राम राम
1: राम राम करपू राम राम
0: राणो जी के लाग जा फजे राणो जी इन बस कहूं और घरों कहूं कह हां ए पहल के दे कहूं गिमला जी नाम है थार घरों हां मन रे याद रखो थोड़ो
1: मारी बात करनी को भाई लगा दियो ले करो मैं अरे आपने आ रही
0: है तो हां हां सी बात है एक तो है राणो जी फलगटी ने एक वे थलगटी
1: थलगटी का ऊपर घर तक लगाओ थलगटी रे वो
0: थलगटी हम
1: फलगटी रे तो गुआर नीचे उने रे थलगटी
0: आज जी बात है योना बकरिया सर है जी को फलगटी मैं दूरी पौड़िया तो गुणी तो अवगुण तजे गुण गुणी तो अवगुण तजे अवगुणी तजे गुण
2: गुणी वे जका अवगुण तजे न अवगुणी तजे गुण
0: अरे यूं कोई राणो जी थे थोड़ा देखो थाने कहीं हर कुमा घणो हो जाओ टेलीफॉर्म लाग गई थार कहूं है कि एकदम हंसी खुशी हो जा समझा नहीं तो अब इन्हें शब्द ने हुनो
2: और यूं कह जो को हैनो समझ रहा है नहीं वो तो हमेशा ही आप रा अवगुण तज एंड जो को कुबुद्धि रो है नहीं वो गुण तज
0: समझ में आई जी ओले घना बोलो थोड़ा नेड़ा हिर को कर ना ना थे एकदम जीना जीना
2: ऑन बे पर मिला मैं बोलन दे को
0: बोलन को दे क्यों लर को ग ग ग हां
1: पर बैठा है
0: पर बैठा मैं आड़ी आको
1: आड़ी आको
0: हां मिनी ने मोटी पर आओ
1: ना मिनी ने मोटी आओ
0: तो
1: पूरी और मुनी कर मोटी और
0: हां
1: ये तो मैं कह हरी
0: बलि तो कोवे तो किकर कोवे बताओ मने
1: देखो के खेत में हरी बाजार में काली घर में लाल वाज या करे खाई री पत्ती
0: सारी पत्ती आला खेत
2: जवार बाजरी दे घणी दे केड़ी है तुम्बा घणा ही देख उड़ा है मतीरा घणा ही देख उड़ा है होंगरिया घणी देखी
0: वाह वाह की गोल हम थारे जरूर बात करा दो बानी पौड़ी सदा दो
1: बात करा
0: हां करा दो
3: हेलो राम राम सा
0: हां राम राम सा राम राम
2: हेलो
3: हां सा
2: नाव का कंथर
3: मां परमिला नाम है
2: परमिला भाई थे बोलन दो कौन रण जिन हकरा है
3: मैं तो ना दियो
2: या जी माड़ो कौन हकरा चोर मुकन
3: लाल रोटी रोज सुबह शाम खड़ा हो जो भी काम को
2: या ठीक है एक तो वे फूतर एंड एक वे दूतर
3: फूतर
2: हां फूतर एंड दूतर बा
0: तो एक वैक
2: है
3: पुत्र बाजरी री
2: हाँ एया एंड दूतर
0: दूतर तो अरे माड़े से कभी रियानो कन हो कौन के
2: बहुत दूतर ना दूतर तो कहीं करा
0: ये क्या लग मैं मार मार तो दुकन ढोगो राण जी क्या इन थोड़गनों की खटपटा तो वैल को कौन ही मंठा है राण जी का था
2: बेरों बेरों दूतर में नहीं हम जे जन पस कौन हम दे है ओ
3: हां

0: दूतर कहवे मिस ने नाटक करे है बिन कह दूतर मत कर
1: पहले बौड़ी सरगाज में कटो ना कहनी नो सब दियो दूतर कह दूजी घर में राण जी रह गिर करा दी हमें दूजी बौड़ी है दूज तेरी लाज प्यारी लागे दूज तेरी खपत कर दो बाकी तो की कहना करना भाई देखो ये तो ये तरह के कहूँ भाई गीत गीत भक्त क्यों होना गड़ी होना
0: कौन शपथ करी
1: शपथ
0: मगर छाटो रहेगी।

0: वाह भाई ये
1: रोज जाना भोलेनाथ के मंदिर।
0: अरे अर्जुन सी गीत है जो घुना दियो निहाल कर दियो भाई ये। वाह और के कौन है? राम राम।
2: हेलो काकू नो भाई सानो आवर दोदरा गणा गणा राम
3: राम। आवरतान जी थाने गणा गणा
0: और भाई अर्जुन सी गीत हो।
3: हां कोई तो नहीं।
0: हां अर्जुन सी हो भाई
3: के भाई जो बोएगा
0: हाँ वो जगह बा हो जा उगी
3: अंबा नहीं मिले।
0: बात आओ और दान जी आओ
2: आओ
0: काकू पकड़ सीखो पावड़ी सजना है
2: आओ।
0: एक वे पड़पड़ाट एक वे खड़खड़ाट
2: कलकलाट कोई पानी सोमवीड़ ऊंधो करे तो बाबा देन पलपलाट के पलपलाट बिजली करे नहीं ओके मटकियों करे पलपलाट घड़ी घड़ी
0: फुट फुट कर डूब जा क्या कोई है जो क्या नहीं टोकरियों दूजो एकदम क्या को करे पहले पौड़िए अवरदान जी से दिया दूजे पौड़िए के मूर्ख जोवे रूप ने गुण रोवे गुणवान बुगला जो है माछली हंस मोतिया
3: रे खान
2: वो तो डैडी करनी हुए डैडी आपको आप रही हैं गोनो प्यारी हैं बुगलो मछली हारू तो जाने मिले
3: ना ना करनी नहीं आप
0: आ करनी कौन हो इनमें है क्या नहीं कुदरत दियोड़ा क्या नहीं टोपा है हम जानी
3: और आप रे जरूरत जिक्की बहनी इंसान ने वो आपनी जरूरत हो दे हर जगह
0: ठीक है बीजो तावड़ियो बीजो ठीक है
2: तावड़ियो बीजो आज कम है हवा चले तेज
0: हां और तालर पड़ियो जको गोरण में उबा मठड़ो तालाब है भाई अरे एशिया महाद्वीप में हंगो मोटो तालाब
3: हैं
0: टाको है न मैं देखे लूंग इलायची दीन पानी हट को खुशबू आवे
3: क्या
0: बोल लो भाई हूँ कूड़ बोल मुझ पी ना यो वो टाको इतो मोटो है टाको खुदे हो नहीं जिद कहूँ करियो बे सुनेरे भेड़ी इलायचियाँ लूंग न भेड़ परान घट कर लाया उन्हीं सुनाई करियोड़ी जिको आज ही उम्मे लूंग री इलायची री है जिको खुशबू आवे
3: अरे बोलो मैंने कही तो कौन
0: अरे घड़े ही आप भाई बिरला मैंने घड़े ही जानकार है आप बात है 300 साल होगा और न पड़ियो जो का पानी भरी जाए जबरदस्त वो आर गांव ऊजना की खासियत है ठीक है नहीं क्यों भाई देखा पानी री को कह मोल है वो थली थली रो मिन जाने
3: बिल्कुल महिमा पानी री महिमा थली रो जाने
0: हमें तीजे पौड़ी अवरदान जी थे सडो आदि आको
2: आदि चले तेदी चले चले कमर कस ये आदि रस बताओ खाकू रुपया दे दो
3: हां तो बुआरी है
0: 10 10 रुपया में गए
3: बुआरी कोनी
2: ना
3: तो
2: आदि चले तेदी चले चले कमर कस ये आदि रस बताओ खाकू रुपया दे दो
0: लो कमर कसन अपने बुआरी के नारे उठ के है कौन कह थारे टे
2: ओ हमद
0: क्यों
2: दारू
0: आ रहे हैं क्या पर वो है तो की है
2: बताओ
0: की है हेवा कह हो काट दिया करो हाँ हेवा
2: हेवा
0: हेवा काट है नहीं मशीन को है नहीं पुरानी टाइम में आती हम भाई देखो आज है कौन ही बाप रे कौन
2: ही हेवा काट है नाली
3: अम्बा कमर कसन का तो बहमन
0: अरे उन्हें बाल नहीं पड़ती ईद
3: ईद है ईद है वो बाल
0: ना पड़े ये देखो देख क्या जो क्या है
3: ना देख क्या तो मैं घने ही हूँ
0: देख क्या वो आगे कौन जिन्दा है
3: गड़ी मशीन फेदे उड़ी राखड़ी माते
0: मारे मटकी माते करियोड़ी है वहाँ मटकी माते

0: कोई मार तो है कह नहीं के तकबील ही जो मारी लिखी हुई राम राम हाँ ठकोर नो ठोको थी।
1: हेलो
2: हेलो
0: हाँ कौन बोलो?
2: मैं जोधपुर पटना में किशोर बोलू।
0: किशोर भाई बोलो नहीं किशोर भाई मोगरी ठोकी जो मंठा पड़को के है हिलाड़ी मात मोगरी ठोके एक वे चर्राट अने एक वे फर्राट
2: तो जैसे कोई तवा मत आ तो कहीं चढ़ पीड़ी जगह भी नहीं कहीं चर्राट पर तो कोई जैसे कोई मार पीट पड़े नहीं नहीं कहीं फर्राट
0: उनके बड़ा आई जो किशोर भाई हो पक्को आई जो थे जो चिंता ही मत कर जो टाइम टाइम आई जो हो चर्राट और फर्राट ही हुआ है नी बात करो फिर हावड़ थोड़ो मगज लगा सुनो राम राम
3: राम राम सर काकू ने कविता जी ने घना घना राम राम है थानी
1: घना घना राम राम बरकत जी की कर हो
3: जोरदार ठीक हूँ साहु
0: हाँ तो पौड़ी सर जो चर्राट और फर्राट
3: हाँ चर्राट फर्राट तो हम देखे पंखे रोड़े जन बोले फर फर फर पंखा चले और पांच बड़े बोले
0: चर्राट में
1: फर्राट
3: में फर्राट में
0: हाँ फर्राट
3: फर्राट तो ऊपर कोई लागे जन सर बड़े दोड़ी जनी के सर सरदार सरदार लागो
0: क्यों नहीं सर्राट होगो
1: मैं जो गाड़ी दौड़े फर्राट एंड जोर बिरक लागे चर्राट
0: कर चर्राट
3: बिरक लागे तो नहीं बोला
0: चर्राट हाँ किशोर किशोर भाई नहीं आज था पहले पहले पौड़ी सर का तुझे पौड़िया हाँ
3: देखो
0: देवानी क्यों
3: हाँ बोलो
0: तपिया जड़ा जपिया कौन है तपिया जड़ा जपिया कौन हो
3: तो गमक पणियार हो रोजी खड़िया करे वो सिंध गवा
0: है यूं कहो नहीं तो दिन भाई नहीं हम जा दो
3: हाँ दिन भाई नहीं हम जाओ ना आप रे जाना हम जो आप रे आई नहीं आई
0: नहीं मार तो भाई देखो मैं आवे जड़ी आवे है पर थे बता दो
3: हाँ ये वो ठीक हो रही है एड़ी बेड़ी इन कातरी कंबेड़ी
0: बरकत खान जी जीवा जून में थे आया हाजर ताजा रही जो दूजो तो कहूँ कहूँ भाई शाकिर फल आई को रज भी आया भोपाल करने ला
1: राम राम राम राम रज भाई
0: हमें
3: तो आड़ी
0: यूं एक तो है अंदर
1: एक हाँ चलो
0: एक अंदर और एक बंदर
3: अंदर तो सर लेट दब जाना अंदर रह जाओगे
0: हाँ
3: बंदर सब्जी कोई
0: हाँ सब्जी ने आडी को औकाड़ो कहताड़ो है आंधी लारे में आवे बरसात आवे नी
1: आंधी में रो संकेत
0: संकेत है भाई के पहला
1: पहला बाहर छूटे
0: ठीक भाई वो आज

0: ओ भाई गीत लोगों को धनी दुखी क्या और पर शाबाशी दे है तो
1: काउंटा मोरियो हुनियो वे यो मोरियो आज मोरियो ना
0: तावड़ो पड़े पड़े तो मंदे के भाई
1: जोड़ियो गीत ठाकुर जोड़ियो कौन
0: ना ना जोड़ियो बढ़िया ही है सो कही है कोई ठाकुर जरा जोड़ना वाला घनी बैठा बात आ है देखे भाई हुड़ अपार दिन है नीला फूका दियो की नहीं वे लोगा तो आप रे हुड़ कर लिया बाढ़ कांटा कर लिया ए कल भाई राम निवास मिल गया मैंने जो कह मैं तो मार कह हैंग तवी तो कडा दी खाद बिकेर परो और मारे हैंग जी को कह मैं तो मार
1: जोगी कर

0: अनबार काटे कर दिया मैं मार के हड़ौती करा दे तो भाई देखे बेड़ा पाया मोती निपजे और बाकी तो आई है भाई गीत रो तो हंस ही कहे भाई तावड़ो घणो पड़े बारे में मत निकलो और कोई काम काज वे तो भाई चांद्र के कर लो कह नहीं हाफ से हाफ से
1: ना मन तो आलेन हकरी लागे कि के जे घणो हक लागे तो काट लो घूम तो
0: अरे मैं के कौन भाई थार तो कहूं है थे तो कोई पल्लो पकड़ो जित के एड़ो पकड़ो जो हूं कहूं मार मैं के हूं आज हूं गिरदी कोट जाऊं आजकल कोट आवे कोट पहर लो लाऊं गिरा दे जान मत भई ने मन मिल जाए नी गिरा दे
1: प्लास्टिक रा बूट है तो थे हम कहूं
0: अरे हूं खेत में रेडी उठी जाऊं करो तुम्हारे पगर की बीज जा कर जा वाह भाई है बात थे तो कहूं है हैं खोज भी
1: ना ना मैं चाहनी कहूं तो चावल पाव डूग
0: वाह वाह की कौन भाई भाई उड़ा है ना मैं बता दे क्या कि मैं जानी थे नहीं राख जो
1: राख
0: बीज याद ही लिया हूं हैं बात थोड़ी चीज जान ठीक है
1: हां ठंडी ठंडी ठंडी गुड़ ला जाओ
0: हां ले आओ भाई आओ पको पको वाह तो राम राम
1: राम राम राम राम

अभी आप सुन रहे थे टाइम ने नमस्कार प्रोग्राम एफ एम बैंड 102.1 MHz पर आपका रेडियो सेट हुई इस वक्त आकाशवाणी जोधपुर के विविध भारती केंद्र पर। मित्रों 12 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में आपको दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनवाते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही है बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर

प्रियंका ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि

0: करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्याग पत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमद्वीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वदिखिया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खान के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3:03।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

0: शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने, हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो।
0: यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं, लता मंगेशकर का गाया, राजा और रंग फिल्म से, आनंद बख्शी की रचना है।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल जाने सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, इस फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर आशा भोसले का गाया, आनंद बख्शी के बोलों को सुरों में ढाला लक्ष्मीकांत, प्यारे लाल ने।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
2: नहीं ते
1: नहीं ते

0: आप सुन रहे थे सुहाग फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओ, ये तो सही है कि आप जहाँ जहाँ हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो

अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं, इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया। कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ। याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं। एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सूंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते, कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला

ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं। एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं। शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं। सुनो, चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें, जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक, इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओ, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद के चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

0: सपनों की उड़ान को जब हौसलों का आकाश मिलता है तो इतिहास खुद ब खुद अपनी कहानी लिखने लगता है।
1: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को आपकी रेडियो सखी पूर्णिमा और
0: आशा का प्यार भरा नमस्कार।

0: हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है, कुछ नए अनुभव देता है और कुछ नई संभावनाओं के द्वार खोलता है। जीवन की यही खूबसूरती है सखियों कि हर पल में सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर छिपा होता है।
1: बिल्कुल पूर्णिमा, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जीवन से जुड़े कुछ ऐसे विषयों की जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सोच को और हमारे रोजमर्रा के जीवन को बहुत ही प्रभावित करते हैं। कुछ बातें हमें प्रेरणा देती है, कुछ मुस्कुराने का अवसर देती है और कुछ हमें अपने ही भीतर झांकने का मौका भी देती है।
0: और आशा, ये प्रोग्राम केवल जानकारी का माध्यम नहीं है बल्कि सकारात्मक सोच, नई ऊर्जा और एक बेहतर जीवन जीने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। तो अपने सभी कामों के साथ हमें भी अपना थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि हम साथ मिलकर करेंगे बच्चों के ज्ञान, अनुभव और मनोरंजन की खूबसूरत यात्रा।

0: तो सखियों, आज पूरा विश्व मना रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। ये दिन केवल जीत हार या पदकों का नहीं है, बल्कि ये उत्सव है मानवीय जज्बे का, अनुशासन का और शांति का। तो आज के इस अवसर पर हमारे ये कार्यक्रम समर्पित है बच्चों को जो आजकल खेल खेलना भूल गए हैं। खेल ज़रूरी है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो आज इसी पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है खेल अध्यापिका श्रीमती मनीषा बालेश्वर जी, और इनसे बातचीत कर रही हैं पूर्णिमा जैन। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: बचपन एक बहुत सुंदर एहसास, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र, बस बाल सुलभ चेष्टाएं। आज की आधुनिक पेरेंटिंग में बचपन का स्वरूप बदल गया है। हाइजीन और साफ सफाई की आड़ में बालपना संकुचित दायरे में कैद हो गया है। कंचे, गिली डंडा, पिट्ठू, कबड्डी, संतोलिया और न जाने कितने ही स्ट्रीट गेम्स थे जो हमने खेले थे, पर आज के बच्चों की जीवन शैली से लुप्त हो गए हैं। उन गेम्स का अस्तित्व बचा रहे और विश्वव्यापी बच्चों के खेल फिर से जीवन शैली का हिस्सा बने, इसीलिए यूनिसेफ और यूएनओ ने 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाने की घोषणा की। आज इसी विषय पर बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं खेल अध्यापिका श्रीमती मनीषा बालेश्वर जी। मनीषा जी नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम नारी वाटिका में।
2: धन्यवाद।
1: मनीषा जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल दिवस मनाना खेलों का मनुष्य जीवन में महत्व को दर्शाता है।

0: तो आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: खेल मनुष्य जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। खेल कूद मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे हमें फिजिकली फिट, मेंटली एक्टिव एंड इमोशनली स्ट्रांग बनाते हैं
0: जी।
1: कुछ उदाहरण देके मैं बताना चाहूंगी। जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी टीम वर्क और सहयोग की भावना सीखते हैं, योग से बच्चे और बड़े फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस और उनका मानसिक शांति, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आज चाहिए,
0: हाँ।
1: जरूरी है, चाहे छोटे चाहे बड़े चाहे बच्चे, मानसिक शांति बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मानसिक शांति है तो आप फिजिकली फिट ऑटोमेटिक ही रहेंगे।
0: जी।
1: और इसी में मैं कहूँगी क्रिकेट, क्रिकेट जो गेम है वो बच्चों को धैर्य, एकाग्रता और खेल भावना सिखाता है, और खेल भावना तो सभी गेम सिखाते ही हैं।
0: हाँ, और अगर खेल जो है वो हमारी शारीरिक फिटनेस तक ही सीमित है या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी इसे पाठशाला हम कह सकते हैं?
1: बिल्कुल कह सकते हैं, जब हम पहले ही बता चुके हैं कि खेल एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी है तो वो पाठशाला तो है ही। इसके माध्यम से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व मतलब लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, पेशेंस, डिसीजन मेकिंग क्षमता का विकास होता है ना। खेल में बच्चे हार जीत, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हार को भी सहर्ष स्वीकार करना सीखते हैं, और जो हार को भी सहर्ष स्वीकार करना सीख गया मतलब वो जीत गया। वो जीवन में भी जीत गया, गेम में तो जीता ही लेकिन वो जीवन में भी जीत गया,
0: क्योंकि हार को एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी बात
1: बहुत
0: है।
1: बड़ी बात है, बिल्कुल सही। इससे हमारे व्यक्तित्व और अधिक सशक्त बनता है बच्चे का, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्रिकेट का कप्तान नेतृत्व और जिम्मेदारी सीखता है ना। बास्केटबॉल में बच्चे टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, है ना।
0: जब बॉल
1: और
0: पास ऑन होती है तो
1: बिल्कुल
0: इशारों
1: में जो कम्युनिकेशन होता है ना उसमें,
0: हाँ।
1: वो बहुत प्यारा और बहुत बड़ा। और ट्यूनिंग, ट्यूनिंग के मैं ऐसे करूंगा तो तेरे को उस समय आगे निकलना है और शूट करना है, सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, बस इशारा मिलने की देर है। तो वो एक कंटिन्यूटी जो उनके आपस में सामंजस्य बिठाना, वो इन गेम्स के थ्रू तो बहुत ही शानदार चीज निकल के आती है। ऐसे अपन ले एथलीट, एक एथलीट जब एक डेली प्रैक्टिस करता है, डेली उस सेम चीज रिपीट करनी है उसने, डेली नियमित अभ्यास के माध्यम से वो दृढ़ता और आत्म अनुशासन सीखता है। ऐसे ही अपन राइफल शूटिंग वाले बच्चे को लें,
0: हाँ।
1: राइफल शूटिंग से सबसे इंपॉर्टेंट एकाग्रता, एकाग्रता चाहिए उस गेम के लिए।
0: जी, वो तो बहुत,
1: और अगर जरा भी
0: है।
1: डिस्ट्रैक्ट हुआ तो शूट प्रॉपर नहीं होगा।
0: जी, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले है, उसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर उसे मनाए जाने का क्या कारण रहा है?
1: हाँ, ये इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले एक नया कॉन्सेप्ट निकाला है, क्योंकि क्या हो रहा है अब आजकल, आपको पता है, मोबाइल, गैजेट्स, बच्चे सब इसमें घुस गए हैं। कुछ जो हमने और हमारे पेरेंट्स ने जो बचपन में गली मोहल्ले सड़कों पे और जनरल पार्क में जो गेम खेले हैं, बिना सामान के, बिना गैजेट्स के, कोई एक्सपेंसिव सामान की जरूरत नहीं है
0: जी।
1: तो उस चीज को वापस रिकवर करने के लिए ये डे मनाया जा रहा है, जो कि 11 जून को मनाया जाना है। इसका उद्देश्य बच्चों और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए जीवन में खेल और मनोरंजन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, है ना। और चूंकि खेल से फिजिकली फिटनेस और सोशल स्किल तो हो ही रही है, तो उससे पूरा सर्वांगीण विश्व का विकास होगा और समाज का तो होगा ही होगा। समाज का होगा तो आगे देश का होगा, देश का होगा तो विश्व का विकास होना ही है। इसका जो मेन उद्देश्य है, दुनिया भर के खेल के महत्व को पहचानना और बच्चों तथा बड़ों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक भावना का विकास को बढ़ावा देना है। कोई भी काम करोगे तो कुछ तो असर होगा ही होगा उस चीज का। वो अपन कहते हैं ना, जैसे के साथ रहोगे फ्रेंड सर्कल के साथ तो वैसा असर होगा,
0: जैसा
1: तो
0: बीज बोएंगे वैसा पौधा मिलेगा,
1: पौधा मिलेगा। तो हर आप कोई भी काम करते हो तो उसका असर आप पे होता है। मेडिटेशन करते हो तो कुछ तो होगा ही होगा, खेलते हो तो कुछ तो होगा ही होगा, तो बट नेचुरल है। अब मैं कहूं कि इसको मनाए जाने के कुछ कारण
0: रहे हैं
1: तो बच्चों के सर्वपूर्ण विकास को बढ़ावा देना है, एक तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, क्योंकि आजकल बच्चे डिप्रेशन का बहुत शिकार हो रहे हैं
0: जी।
1: पढ़ाई वढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर आ गया है बच्चों के ऊपर, तो मैं कहती हूँ अगर शाम को आधा घंटा बच्चा वो खेल

0: लेगा तो बहुत उसके मतलब ओवरऑल चेंज आएगा उसमें. जरूरी है वो चाहे मनोरंजन के लिए खेले, मनोरंजन के लिए खेले, कोई जरूरी नहीं है उसको प्लेयर बनना है. ठीक है वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन सारा दिन पढ़ने के बाद एक बार फिजिकली अपने बॉडी को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, और खेल के थ्रू एक्टिव करेगा तो कहने ही क्या
1: जी जी
0: है ना. और नेक्स्ट मैं बोलूंगी सामाजिक कौशल विकसित करना, मतलब बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ मिलेगा या चाहे अपने थोड़ा एज से बड़े छोटे किसी, तो एक सहयोग की भावना, मित्रता, ये चीजें सीखेगा जो
1: जी
0: सोसाइटी में बहुत जरूरी है. अकेला एक कमरे में बैठे बैठे पढ़ते रहना तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो रही पाती
1: उनका
0: है,
1: सिर्फ
0: मुश्किल
1: जो
0: आती
1: बुकिश
0: है
1: ज्ञान है वो बढ़ता जा रहा है,
0: जा रहा
1: फिजिकल
0: है.
1: जो एक्टिविटी है वो
0: हाँ
1: फिजिकली उनकी बॉडी
0: हाँ
1: फिट नहीं
0: नहीं
1: है.
0: है. व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं उसमें कि हमें कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, हमें किसके साथ कितना बोलना चाहिए. तो बहुत जब कम्युनिकेट करोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे.
1: जी
0: और नेक्स्ट कारण मैं बताना चाहूंगी, बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना. खेलना प्रत्येक बच्चे का महत्वपूर्ण अधिकार है,
1: जी
0: और छोटा बच्चा तो खेल के ही बड़ा होता है. छोटा बच्चा अगर बैठ गया तो फिर वो बच्चा ही क्या है ना. और मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज चल रहा है कारण, डिजिटल डिपेंडेंसी.
1: जी
0: बच्चा पूरा डिजिटल चीजों पे डिपेंड हो गया है. खेलेगा तो डिजिटली खेलेगा, हिलेगा तो डिजिटली लेगा, देखेगा कोई मनोरंजन का तो वो डिजिटली. तो इस चीज से दूर रखने के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें पार्टिसिपेट करना. फॉर एग्जाम्पल, यदि बच्चे प्रतिदिन कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, चेस या सतोलिया जैसे गेम खेलते हैं ना, तो वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे बल्कि टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना की क्षमता और मित्रता जैसे कौशल सीखेंगे,
1: जी
0: है ना. तो जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले का मुख्य उद्देश्य और उनका जो संदेश ये है कि खेल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ और खुशहाल सक्षम समाज के निर्माण
1: के लिए
0: के लिए भी
1: जी
0: जरूरी है.
1: जी मनीषा जी, हर दिवस विशेष के लिए हर वर्ष एक यूनिक थीम रखी जाती है, और इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2026 की जो थीम है वो आप किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे?
0: हाँ, इस बार 2026 का इसका थीम है,
1: जी
0: वो है प्रोटेक्ट प्ले, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड. मतलब
1: जी
0: खेल को सुरक्षित रखें और बचपन को सुरक्षित रखें. ये थीम इस बात पर जोर दे रही है कि खेल बच्चों के बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. खेल के माध्यम से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इसलिए बच्चों को सुरक्षित, समावेशी और आनंददायक अवसर प्रदान करना ताकि उनका बचपन सुरक्षित रहे और सर्वांगीण विकास हो सके.
1: और मनीषा जी, ये तो रही आउटडोर गेम्स की बात, आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर गेम्स के प्रति लोगों का रुझान बढ़े इसके लिए आपका क्या कहना
0: हाँ बिल्कुल, जैसे गर्मी की हालत आप देख रहे हो तो इंडोर
1: है?
0: गेम बिल्कुल जरूरी है. और इंडोर गेम में सबसे स्मार्ट गेम मैं कहूंगी चेस, जो आजकल थोड़ा बढ़ावा मिल रहा है इसको, नो डाउट. नेक्स्ट कैरम, कैरम में भी बहुत बच्चे मजा लेते हैं. तो मेरा अनुरोध है स्कूलों से और अपने परिवार के लोगों से, फैमिली
1: जी
0: मेंबर्स या उस समुदाय के लोगों से, कि समय समय पर चेस और कैरम या और कुछ इंडोर गेम्स का आयोजन छोटे छोटे लेवल पे करते रहें ताकि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें
1: जी
0: और छोटे छोटे उनको पुरस्कार भी प्रदान करें. तो उससे उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको मोटिवेट होंगे तो ही तो पार्टिसिपेट
1: वो
0: करेंगे.
1: तो है
0: तो सभी स्कूलों से भी मेरी गुजारिश है कि वो अपने यहाँ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करें,
1: जी
0: स्पेशली चेस और कैरम के गेम्स के, है ना. उससे और कॉम्पिटिशन होगा तो हमें एक अच्छे खिलाड़ी भी मिलेंगे, तो उनको हम आगे रेफर कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए. तो उससे उनमें एंथुजियाज्म बढ़ेगा इन दोनों गेम्स के प्रति.
1: जी तो ये तो रही इंडोर गेम्स की बात, अगर हम बात करें ट्रेडिशनल गेम्स की या अनऑर्गेनाइज्ड गेम्स की, जैसे कबड्डी, खो खो, संतोलिया या रस्सी को कूदना, गिल्ली डंडा, इन सबसे जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए हमारे क्या प्रयास रहने चाहिए?
0: बिल्कुल, ट्रेडिशनल गेम लुप्त होते जा रहे हैं और आई लव ट्रेडिशनल गेम्स. मुझे तो बड़ा मजा आता है
1: हाँ, मैं भी
0: क्योंकि
1: बड़ा मजा आता है क्योंकि बचपन में वही गेम खेल के बड़े
0: यस
1: हुए हैं.
0: यस, हम भी वो रोज शाम को बाहर सड़क पे जाना, मम्मी मैं जा रही हूँ खेलने, आप बुलाना मत जल्दी 1 घंटा पहले. तो और उसमें ना तो कोई एक्सपेंसिव सामान चाहिए हमें,
1: जी
0: जो हमारे ट्रेडिशनल गेम हुआ करते थे उनमें गिल्ली डंडा हो गया और हाथ उंगल जंप हो गया, लंगड़ी टांग हो गया.

0: रस्सी कूदना, जैसे रस्सी कूदने में तो दो तीन तरह के इंडिविजुअल, अकेले बच्चा कूद रहा है ना, अलग अलग तरह की रस्सी कूदते हैं, उल्टा
1: हाँ
0: कूदना, सीधा कूदना,
1: दो
0: और
1: जने
0: दो बच्चे पकड़ के घुमा रहे हैं उसको
1: हाँ
0: और बीच में एक बच्चा उसमें कूद
1: कूद
0: रहा
1: रहा
0: है,
1: है।
0: तो ये हमने तो खूब ही किया है। और रेसिंग भी होती थी, रस्सी रेस, रस्सी कूदने वाली रेसिंग होती थी, तो वो चीजें बहुत ही प्यारी लगती थी। और बॉल से फेंक करके मारने का वो, जैसे पकड़म पकड़ाई खेलते तो अपन हाथ से छूते हैं, तो
1: हाँ
0: उसमें करते करते कपड़े की बॉल बनती थी, कोई बॉल नहीं चाहिए, खरीद के लाने की भी जरूरत नहीं है, वो कपड़ों के छोटे छोटे चिंदियों को लपेट लपेट के लपेट लपेट गोल बॉल बन जाती थी और उससे ही खेल लेते थे। तो ट्रेडिशनल गेम के लिए भी मैं ये कहूंगी, स्कूलों से और समुदायों और स्थानीय कार्यक्रम इनको बढ़ावा दें, बच्चों को इन खेलों के नियम और महत्व बताएं, है
1: जी
0: ना। सभी घरों में बुजुर्ग होते हैं तो वो लोग ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये चीज घर से स्टार्ट होगी तब स्कूल और आगे
1: बढ़
0: लोकल लेवल
1: पाएगी।
0: पे पहुंचेगी, इससे हमारी संस्कृति और विरासत भी सुरक्षित रहेगी,
1: जी
0: है ना। और आप बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो होगा ही होगा, तो स्कूल में क्या करना चाहिए, स्कूल को अपने करिकुलम में इंडिजीनियस गेम्स इन्वॉल्व करने चाहिए, जैसे जो रूटीन टाइम टेबल होता है, वीकली टाइम टेबल होता है गेम्स का, तो उसमें हर क्लास का एक दिन ले लें, एक गेम ले लें, तो वो क्लास उस गेम को वाकई इंजॉय करेगी। और मैं करती भी हूँ ये, दिस इज ट्रू, मैंने किया है, और बच्चों ने मेरे ख्याल से जो अभी के गेम्स हैं उनसे ज्यादा इंजॉय किया है, क्योंकि उसमें ज्यादा उनको रूल रेगुलेशन में बांधा नहीं था, तो दे इंजॉयड अ लॉट।
1: आज के बच्चों की अगर हम बात करें तो आज के जो बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम उनका जो है वो बढ़ रहा है, और गेम्स भी खेलते हैं तो मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पे। ये सही नहीं है, पर इससे कैसे कम कर सकते हैं, उनका कैसे इसे हम छुड़वा सकते हैं, और कैसे बच्चों को फिर से हम स्ट्रीट गेम से जोड़ सकते हैं?
0: आज का जो कहते हैं ना ज्वलंत विषय है ना, तो वो ये बच्चे बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो कुछ चला के देख रहे हैं बच्चे, मतलब इवन जो जॉगिंग भी कर रहे हैं तो कान में लगा के सुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहा है। और खेल भी, जैसे इवन मैं बताऊँ ना, चेस के लिए बच्चे जो घर में शुरू करते हैं ना वो ऑनलाइन शुरू कर देते हैं। मैं इसको बिल्कुल भी वो नहीं करूँगी, प्रोत्साहन नहीं दूंगी कि ऑनलाइन चेस खेलो, आप किसी के साथ खेलो, आप कोचिंग लगा लो, कोई बात नहीं, आप अपने स्कूल में टीचर से पूछ लो, इनके रूल पूछ लो, फिर धीरे धीरे खेलना स्टार्ट करो घर पे, क्योंकि दो मेंबर तो चाहिए नो डाउट। तो छोटे बच्चे को अपन एक दिन में एक बार में ये कह के डिजिटल चीज से नहीं हटा सकते, बेटा आज से नहीं खेलना है, नहीं वो नहीं पॉसिबल है, प्यार से बार बार बार बार समझाएंगे तो आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है, बच्चा समझेगा हमारी बात। और सबसे पहले घर में डिसिप्लिन कि आप खुद चीजों को कम यूज करें तो बच्चा अपने आप को, क्योंकि आप उसको एग्जाम्पल जब पहले खुद अपने आप को सेट करेंगे ना तभी तो आप कह सकते हैं ना। तो बच्चे का धीरे धीरे डिजिटल टाइम कम करें, है ना, उससे स्क्रीन टाइम को पहले बोलेंगे बेटा आज अपन सिर्फ 1 घंटा देखेंगे और 1 घंटा खेलेंगे, आज अपन वहां चलेंगे खेलने, आज अपन ये करेंगे, आज मैंने ना तुम्हारे लिए ये एक एक्टिविटी तैयार की है तो चलो आज अपन दोनों मिलके खेलेंगे, आज देखे कौन जीतता है। कुछ भी नहीं तो मम्मा लोग तो किचन में भी एक्टिविटी प्रिपेयर कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, किचन में भी आराम से, ये 2 आलू लिए, 2 तू छील, 2 मैं छीलूंगी, देखे कौन फर्स्ट आता है, तो ये काम भी हो जाएगा। और बड़ी बेसिक सी चीज है, कुछ नहीं है, बच्चा मानेगा, बच्चे को लेकिन टाइम देना पड़ेगा आपको,
1: और इसमें
0: है ना।
1: बच्चों के साथ पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट अगर पहले
0: बिल्कुल,
1: रहेगा तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीजों को एक्सेप्ट करना सीखेंगे।
0: और परिवार के साथ बच्चे खेलकूद, योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी हिस्सा लें। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूंगी, अगर बच्चा रोज 2 घंटे मोबाइल पे गेम खेलता है तो उसका कुछ समय कम करके उसमें उसे शाम को पार्क में दोस्तों के साथ खेलने दें, उसको प्रोत्साहित करें, इससे उसका स्क्रीन टाइम भी कम होगा और शारीरिक गतिविधि भी बढ़ेगी।
1: मनीषा जी, स्पोर्ट्स पर घंटों बातें की जा सकती है, पर समय का तकाजा है, और ऐसी कोई बात या संदेश जो आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहती हैं पर हमारे जो कॉन्वर्जेशन है उसमें रह गई हैं, तो प्लीज़ बताएं।
0: हाँ, चूंकि ये इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले को मनाने के लिए अपन लोगों ने आज इतनी वार्तालाप किया, तो बट नेचुरली मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि वो बच्चों के लिए समर कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करें, खुद ही अपने लोकल लेवल पे कर लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा स्पेशली कहीं से कोचेस को बुलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें तो पेरेंट्स खुद भी सिखा सकते हैं, है ना। शाम को पार्क में थोड़ा सा एक कंपटीशन लेवल, छोटे छोटे प्राइज रखें बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, तो उससे बच्चे इन्वॉल्व होंगे, नो डाउट, बिल्कुल होंगे। और

0: डेमोन्स्ट्रेशन का इंतज़ाम करें, ताकि जैसे ताइक्वांडो, जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस की चीज़ों के लिए, उसके लिए मैं ये कहूँगी हाँ एक्सपर्ट को बुला लें और उसका डेमोन्स्ट्रेशन रखें, ताकि बच्चे उसे देखें, देख के भी बच्चे सीखते हैं।
1: जी
0: लर्निंग बाय सीइंग, लर्निंग बाय डूइंग तो है ही है।
1: जी
0: तो बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे बच्चे और स्क्रीन टाइम से भी दूर रहेंगे, तो अलग अलग चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज करें तो बहुत अच्छा होगा। और सभी पेरेंट्स से और शिक्षकों से मेरी गुजारिश है कि आज 11 जून को जो इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है।
1: मनीषा जी, आप हमारे स्टूडियो पधारी, रोचक और ज्ञानवर्धक मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
2: सखियों, अभी आपने सुनी भेंट वार्ता, खेल अध्यापिका श्रीमती मनीषा बालेश्वर जी से बात की पूर्णिमा जैन ने। और अब आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: सखियों, मौसम चल रहा है गर्मियों का और इतनी तेज गर्मी हो रही है, पारा चढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही बच्चों के चेहरों पर एक अलग ही रौनक और चमक दिखाई देती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चल रही है उनकी पसंदीदा गर्मियों की छुट्टियां। क्यों पूर्णिमा?
1: हाँ, पसंदीदा क्यों नहीं होगी। स्कूल की घंटी से उन्हें आराम है, सुबह जल्दी जागने की टेंशन खत्म, और जो भारी भरकम जो स्कूल का बैग है उसका जो बोझ है ना, वो 2 महीने से जो है उससे उनको आज़ादी है। पर जैसे ये जो छुट्टियां शुरू होती है ना, वैसे ही माता पिता के सर पे एक चिंता की लकीर आ जाती है कि अब पूरा दिन इन बच्चों को हम कैसे संभालेंगे, और यही दिन भर टीवी और मोबाइल से चिपके रहेंगे।
0: पर पूर्णिमा एक बात तो बताओ, क्या छुट्टियां सिर्फ स्क्रीन देखने के लिए हैं, या छुट्टियां वो जादुई पिटारा है जिसमें हम बच्चों को बहुत सारी क्रिएटिविटी सिखा सकते हैं?
1: देखो, जब हम छोटे थे ना, तब वहाँ पे कोई स्मार्टफोन तो था नहीं। हम दोपहर में सुबह मिट्टी के घर बनाते थे, कई बार हम कागज़ की नाव बना के छोटे से पानी के अंदर उसको चलाने की कोशिश करते थे, या फिर कई बार हम अपनी जो पुरानी कॉपियाँ थी ना उसमें ड्राइंग भी किया करते थे। तो आज के बच्चों को भी इसी रचनात्मक दुनिया में हमें ले जाना है, और ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। इसलिए इस बार जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं उसमें बच्चों को सिर्फ होमवर्क जो है उनका, स्कूल का जो डेली होमवर्क है, हॉलीडे होमवर्क जो उनको मिलता है, उसमें मत उलझाइए, बल्कि उनके अंदर भीतर के जो कलाकार है, या उनके अंदर कोई, किसी के लिखने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लिखता है, तो उनके अंदर का कलाकार, लेखक या फिर कोई वैज्ञानिक है, तो उसको जगाइए और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
0: बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे मज़ेदार आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिनमें बच्चों को बिजी रख सकते हैं। जैसे किचन में छोटे बच्चों को बिना आग वाले कुकिंग सिखा सकते हैं, जैसे सैंडविच बनाना, नींबू पानी या मैंगो शेक तैयार करना, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। या कबाड़ से जुगाड़ यानी वेस्ट से बेस्ट बनाने की कला, घर के पुराने गत्ते उनको दे सकते हैं, खाली जो बॉटल्स है या अखबार देकर कुछ भी उनको नया बनाने को कहें। आप देखेंगे कि बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं कि वो कुछ भी बना सकते हैं। तो और जब वो कुछ बनाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है, और उनका दिमाग जो कैसे चलता है आज के जमाने में वो हमें भी पता चलता है।
1: और यही नहीं, उन्हें हम एक सुंदर सी डायरी लाके दे सकते हैं, और उन्हें हम कहें कि हर दिन सबसे मजेदार जो पल है उनका, उसे लिखें, या उसकी ड्राइंग उसके अंदर है वो स्केच बनाएं, या फिर उन्हें हम पौधों के अंदर पानी डालना सिखा सकते हैं, मिट्टी में उनको मिट्टी कैसे, उसके अंदर खाद देनी है पौधों के अंदर, हम वो सिखा सकते हैं। हम प्रकृति से उनको जोड़ेंगे तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सबसे पहली सीढ़ी होती है प्रकृति से उनको जोड़ने की, क्रिएटिविटी के अंदर के निखारने की। इसके अलावा हम उन्हें एक कोई हॉबी क्लासेस ज्वाइन करवा सकते हैं, या फिर अगर बच्चे बड़े हैं तो आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं आशा, जो बच्चे करना चाहते हैं। तो यही छुट्टियां होती हैं जब उन बच्चों को हम उन क्लासेस ज्वाइन करवा के कोई नए कोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत सारी एनर्जी छुपी होती है, और उस एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं दे तो उनकी जो एनर्जी है वो वेस्ट चली जाती है, और उनका दिमाग है वो इधर उधर चलने लगता है।
0: तो गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उनकी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें, कुछ नया सीखने, उनको बिजी रखें कुछ नया सीखने में, और गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाएं। तो सखियों, इस बार बच्चों के हाथों में रिमोट या मोबाइल थमाने की बजाय उन्हें रंगों की कूंची, मिट्टी की खुशबू और कल्पनाओं के पंख दीजिए। फिर देखिएगा, ये गर्मी बोरिंग नहीं बल्कि सबसे ज्यादा यादगार बन जाएगी।

0: आशा, समय बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है महिलाओं की भूमिका भी। आज महिलाएं जो है वो घर और कार्य क्षेत्र के साथ साथ खेलों में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। और ना, आपको पता है जब एक समय था जब खेलों को पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज महिलाएं इस सोच को पूरी तरह बदल चुकी हैं।
1: इसीलिए ही चाहे क्रिकेट देख लो, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती या एथलेटिक्स, अनेक अनेक खेल हैं जो पहले पुरुषों के नाम पर थे, आज विश्व स्तर पर अपना देश का नाम रोशन कर रही है और महिलाएं भी ऐसे खेल खेल रही है। तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, केवल पदक पाना नहीं है, केवल प्राइज लेना नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की एक कहानी भी है। समाज बदल रहा है क्योंकि महिलाएं बदल रही हैं। तो उनकी भागीदारी नई पीढ़ी की लड़कियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने का भी साहस देती है।
0: और आज ऐसी अनेक भारतीय खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। खेल महिलाओं के समाज के लैंगिक समानता को नहीं मजबूत करता है, बल्कि वो उन्हें सफलता उन खेलों के उनकी सफलता को सम्मानित करता है।
1: और साथ साथ महिलाओं की जो उपलब्धियां हैं वो ये भी एक संदेश देती है कि प्रतिभा सिर्फ पुरुषों पर उसका हक नहीं है, और यदि अवसर और समर्थन मिले तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर सकती है, और हम ये देखते भी हैं।
0: और ये खेल जो है वो महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और नेतृत्व की क्षमता प्रदान करता है। और यही नहीं, आज भारतीय महिलाएं खेल जगत में अपनी प्रतिभा और मेहनत से देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रही हैं।
1: हर चुनौती को महिलाओं ने दृढ़ता से परास्त किया है। रुकावट तो बहुत आई उनकी राहों में, मगर वे जमीन पर रहकर भी फलक छूने का हुनर जानती हैं।
0: नाजुक समझ कर कम ना आंकना उन उंगलियों को, वे घर की कमान और देश का सम्मान दोनों संभालना जानती हैं।

0: तो सखियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, है ना।
1: जी
0: तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने समाज की संकीर्ण बेड़ियों को तोड़कर खेल के मैदान में एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है। चाहे वो हम मैरी कॉम की बात करें, उनके अदम्य साहस की बात करें, या पीवी सिंधु की बात करें, या फिर हमारी उन अनगिनत बेटियों का अटूट विश्वास जो छोटे छोटे गाँवों से निकल कर आती है और विश्व के पटल पर तिरंगे के गौरव को एक स्वर्णिम आभासी सारोबार करती है।
1: आज का समय साक्षी है उन अनकही कहानियों का, उन पसीनों की बूंदों का और उस अटूट संकल्प का जिसने महिलाओं को केवल प्रतिभागी नहीं बल्कि विजेता बनाया है।
0: हाँ, अब जैसे हम पीवी सिंधु की बात कर लें, भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है वो। वे ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं और विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। साथ में हम मैरी कॉम को कैसे भूल सकते हैं, वो 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज बन चुकी है और उन्हें मैग्निफिसेंट मैरी और सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने महिलाओं को बॉक्सिंग में एक नई पहचान दिलाई।
1: और भारत में पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक पद जीता और वैश्विक रैंक में नंबर 1 स्थान जो प्राप्त किया था वो था साइना नेहवाल ने। और यही नहीं, साक्षी मलिक जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है, उन्होंने कुश्ती में देश की अनेक लड़कियों को प्रेरित किया।
0: और साथ में मीराबाई चानू को हम कैसे भूल सकते हैं, वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक रजत पद विजेता। अपनी मेहनत और संघर्ष के कारण वे युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत हैं।
1: इसके बाद हिमा दास जो है वो डिंग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला धावक थी।
0: और विनेश फोगाट को हम कैसे भूल सकते हैं, भारत की अग्रणी महिला पहलवानों में से एक। उन्होंने राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में कई पदक जीते हैं।
1: विश्व स्तरीय तिरंगदाज यानी कि दीपिका कुमारी जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को गौरवान्वित किया है।
0: और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रह चुकी हरमनप्रीत कौर, उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने महिला क्रिकेट को एक नई लोकप्रियता दी है।
1: निखत जरीन जिन्होंने विश्व

0: चैंपियन मुक्केबाज और जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से भारतीय महिला बॉक्सिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
1: बिल्कुल, महिलाओं की सफलता समाज की सफलता है। खेलों में उनकी जो निरंतर उपलब्धियां बढ़ रही है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। और हम ऐसी व्यवस्था हमें परिवार के अंदर बनानी चाहिए कि जहां हर लड़की को अपने सपनों को खुलकर जीने का मौका मिले।

0: सखियों, अब बात करते हैं रिश्तों की, और रिश्ते लंबे समय तक चले इसके लिए ज़रूरी है माफ़ी मांगना और माफ़ करना। कभी कभी दिल की गलियों में माफ़ी भी मुस्कराती है जो टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ देती है।
1: जी हाँ सखियों, माफ़ करना और माफ़ी मांगना जीवन की वो कला है जो आपको आगे बढ़ाती है और आपके रिश्ते जो हैं उनको बेहतर बनाती है। आपके सारे मन के जो बोझ हैं वो एक बार माफ़ी मांगने से ख़त्म हो जाते हैं।
0: बिल्कुल पूर्णिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये कमज़ोरी नहीं है, नहीं ये हार है। माफ़ करना तो एक खूबसूरत सा उपहार है। तो ये उपहार किसे देना चाहिए? सबसे पहले तो ये माना जाता है कि इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए। यानी आपके जीवन में आपसे कोई गलती हो गई है जो अब तक आपने मन को दबा रखी है, आपने मन में जो आपके मन को बोझिल किए हुए एक पछतावा है आपको अंदर ही अंदर खा रहा है, तो आपको अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए।
1: और अगर हमारी हमें हमसे कभी कोई चूक हो जाए या हमसे कोई भूल हो जाए और हम ये सोचते रहे कि हम माफ़ी मांगने से हमारा कुछ हो जाएगा और हम माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। हमें उम्र नहीं देखनी चाहिए, पर जहाँ हमारी गलती है हमें उसे माफ़ी मांग के उस रिश्ते को जो है वो बनाए रखना चाहिए।
0: तो ये जो माफ़ी है टूटे हुए रिश्तों के तार जोड़ लेती है। सच कहते हैं वो रिश्ता भी इसी इंतज़ार में होता है कि कभी उसका फ़ोन आ जाए या मतलब इंतज़ार रहता है ना। तो अगर हम आगे बढ़कर फ़ोन कर लेते हैं, आगे बढ़कर बात कर देते हैं, तो रिश्ता माफ़ी की तार से जुड़ जाता है और बहुत सुंदर बन जाता है।
1: और पर अगर कोई गलती हो जाती है और हम बात करना छोड़ देते हैं तो वो डिफरेंसेस आ जाते हैं जो रिश्ते हैं उसके अंदर, एक गैप आ जाता है और दरारें बढ़ जाती है। इसलिए हमें उस चीज़ को, अगर हमें रिश्ता निभाना है तो झुकना हमें, अगर हमारी गलती तो झुकना हमें पड़ेगा और हमें माफ़ी मांग के उस रिश्ते को बचा लेना चाहिए।
0: तो एक नई शुरुआत दे खुद को और रिश्तों को, क्योंकि जिस तरह किसी कमरे में वर्षों से अंधेरा पड़ा है ना, तो ज़रूरी नहीं कि उजाला करने में वर्षों लगे। बस एक स्विच ऑन किया और अंधेरा गायब हो जाता है। कोई कपड़ा फटा है वर्षों से महीनों से, तो जरूरी नहीं कि उसको सिलने में भी महीनों लगे वर्षों लगे। कोई भूखा है कई दिनों का, तो अब उसको भूख मिटाने के लिए कई दिन तक नहीं खाना पड़ेगा, है ना। तो थोड़े टाइम में उसका पेट भर जाता है। तो यही चीज माफी पर लागू होती है। अगर कोई वर्षों से हमसे नाराज है तो उसको मनाने के लिए सिर्फ एक पल की जरूरत है। आप फोन उठाइए, उससे बात कीजिए, घर जाके उससे मिलिए, तो आपके बीच की जो भी दूरियां हैं वो दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है।

0: पूर्णिमा जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है जहां हर दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और आगे बढ़ने का दिन जो है हमें हमेशा अवसर देता है। जरूरत केवल इस बात की है कि हम हर अनुभव से कुछ अच्छा ग्रहण करें और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।
1: छोटी छोटी खुशियां, सकारात्मक सोच और अच्छे विचार, यही हमारे जीवन को और सुंदर बना सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए और प्रेरणा तभी सफल होती है जब वह किसी सकारात्मक बदलाव का कारण बने।

0: बिल्कुल सखियों, अगर आप साथ हैं तो सफर खुशनुमा हो जाता है। तो इस सफर को लेके हम फिर से हाजिर होंगे।
1: आज देखो आशा, देखते ही देखते आज का जो कार्यक्रम है वो अपने समापन तक पहुंच गया है। आशा है कि आज की जो बातचीत है, उसकी जो विचार है, आज की प्रस्तुति है, आपको पसंद

0: गई होगी और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक संदेश जरूर छोड़ गई होगी।
1: तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास भी खुशियों और सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखें।
0: हम फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नई ऊर्जा के साथ।
1: जाते जाते आपको हमारी टीम से रूबरू करा दें।
0: HPT पे विक्रम सिंह भाटी, प्रेम किशोर सेन, कंट्रोल रूम में राय सिंह राव और FM पे CL सोनी।
1: और साथ में आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, संयोजन मनीष सोलंकी का और इस पूरे प्रोग्राम को प्यारे प्यारे गीतों के साथ आप तक पहुँचाया हिना ने। तो अब अपनी रेडियो सखी आशा अडवाणी और
0: पूर्णिमा
1: जैन को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार

0: व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है अपना खुद का वेव्स ओटीटी है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खान पान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें आपको पूरा फ्रीडम है जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी पॉलिसी बनाने वाले आप इम्प्लीमेंट करने वाले आप
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है तो ये काम जो कि जन जन को जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे जैसे हवा महल देखने जाते वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस टाटा एडवांस्ड सिस्टम भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों टेक्नीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे पहला भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग दूसरा भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और तीसरा वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा
0: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल दमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
1: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुआफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद ड्रोन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और

0: कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली।

0: कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी एम जी हर्षपत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को सखियों को सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
2: जी,
1: सब लेकर आए हैं।
2: तो
1: आज देखिए खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस।
2: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किन का है?
1: छोटे बच्चों का।
2: बच्चों का खेल दिवस है तो आज बच्चों के लिए भी है ना।
1: तो बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
2: जी बिल्कुल।
1: या माता पिता है किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी बातें वो जरूर बताएं।
2: आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाती है?
1: तो इस बारे में बहुत सारी बातें और होंगी और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए?
2: भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले क्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है,
2: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
1: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।

0: कितने खुश हैं, तो खुश रहने से ज्यादा खुश खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो
0: जी,
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको कि लोगों के उसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है
0: जी।
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप,
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे
1: जी हाँ। जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: आरती गीत तो तुमने बहुत अच्छा सुनवाया, और अब हम पद्मश्री जिन्हें मिला है और कठपुतली कलाकार हैं वो, उनके बारे में बात करेंगे।
1: बिल्कुल। तो वर्ष 1929 को कर्नाटक के कोप्पल जिले के मोरनाला गांव में जन्मी भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्यथारा कर्नाटक की पारंपरिक छाया कठपुतली यानी कि तोगलू गोम्बेता की दुनिया में एक दिग्गज हस्ती रही हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जो इस प्राचीन कला का संरक्षक रहा है।
0: यानी कि हम जिसे कठपुतली के नाम से जानते हैं, कर्नाटक में वहां की भाषा में उसे भी कुछ अलग नाम दिया गया है। और कन्नड़ में चमड़े की गुड़ियों का खेल, इसका अर्थ होता है तोगलू गोम्बेयता, जो आपने भी बताया,
1: जी
0: जो कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है। और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है, कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उस कहानी को अच्छे से समझा

0: किया जा सके।
1: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
0: हाँ
1: उस
0: जी
1: तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की।
0: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं, तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं। और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए।
1: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया, जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलो गोम्बियता के पर्याय के रूप में जाना जाता है।
0: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती। और बहुत दशकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहां के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं।
1: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गांव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
0: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके।
1: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
0: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयां करती है।
1: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बियता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला तोगलू गोम्बियता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले क्याथारा को भारत का 4th सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
0: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
1: जी,
0: और एक गीत सुन ले अभी।
1: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं. और हम सब ने भी बचपन में जरूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और
1: बिल्कुल,
0: खास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि
1: हाँ
0: किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे. और उसमें कुछ कठपुतलियां होती है ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो
1: हाँ
0: डांस है वो देखने में बड़ा मजा आता
1: बिल्कुल, अजीब अजीब सी आवाजें भी निकालते हैं ना.
0: हाँ
1: तो हमारे एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है. गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं. सोसाइटीज और बड़े बड़े बंगला बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं. हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो बोल
0: बिल्कुल.
1: रही हैं.
0: और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है, तो बच्चों को जरूर वहां लेकर जाएं, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है.
1: बिल्कुल
0: और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं. और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है, तो उन्हें भी इस चीज के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है.
1: बिल्कुल
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में. आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है. इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है. ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें.
1: बहुत. और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है. इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है. इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है.
0: बिल्कुल. और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके. और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित
1: बिल्कुल, वो
0: करना
1: जिस
0: बहुत
1: तरीके
0: जरूरी
1: खेल
0: है.
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए.
0: जी
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है. शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है. पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं. आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना. खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है.
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज्यादा हो रहा है, तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीजें बच्चों में आ सके. और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है, इसे हम सब जाने, पहचाने और समझें. ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना जरूरी है. और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं. और यही वो समय होता है आरती, जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है.
1: बिल्कुल. और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना. अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं.

0: पड़ेगी अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
1: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी जरूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
0: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, हाँ। बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: लुका छिपी भी खेलते थे और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा किए, सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उससे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
1: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर आपको आगे बढ़ाएंगे।

बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी

0: है, और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने
0: बिल्कुल
1: कि
0: सही
1: हम
0: बात
1: भी
0: है।
1: अपने
0: और
1: बचपन
0: इस
1: में पहुंच
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं, और
1: बिल्कुल
0: खेल खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल, और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है,
1: सुरक्षित
0: हर
1: नहीं।
0: बार बच्चे के साथ कोई जाएगी जरूरी नहीं हो पाता, तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे, माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ
0: जैसे बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठकर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता जी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है, खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
0: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है, बस
1: बिल्कुल
0: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें, और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
1: बिल्कुल। और
0: हैं।
1: हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं, ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है,
0: बिल्कुल, जब
1: बहुत
0: बच्चों को
1: जरूरी है।
0: धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता है।
1: बिल्कुल। और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता
0: जी
1: है कभी कभी।
0: भाई, बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल
0: तो चलो एक गाना सुने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा
1: और मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश है या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहां बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में समझ नहीं साथ में आ जाते हैं। जी वो इतना खुश है हमसे, कहते हैं ना कि हमारी हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है।
0: हाँ, तो उन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। और जब जीवन का उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करना बन जाता है तब व्यक्ति अपनी वास्तविक भावनाओं से थोड़ा दूर होने लग जाता है।
1: बिल्कुल, और हर कोई ये सोचने लगता है कि लोग उसके बारे में सोचेंगे क्या, बजाय इसके कि उसे वास्तव में क्या अच्छा लगता है, कि उसे सचमुच उसे पसंद क्या है, वो क्या करता है, वो ये करने लगता है कि वो दूसरे क्या पसंद करेंगे, मुझे उस तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो परिणाम क्या होता है उसका, तुलना और तनाव। तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूं या मैं सही हूं। वो सिर्फ दूसरों की नजर से खुद को देखने लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसमें हम नजर आ रहे होते हैं, तो वहां हमें बहुत सारे एक लाइक मिले।
1: बस आप क्या करते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में देखते रहते हैं कितने लाइक्स हो गए,
0: वो लाइक कितने बढ़ गए,
1: वो उसी में लगे रहते हैं।
0: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती। ये चीज हमें समझनी है आरती। और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं। क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं, इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है। बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है।
1: बिल्कुल, और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है। तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े पल

0: बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते ना कि चलो ये त्योहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे ये करेंगे वो करेंगे, तुम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो हर जो जो, जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए।
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं,
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं। जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं। दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है पर रात को हम तकिया भी खोते हैं। कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है जो सच में हंसता था। लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े। ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक और श्रोता जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर. हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना का.
1: जी बिल्कुल. और वैसे भी चंचल अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें. क्योंकि खुश रहने और खुश दिखने में बहुत अंतर होता है. खुश दिखने के लिए मुखौटा लगा सकते हैं, लेकिन खुश रहने के लिए हमें मन का संतुलन बहुत जरूरी होता है और हमारे अंदर संतोष होना चाहिए. मैं जैसे कि हाँ, हमें जो भी चीज है हम खुश हैं इसमें, वो चीज होनी चाहिए.
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सामने वाला व्यक्ति है वो बात बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अपने अंदर की अच्छाई को और खुशी को आप ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं करेंगे.
1: बिल्कुल.
0: और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है. जो अलग अलग सोशल मीडिया की साइट्स हैं वहां पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं. और इस बेहतरीन दिखने की वहां पर होड़ सी मची हुई है. खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है. बहुत सही बात लिखी है.
1: बहुत सही बात. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है. असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं. क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे. कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता. रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है.
1: बिल्कुल. एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है. जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख

0: जाता है तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है। बहुत सही बात कही उन्होंने।
1: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है। जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है। ये
0: बिल्कुल,
1: भी
0: और
1: सही बात है।
0: बिल्कुल एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं। खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है। लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है, ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी। असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है। सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है। बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने।
1: और भी संदेश हैं।
0: तो एक और जो मैच होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अभी तो उसके पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं। कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढ

0: नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। और इसी साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुश ही रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूं, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूं, तो आप सभी की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं, उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है। तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
0: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है, तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और जब बात सुनने की आ रही है, तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है।
1: बहुत जरूरी
0: और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
1: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही, तो बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक
0: और
1: चीज होती
0: महिलाएं
1: है।
0: हेयर पिन घुमाती हैं
1: हाँ, हेयर पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं, तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना, बहुत समय तक ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहां पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना,
0: जी।
1: जो हमारे कानों की होती है वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
0: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें, हेयर पिन, इनका तो कभी ना
1: आप
0: करें।
1: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करिए, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीजें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है, तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीजें आप ना प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है, कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही।
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से, मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना
1: और
0: है।
1: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को, कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना, कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चारो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, अच्छे से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं।

तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुशी पाठक।
2: सखी सहेली।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीतमाला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के दोस्तों। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: जलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की? लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग। यहाँ भी, यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैसल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिविजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात तो मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो टारगेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: महीने से ज्यादा ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर करता नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो गोल मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर के आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सरौन जिला विदिशा मध्य प्रदेश एमपी से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी, हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते है ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, देखें बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी।
0: कैसा लग रहा है अब आपको, जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी।
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गावा फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा है, रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी ये चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से यही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे। हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी साधन का, लेकिन मैंने फिर ढाई महीने छोड़ दिया, यानी दो महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में दसवीं पास करना लोहे के चने जमाने जैसा था।
0: हाँ, हाँ।
1: पहले से दसवीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे
1: मैंने कसम खाया था कि मैं दसवीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था दसवीं पास करके, क्योंकि उस ट्रेन में तो दसवीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, जो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो

जो सपनों में आया।

0: का एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: और क्या शौक है आपके, ये बताइए।
3: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और आप दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं, आपका झमकार सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो। उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
2: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
3: भेजिए मैंने।
2: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
3: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
2: क्यों
3: लड़ती थी ना मैं।
2: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपनी बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
3: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरी बहन बना के देती थी मेरे को।
2: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
3: फिल्म का नाम तो है खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
2: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम लगते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सुहाना सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो आपका मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल ये का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी, मैम हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोलो। मैम
0: विमल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करते हो, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ,
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए ऐसे चलता है।
0: अच्छा, समय रहते घर पहुंच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा ऐसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान, और दूसरा है।
0: हाँ, और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाए मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम।
0: नमस्ते। अरे आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी,
1: बिल्कुल देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम।
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा मैं आपसे दो या तीन लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है कैसा खेल है इसके बारे में बताइए तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है और कबड्डी न केवल उत्साह का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछे तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती
0: हाँ।
1: हैं और खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल सिमट करके रह गए हम बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है व्यक्तित्व होती है वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
0: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
1: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
0: क्या बात है, चलिए सुनते ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनीतपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो सामने नजर आ गया ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करते हैं इसके अलावा, कोई और शौक है
1: जी,
0: आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बज चुके हैं। अब हम सुनेंगे युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।

0: दोस्तों, आज की ये शाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जहां अगले एक घंटे तक हम आपके साथ होंगे कुछ खुशनुमा पल, कुछ दिलचस्प बातें और कुछ बेहतरीन कहानियां और गाने लेकर। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जहां हम आ चुके हैं आपके दो रेडियो बड़ीज, यानी कि मैं स्वस्ति और आज मेरे साथ है
1: जी बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज की शाम बड़ी मज़ेदार होने वाली है। गुरुवार की शाम है जहां बहुत सारी मस्ती, बहुत सारे गाने और बहुत सारी बातें, और आज कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि आज हमारे साथ कुछ ही देर में अब जुड़ने वाले हैं। क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ खास चीज़ें हैं, बताएंगे आपको इस पूरे प्रोग्राम में। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम को इस मज़ेदार से गाने के साथ।

हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: फिल्म का नाम है कॉकटेल टू और गाने का नाम है मामाशू का। आपने एंजॉय किया आज के शाम प्रोग्राम युवाने को, इस वक्त एंजॉय कर रहे हो, सुन रहे हो और कहाँ, ओनली ऑन 102.1 FM पर। आज आपके साथ है राहुल। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे गाने हैं और आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है बता देते हैं आपको। आज हमारे साथ कुछ ही देर में दो मज़दार से गेस्ट जुड़ने वाले हैं, कुछ मज़दार से उनके साथ बातें होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है स्वस्ति,
1: साथ ही साथ थोड़ी सी क्रिकेट अपडेट्स जो कल से चालू होने वाले हैं, और साथ ही साथ आज की स्पेशल यानी थर्सडे स्पेशल कहानी, क्योंकि जिंदगी की ना छोटी छोटी कहानी अक्सर ना हमें बड़ी सीख दे जाती है। अगर आप भी अपने सपनों की राह में मेहनत कर रहे हैं तो ये

0: है और क्या है स्वस्ति?
1: साथ ही साथ थोड़ी सी क्रिकेट अपडेट्स जो कल से चालू होने वाले हैं, और साथ ही साथ आज की स्पेशल यानी थर्सडे स्पेशल कहानी, क्योंकि जिंदगी की ना छोटी छोटी कहानी अक्सर ना हमें बड़ी सीख दे जाती है। अगर आप भी अपने सपनों की राह में मेहनत कर रहे हैं तो ये गाने के बाद आने वाली कहानी आपके लिए।
0: जी हाँ बिल्कुल, कहानी को एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले मजेदार सा गाना आपकी नजर आ रहा है उसे बिल्कुल

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, कहते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटाने के लिए काफी होती है। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसा पल आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। हम कोशिश करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन मंजिल जैसे हमसे दूरी होती चली जा रही है। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा दौर आया है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए, क्योंकि आज की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सफलता अक्सर ना एक कोशिश के पीछे छिपी होती है जिसे हम करने से पहले हार मान लेते हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, आखिरी चाबी। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह अपने माता पिता को बेहतर जीवन देना चाहता था, लेकिन उसके सपने और हकीकत के बीच बहुत बड़ा फासला था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। कई बार ऐसा होता था कि महीने के अंत तक घर का खर्च चलना ही बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। लेकिन विवेक ने ठान लिया था कि वह पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलेगा। दिन में वह खेतों में पिता का हाथ बटाता तो रात को देर तक पढ़ाई करता। कई बार नींद उसकी आंखों पर हावी हो जाती, लेकिन वह अपने सपनों को याद करके फिर किताब खोल लेता। कुछ वर्षों की मेहनत के बाद उसने कठिन परीक्षा दी, परिणाम आया और वह असफल हो गया। उसे दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर तैयारी करूंगा। उसने फिर मेहनत की, फिर एग्जाम दिया, फिर परिणाम आया और वो दूसरी बार भी असफल हो गया, तीसरी बार भी। अब उसके दोस्त नौकरी करने लगे थे, रिश्तेदार ताने देने लगे थे, कब तक कोशिश करेगा, सबके बस की बात नहीं होती बड़े सपने पूरे करना, समय बर्बाद मत कर, तुमसे नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे विवेक का आत्मविश्वास टूटने लगा। एक शाम वह बहुत निराश होकर गाँव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास जा बैठा। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में हार। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने पूछा, बेटा इतने परेशान क्यों हो? विवेक ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, मेरे साथ आओ। वह उसे मंदिर के पीछे एक पुरानी कमरे में ले गया। कमरे के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था और पास में कई चाबियां रखी थी। बुजुर्ग ने बोला, इन चाबियों में से सही चाबी ढूंढकर यह ताला खोल। विवेक ने एक एक करके चाबियां लगानी शुरू की। पहली चाबी नहीं चली, दूसरी भी नहीं और तीसरी भी चाबी नहीं लगी। धीरे धीरे लगभग उसने सभी चाबियां आजमा ली, बस केवल एक आखिरी चाबी बची थी। वह थक चुका था। उसने कहा, जब इतनी सारी चाबियां नहीं चली तो यह आखिरी चाबी क्या कर लेगी? बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, फिर भी एक बार कोशिश कर तो लो। मन मारकर विवेक ने चाबी उठाई। जैसे ही उसने उस ताले को घुमाया, एकदम से ताला खुल गया। विवेक आश्चर्य से बुजुर्ग को देखने लगा। बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी भी इसी ताले की तरह होती है, बहुत सी कोशिश असफल होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सफलता मौजूद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सही चाबी अभी तक नहीं मिली है। अक्सर लोग मंजिल से इसीलिए नहीं चूकते क्योंकि उनमें क्षमता नहीं होती। वह इसीलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे आखिरी चाबी लगाने से पहले ही हार मान लेते हैं। विवेक की आंखें नम हो गई, उसे अपनी गलती समझ आ गई। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर कोशिश करेगा। वह वापस लौटा, उसने पहले से ज्यादा मेहनत की, अपनी कमियों पर काम किया, हर असफलता से सीख ली और फिर एक दिन वह परीक्षा जो उसे बार बार हरा रही थी, उसी परीक्षा में वह सफल हो गया। जब सफलता उसके कदम चूम रही थी, तब उसे उस मंदिर वाले बुजुर्ग की बात याद आई, हार मत मानो, हो सकता है सफलता तुम्हारी अगली कोशिश में तुम्हारा इंतजार कर रही हो। तो दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में एक ऐसा ताला होता है जो आसानी से नहीं खुलता, कभी सपनों का

डाला कभी करियर का ताला, कभी रिश्तों का तो कभी आत्मविश्वास का। लेकिन याद रखिए, हर बंद दरवाजे की चाबी होती है, और हो सकता है कि आपकी अगली कोशिश वह चाबी हो। इसीलिए रुकिए मत, थकिए मत, और खुद पर विश्वास रखिए, कभी मत छोड़िए। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो आखिरी कोशिश तक डटे रहते हैं। इसी खूबसूरत संदेश के साथ मैं आरजे स्वस्ति आपसे लेती हूँ विदा। मुस्कुराते रहिए, सपने देखते रहिए, और उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखिए, क्योंकि आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।

दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं योगासना चैंपियन ऋतिक बिश्नोई और परिणीति बिश्नोई की आरजे राहुल से बातचीत।

0: प्रोग्राम विवरणी में आज की शाम आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हर बार की तरह हर रोज हम नई शख्सियत से मिलते हैं, जुड़ते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। और आज फिर हमारे साथ युवा जो कि जुड़ चुके हैं, योग चैंपियन आज हमारे साथ है ऋतिक बिश्नोई और परिणीति बिश्नोई। ऋतिक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये फर्स्ट वर्ल्ड योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और परिणीति के बारे में बात करूं तो इन्हें विश्व की सबसे छोटी प्रशिक्षिका भी कहते हैं और राज्यपाल द्वारा भी सम्मानित है। और ऐसे कई उपलब्धियां इन्होंने अपने नाम कर रखी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऋतिक और परिणीति कार्यक्रम विवाणी में। ऋतिक आपसे शुरुआत करेंगे, मैं जानना चाहूँगा आप जो हैं अपने बारे में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: सर मेरा नाम ऋतिक बिश्नोई है और मैं एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। उसमें मुझे ट्रेडिशनल योगासन में गोल्ड मेडल मिला और ट्रेडिशनल ग्रुप के अंदर, और फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में मुझे आर्टिस्टिक सिंगल और आर्टिस्टिक ग्रुप में दो गोल्ड मेडल मिले। और मैंने योगा 2018 में स्टार्ट किया था। जाजीवाल दौरा पर हमारे विश्वानंद जी गुरु जी है, तो मतलब मैं और मेरे नाना जी और पापा साथ में गए थे उधर। फिर मुझे 3-4 आसन मतलब आते थे तो गुरुजी को बताए। गुरुजी ने कहा कि जो समाज का पौधा है उसे और भी बड़ा किया जाए, तो हमें एक अकेडमी बताई, वहाँ पे जाके हमने योगा स्टार्ट किया। और आज गुरुजी की मेहरबानी और आशीर्वाद है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ।
0: क्या बात है ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऋतिक के साथ साथ हमारे साथ परिणीति बिश्नोई भी मौजूद हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, साथ ही साथ योग सिखाती भी हैं। शुरुआत करेंगे आपसे, मैं जानना चाहूँगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा नाम परिणीति बिश्नोई, योगा एक्सपर्ट है और मैं इंडियाज गो टैलेंट गोल्डन बजर विनर हूँ। और मैं निःशुल्क योग सिखाती हूँ लोगों को योग शिविर के माध्यम से। और कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम योग निशुल्क योग के शिविर क्यों लगाती हो, पैसे लेने चाहिए। तो मेरा उनसे ये कहना है कि मैं योग शिविर इसलिए नहीं लगाती कि मैं पैसे कमा सकूं, मैं योग शिविर इसलिए लगाती हूं ताकि पूरी ये जो पूरी दुनिया है वो योग करे और स्वस्थ रहे, क्योंकि जब लोग करेंगे योग तभी रहेंगे निरोग।
0: क्या बात है, क्या बात है, मतलब योगा सिखाने के साथ इन्फ्लुएंसर के साथ साथ आप मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी मुझे लग रही है। आपकी बातों में कमाल का जादू है, बेहतरीन सी बातें चल रही है। ऋतिक मैं जानना चाहूँगा इतनी कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्या एक्सपीरियंस है वो? वर्ल्ड लेवल पर जो आपने चैंपियनशिप अभी जीती है, गोल्ड मेडल जीता है, वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था?
1: सर जो वर्ल्ड है वो मतलब विश्व में पहली बार आयोजित हुई थी योगा की, और इसमें हमारे मतलब एक महीने का कैंप रहा था, 9 तारीख से 22 तारीख तक अभी मतलब हुआ है। और सुबह 6 बजे उठना, 6 बजे से मतलब 6:30 तक रनिंग वगैरह, और 6:30 के बाद में प्रैक्टिस करना, 8:30 तक हम मतलब प्रैक्टिस से रिलैक्स होके मतलब ब्रेकफास्ट करना, 9 बजे

0: बजे तक मतलब फ्रेश होके और बाद में 11 बजे हमारा सेशन होता था, 11 से 12 एक हो जाता था, 1 बजे हमारा लंच होता था, लंच 1 से 2, फिर दोपहर को रेस्ट होती थी या फिर कभी सेशन वगैरह या फिर कोई मतलब सर वगैरह आए तो वो मतलब कोई जानकारी देते थे, फिर 5 से हमारी मतलब 8-8:30 तक प्रैक्टिस चलती थी, फिर डिनर वगैरह और फिर रात को रेस्ट।
1: ओके, आपने इतनी जगह पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे टूर्नामेंट में आप गए हो, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ का था आपका?
0: सर वर्ल्ड और एशियन का।
1: वर्ल्ड और एशियन का क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, क्या नया देखने को मिला आपको?
0: सर वहाँ पे मतलब सभी स्टेट से प्लेयर आए हुए थे तो वो अलग स्ट्रेचिंग करते थे, हमारी अलग थी, हमें भी लगता था कि हम भी उनके तरह ये वाली स्ट्रेचिंग वगैरह या फिर आसन करें तो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा।
1: क्या बात है परिणीति, बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अभी तक कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का?
2: अभी तक मैं नेशनल लेवल तक खेली हुई हूँ और नेशनल लेवल तक मैंने खेला, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा, क्या एक्सपीरियंस था वहाँ का, क्या कुछ नई चीजें देखने को मिली आपको?
2: हाँ, वहाँ से मतलब मोटिवेशन बहुत मिलता था, जैसे हम जाते थे तो वहाँ पर मतलब ऐसे कुछ लोग थे जो बहुत अच्छा योगा करते थे तो हम उन्हें देखते थे तो हमें ऐसे लगता था कि मैं भी उनके जैसे योगा करूँ और या फिर उनसे भी आगे निकल जाऊँ, और उनका योगा देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था कि इनके ऐसे योगा है, अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं।
1: जब दूसरे स्टेट से लोग आते हैं, उनको आप खेलता हुआ देखते हो, क्या कुछ नया सीखने को मिलता है उनसे?
2: हाँ, हर एक इंसान के अंदर एक अलग अलग क्वालिटी होती है, जब उनकी योगा देखते थे, उनकी हर एक चीज नोटिस करते थे तो अच्छा लगता था कि हम भी इनके जैसे बने या फिर इनसे आगे निकले।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, इतना सारा इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आते हो, मतलब कैसे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे एक क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ना है, आगे जाना है?
0: सर हमें मोटिवेशन तो हमारे घर वाले मतलब मम्मी पापा और जो हमारे गुरु जी है मतलब सर यशदीप सिंह कछुआ गजराज जी सर, ये हमें मोटिवेशन देते हैं, और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है रेणु जी व्यास मैम, वो भी हमें मतलब मोटिवेशन देते हैं, आगे बढ़ो, ये करो, कोई मतलब दिक्कत आए तो हमें बोलो, कोई हेल्प चाहिए तो हमें बोलो, ऐसा होता है।
1: आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है परिणीति, मैं जानना चाहूंगा?
2: मुझे मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं और उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जब मैं निशुल्क योग के शिविर लगाती हूँ तो बहुत सारे लोगों की मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है, उनकी दुआओं से मुझे मोटिवेशन मिलता है।
1: क्या बात है, जब आपकी उम्र के बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, कोई दूसरे गेम्स भी खेलते हैं, ठीक है, आपका भी मन करता होगा मुझे उस खेल में भी जाना है, लेकिन आपको उस दौरान योगा की प्रैक्टिस के लिए भी जाना पड़ता है, तो वो क्या फीलिंग्स होती है, इतनी मुश्किलात होती है कि यार मैं वो गेम भी खेल सकती हूँ लेकिन मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है, तो वो कंसिस्टेंसी कहाँ से लाते हो आप?
2: नहीं, ऐसा होता ही नहीं है मेरे साथ, और मैं योग करती हूँ तो मेरा मन नहीं करता है कि अभी मैं रिलैक्स कर लूँ, मतलब बॉडी को एकदम रिलैक्स करके अब योगा बंद कर लूँ, मेरा मन नहीं करता है योगा बंद करने का, अब जब तक मुझे कहोगे योगा करती जा तो मैं करती जाऊंगी, मुझे पापा कहते अरे बस अब रुक जा
1: मतलब एनर्जी भरपूर है। ओके ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके साथ भी ऐसा होता है, दोस्त जब कोई दूसरा गेम खेलने जाते हैं आपका भी मन होता है मुझे वो गेम भी खेलना है लेकिन आपको इस प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है?
0: जब योगा स्टार्ट किया था तब मतलब 1-2 साल लगा था कि दूसरे भी गेम खेलूं, फिर पापा ने कहा कि 2-3 गेम साथ में रखेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, इससे अच्छा कि ये गेम रख और एक के अंदर ज्यादा सफलता प्राप्त कर।
1: क्या बात,
0: तो उसके बाद में जब भी प्रैक्टिस करता था तो मतलब योगा का ही रहता था कि वहां पे जाके ये वाला मेडल लेना है।
1: सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक की आपकी कौन सी?
0: सर एशियन और वर्ल्ड,
1: एशियन और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल आपने जीता है
0: जी।
1: परिणीति, आपसे जानना चाहूंगा आपका अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे बड़ी उपलब्धि?
2: मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मुझे राज्यपाल जी ने सम्मानित किया था अभी 26 जनवरी को, और वहाँ पर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि मैं राजस्थान के लिए कर रही हूँ, जो हमारे जोधपुर शहर के लिए ये ले रही हूँ।
1: ओके, पहली बार आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया और वो कैसा एक्सपीरियंस था?
2: पहली बार मैंने योगा के जो कंपटीशन होते हैं वो जोधपुर से ही शुरू होते हैं, तो सबसे पहले मैंने जोधपुर में कंपटीशन खेला था और वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, और वहाँ पर थोड़ी पहले नर्वस भी थी मैं, और फिर पापा ने कहा कि अब तो कर लेगी, तो पापा के कहने से मैंने वहाँ पर अच्छा खेला।
1: ठीक, आपका जानना चाहूंगा आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था और कहाँ था?
0: सर मेरा पहला मतलब डिस्ट्रिक्ट हुआ था यहाँ पे जोधपुर में पाउटा, तो वो मतलब याद नहीं है 2018 या 2019 में,
1: हाँ, उस टाइम की बात
0: है। तो उसमें मतलब आसन मेरे ठीक थे, मतलब दो जनों के एकदम सेम आए थे आसन, और मतलब अंक है जो भी मतलब सेम आए थे, तो ये हुआ था कि मतलब मेरे को मतलब थोड़ा सिल्वर हो गया और उसको गोल्ड, तो उस टाइम मैं रोने लग गया, तो पापा वगैरह ने बोला कि रो क्यों रहा है, अभी तो पहला मेडल है, अभी तो आगे भी बढ़ने दे।
1: क्या बात है, रो क्यों रहा है, अभी तो पहला मेडल है, अभी तो जिंदगी पूरी बाकी है और अभी कई सारे मेडल जो है वो आपको लेकर आने हैं। ठीक है ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना अपने आप में एक अलग फीलिंग होती है, हर किसी का सपना होता है मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँ।

0: क्या फीलिंग थी वो आपके साथ?
1: सर जब इंडिया का ब्लेजर मिला था तो अलग ही खुशी थी. इंडिया के किट, रहन सहन, कैंप लगना, वो मतलब अलग ही फीलिंग देता था. जो भी टूर्नामेंट होते थे हम यहाँ से जाते थे खेल के, मेडल मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस हो जाओ. ये नहीं था, मतलब एशियन के अंदर मतलब हर एक चीज का हमें ध्यान रखना था. फिजियो अलग, मसाजर अलग, और कोई दिक्कत हो तो सर को बोलो. यही है कि इंजरी नहीं हो और आगे बढ़े, जो मतलब प्रैक्टिस टाइम पे पहुंचना ही ज्यादा जरूरी.
0: और यार आपकी जो वीडियो फोटो सब लोगों ने देखी है, जब आप इंडिया का फ्लैग अपने ऊपर लगाकर उस स्टेज पर जब पहुंचते हो, वो कैसा था?
1: जी सर, पापा वाले बोलते थे कि तेरे को मतलब योगा अभी जब स्टार्ट किया था तब तो पापा ने बोला कि तेरे को मतलब वहां पे जाना है जहाँ पे मतलब फ्लैग तेरे कंधों के ऊपर हो और तू मेडल ले.
0: क्या बात है, पापा ने बोला होता, पापा का सपना आपने साकार कर दिया है, बहुत ही बढ़िया. परिणीति, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब तक की आपकी सबसे अच्छी मेमोरी क्या मानते हो, क्या जानते हो, क्या सीखते हो, क्या देखते हो, अब तक क्या कुछ सीखा आपने, क्या कुछ देखा?
2: अब तक की मेरी सबसे अच्छी मेमोरी रही है इंडिया इज गो टैलेंट के अंदर. और वहाँ पर गए, एक नया एक्सपीरियंस था. कभी हम बाहर गांव से बाहर निकले ही नहीं थे, पहली बार मुंबई गए थे. वहाँ पर अलग अलग लोग मिले और बहुत अच्छा लगा उन सब से मिलकर. और वहाँ पर जब हमें गोल्डन बजर मिला तो सच बात है, ये मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं सच में गोल्डन बजर जीत गई हूँ. मेरी दादी को तो पता ही नहीं चला. और जब मैंने मेरी दादी को कहा कि हम जीत गए, तब मेरी दादी ने सेलिब्रेट किया.
0: वहाँ सिलेक्शन कैसे हुआ आपका, वो क्या प्रोसेस था, कैसे बुलाया गया आपको, किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ?
2: वहाँ पर इतना तो मुझे पता नहीं है, मेरे पापा को फोन किया था. और फिर बाद में हम ऑडिशन देने शायद दिल्ली गए थे. और वहाँ पर दिल्ली में हमने ऑडिशन दिया. और फिर ऑडिशन देने के बाद कुछ देर बाद मतलब सबके ऑडिशन हो गए. लास्ट में हमें बताया कि इतने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं. तो फिर हमारी कुछ वीडियोस बनाई और वो आगे भेजी. तो फिर वीडियोस में आगे जो जज थे आगे, और उन्होंने हमें सेलेक्ट किया. और फिर आगे हम इंडियाज गो टैलेंट के अंदर गए.
0: क्या बात, अच्छा लगा, मजा आया वहाँ पे?
2: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत अच्छा लगा. कौन कौन लोग मिले हैं आपको, क्या क्या नया चेहरा आपको देखने को मिले?
2: वहाँ पर सबके एक अलग अलग कोरियोग्राफर थे. तो जब हम दो बार हमने गोल्डन बजर जीता और फिर हम दोबारा गए, तो सबसे पहली बार तो हम जब गए थे तो हमें हमारे जो आंसू सर थे कोरियोग्राफर, वो मिले थे. और पहले हमने उनके साथ बहुत मजे किए. और जब दूसरी बार गए तो हम थोड़े लेट गए थे, हमें कोई काम था तो हम लेट गए थे. तो वहाँ पर वो सर गुस्सा हो गए, हमें कह रहे हैं कि अब इतने लेट कैसे है, अब कैसे कोरियोग्राफ होगा. और फिर पहले पहले गुस्सा करते थे, फिर कोरियोग्राफ होने के बाद अब वो एकदम, फिर वो उन्होंने कहा वाह कोई बात नहीं सॉरी. तो मैंने कहा कि गुरु का तो काम होता है कि अपने स्टूडेंट को आगे बढ़ाने का.
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे. ऋतिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, टूर्नामेंट होता है जब कोई भी योगासना का, आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, आपका रूटीन क्या रहता है, डेली रूटीन क्या रहता है, सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ चीजें आप करते हो?
1: जब 10 दिन पहले मतलब ये सोचता हूँ कि अभी मतलब कितने इवेंट है मेरे पास, मान लो मेरे पास 5 है और 10 दिन रहे हुए, तो 2 दिन मतलब मुझे एक इवेंट कंप्लीट करना है. और अगर एक्स्ट्रा दिन हो जाए तो मतलब एक ही दिन के अंदर प्रैक्टिस करनी है 3-3 टाइम. जो कोरियोग्राफ होता है, आर्टिस्टिक होता है, वो दोपहर को और सुबह और शाम को मैं आसन करता हूँ.
0: तो मजा आता है पूरे दिन में या फिर लास्ट में ऐसा होता है कि यार थकान हो गई, अब थोड़ा रेस्ट करने का चाहिए?
1: सर उस टाइम थकान नहीं लगती, मैं सोचता हूँ और भी प्रैक्टिस हो जाए तो सही है कि उधर जाके आसानी से मेडल आ जाए.
0: मतलब सुबह जो उठकर जो एनर्जी होती है, शाम तक वही एनर्जी लेकर आप चलते हो?
1: जी.
0: क्या बात है, मतलब ये पैशन है, मोटिवेशन आपके अंदर पूरे दिन भर लगा रहता है. परिणीति, बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसा कोई मोमेंट प्रैक्टिस के दौरान जब भी आपने योगासना शुरू किया, उस दौरान ऐसा कभी आपको लगा कि यार बहुत हो गया, मुझसे अब आगे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलता है?
2: जब मैंने स्टार्टिंग में योगा शुरू किया था तो मुझे पापा मतलब 5-5 घंटे योगा की प्रैक्टिस करवाते थे. और फिर मैं लास्ट में बहुत ज़्यादा थक जाती थी. और लास्ट में जैसे कुछ होते हैं ना, जो कुछ 3 जैसे मेरे आसन मैंने ले लिए कि वो अब लास्ट में करूँगी, तो फिर लास्ट में मैं एकदम थक जाती थी. मैंने कहा पापा आज बस, अब इतना बहुत है, अब बाकी का कल करेंगे. तो मेरे पापा कहते थे अगर तू आज प्रैक्टिस करेगी तो कल खुश रहेगी, मतलब आज की प्रैक्टिस कल काम आएगी. अभी वो तुझे दर्द लग रही है और ये प्रैक्टिस दवाई की तरह है. जैसे दवाई हम लेते हैं तो वो पहले हमें कड़वी लगती है, फिर बाद में उससे हम ठीक हो जाते हैं. तो वैसे ही हम योग करते हैं तो थक जाते हैं, थोड़ा टायर्ड हो जाते हैं, पर आगे जाके वो हमें खुशी देगी.
0: क्या बात है. इस बीच मैं जानना चाहूंगा आपसे, आप पढ़ाई भी करते हैं साथ साथ, तो पढ़ाई और योगा इन दोनों का बैलेंस किस तरह से बनाते हैं, साथ में किस तरह से देखते हैं इन चीजों को?
2: बात तो ये है कि जैसे हम योगा करते हैं तो योगा करने से माइंड

0: डेवलप होता है और ये क्वेश्चन मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे सब पूछते हैं, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि हम योगा जैसे करते हैं तो उससे माइंड डेवलप होता है, और माइंड डेवलप होता है तो हमें पढ़ाई में भी आसानी हो जाती है।
1: तो योगा आपकी पढ़ाई में भी आपका पूरी तरह से सपोर्ट करता है, हेल्प करता है और आपको और ज्यादा मजा आता है। ऋतिक, यही सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, एजुकेशन लाइफ क्या किस तरह से चल रही है और योगासना का इस पर कोई प्रभाव?
2: सर जो पढ़ाई है वो मतलब दोपहर में चलती है और सुबह और शाम मतलब 3-3 घंटे देने होते हैं। हमारे पास 24 घंटे बात होते हैं जो भी अपना मतलब रेगुलर जो भी हम करना चाहिए।
1: तो योगासन से आपकी पढ़ाई पर भी कोई प्रभाव पड़ता है, अच्छा लगता है या फिर ये आपको टाइम कम पड़ रहा है पढ़ाई के लिए, ऐसा कुछ फील होता है?
2: नहीं मतलब टाइम तो हमें मैनेज करना होता है, टाइम तो किसके पास ऐसे होता है।
1: टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम किसी के पास भी पूरा नहीं, आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। बातचीत में आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा फैमिली और टीचर का सपोर्ट किस तरह से देखते हैं आप?
2: सर जब टूर्नामेंट नजदीक आते हैं तो मतलब प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी पड़ती है और कभी कभी एग्जाम भी आ जाते हैं, तो मैम मतलब एग्जाम वगैरह बाद में ले लेते हैं और मैम भी मतलब ज्यादा सपोर्ट करते हैं। पापा और मम्मी बोलते हैं कि प्रैक्टिस या फिर मैम से बात कर ले जैसा भी करना हो।
1: क्या बात है, आपसे जानना चाहूंगा आपके कोच से मिली अब तक की आपकी सबसे बड़ी सीख क्या लगती है आपको?
2: सर कहते हैं कि आसन जितना मतलब हम टूर्नामेंट खेल के आए हैं तो हमारे मतलब जो मार्क्स है वो काफी घटे हैं, तो वो मतलब वीडियो देख के उसे और भी सुधार करते हैं और अगली बार वो मतलब जो मार्क्स है वो ना कटे इसलिए उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं।
1: परिणीति, आपसे जानना चाहूंगा आपके जो कोच हैं, फैमिली सपोर्ट है, वो किस तरह से बना हुआ है, क्या कुछ सीखने को मिलता है उनसे आपको?
0: उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जैसे वो मुझे बहुत मोटिवेट भी करते हैं, जब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो वो कहते हैं डीमोटिवेट नहीं होना है, मेहनत करते रहना है क्योंकि मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे।
1: क्या बात है, आज के युवाओं के लिए योग कितना जरूरी है इस बारे में आपका क्या कहना है, क्या बताना चाहेंगे आप?
0: आजकल तो आपको पता ही है कि कितनी सारी बीमारी आ गई है, नई नई डेंगू मलेरिया ऐसी बहुत सारी बीमारी आ गई है, तो अगर इनसे हमें मुक्त होना है, इन बीमारियों से अगर हमें मुक्त होना है तो हमें योग करना पड़ेगा।
1: योग जरूरी है बीमारियों के लिए भी और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी युवा, स्पेशली जो लोग टूर्नामेंट की तैयारी करना चाहते हैं, इस फील्ड में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास बात?
2: पहले तो सर जो योगा का नाम सुनते ही सब सोचते हैं कि जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं वो योगा करते हैं, और अभी 2036 में ओलंपिक भी होने वाला है, तो युवाओं को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं आप योगा स्टार्ट कीजिए और अच्छी प्रैक्टिस करते हुए आगे 2036 के अंदर ओलंपिक खेले।
1: जी बिल्कुल, और अभी जो फिलहाल जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया, गोल्ड मेडल जीता है, उस चैंपियनशिप के बारे में फिर से बता दीजिए जो वर्ल्ड लेवल पर चैंपियनशिप हुआ था योगासना का।
2: सर ये हमारी अहमदाबाद में हुई थी 4 से 8 जून तक, और हमारा जो कैंप है वो मतलब 10 तारीख से स्टार्ट हो गया था, 10 से 31-2 तारीख तक। बाद में हम मतलब इंडियन टीम रुकी हुई थी और बाद में मतलब सुबह 6 बजे उठना और जहाँ पे हमारा मतलब टूर्नामेंट है काकरिया हो रहा था, तो वहाँ पे जाके मतलब अलग अलग प्लेयर को देखना, उनसे अलग सीख लेनी, और जो हमारे स्टेट मतलब अलग अलग स्टेट से उनसे भी अलग अलग सीख लेनी।
1: कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर?
2: 78 कंट्री ने।
1: और भारत में कितने गोल्ड मेडलिस्ट, कितने गोल्ड और कितने सिल्वर, क्या कुछ भारत का इसमें रहा?
2: हाँ, भारत को 102 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए और सेकंड नंबर पर जापान की थी।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूब। परिणीति और ऋतिक हमारे साथ बने हुए थे। परिणीति के बारे में और मैं बात करूं तो राज्यपाल द्वारा सम्मानित हैं, मारवाड़ गौरव सम्मान भी इन्हें मिल चुका है, सचिन तेंदुलकर, आनंद महिंद्रा, मिल्खा सिंह जैसी बड़ी हस्तियों से भी इन्हें प्रशंसा पत्र और प्रशंसित किया गया है। रैपिड फायर शुरू करते हैं, ऋतिक और परिणीति हमारे साथ जुड़ी हुई है, चाय या फिर कॉफी?
2: सर दोनों ही नहीं।
1: दोनों ही नहीं, आपको?
0: दूध।
1: दूध, अरे वाह। सुबह जल्दी उठना या देर तक सोना?
2: जल्दी उठना।
0: जल्दी उठना।
1: अरे वाह। सूर्य नमस्कार या प्राणायाम?
2: प्राणायाम।
0: सूर्य नमस्कार।
1: ओके, मेडल या फिर ट्रॉफी?
2: ट्रॉफी।
1: क्या बात है। योग मैट का पसंदीदा रंग आपका?
2: सर योग मैट तो कोई भी
1: चलेगा, आपका कोई फेवरेट कलर? ब्लू। ओके, पसंदीदा योगासन?
2: सर डिम्बासन,
0: वृक्षासन।
1: ओके, सबसे कठिन योगासन क्या लगता है आपको?
2: सर कठिन तो मतलब प्रैक्टिस पे है, जो हम कम करेंगे बाद में आसन बिगड़ जाएगा।
1: ओके,
0: मुझे बैक बेंडिंग।
1: पसंदीदा खिलाड़ी आपका सबसे?
2: सर मिल्खा सिंह।
1: ओके,
0: नीरज चोपड़ा।
1: अरे वाह। मोबाइल या फिर किताब?
2: किताब।
1: ओके, आपका?
0: किताब।
1: छुट्टियां पहाड़ों में या समुद्र के किनारे, कहाँ बिताना पसंद करोगे?
2: दोनों
1: में। आपको कहाँ जाना चाहिए?
0: पहाड़ों में।
1: एक शब्द में योग को कैसे डिफाइन करोगे आप?
2: योग का अर्थ है जोड़ना।
1: आपको?
0: आत्मा का परमात्मा से एकीकरण होना।
1: अगर योग में चैंपियन न होते तो क्या बनना चाहते?
2: सर कोई भी स्पोर्ट्स में।
1: कोई भी स्पोर्ट्स में, लेकिन जाना स्पोर्ट्स में था आपको?
0: IAS
1: अरे वाह क्या बात है। आपका सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन लगता है आपको?

0: इंस्पिरेशन किसने मिलते हैं आपको?
1: गुरुजी।
2: पापा।
0: पापा से क्या बात है, आपके कोच के लिए कोई एक शब्द?
1: सर हमारे मतलब कोच नहीं बोल सकता, हमारे भैया बोलते हैं, मतलब फ्रेंडली रहते हैं।
0: तो कोच के लिए एक शब्द भैया। भाई साहब आपके लिए?
2: कोच पापा।
0: पापा ही कोच है?
2: हाँ।
0: सबसे बड़ी ताकत आपको आपकी क्या लगती है?
1: मेरे पापा और मम्मी।
0: आपकी?
2: कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है।
0: सबसे बड़ी कमजोरी कुछ भी नहीं है?
2: मेरी कमजोरी ये है कि मैं अपनी कमजोरी नहीं बता पाती।
0: अरे वाह क्या बात। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या लक्ष्य है?
1: सर ओलंपिक।
0: आपका?
2: ओलंपिक।
0: अरे वाह दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की शाम। ऋतिक बिश्नोई और परिणीति बिश्नोई जो कि योगासन में चैंपियन है हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: जी सर, इंटरव्यू लेने के लिए आपको भी थैंक यू।
2: थैंक यू।
0: ओके।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे योगासना चैंपियन ऋतिक बिश्नोई और परिणीति बिश्नोई की आरजे राहुल से बातचीत, जिसकी प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युव वाणी में। हम सभी ना क्रिकेट प्रेमियों के लिए ना एक शानदार खबर है, क्योंकि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांचक मोहल्ला चालू होने वाला है। दुनिया की बेहतरीन महिलाएं क्रिकेट टीम मैदान पर उतरने वाली है। हर मैच के साथ बढ़ेगा उत्साह, जोश और क्रिकेट का जुनून। भारतीय टीम भी पूरे आत्मविश्वास से मैदान पर

0: उतरेगी और सभी नजरें होंगी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर, क्योंकि तैयार हो जाइए चौके छक्के और रोमांच से भरे क्रिकेट महाकुंभ के लिए।
1: जी बिल्कुल सुस्ते, आपने सही बात करी है। इंडियन की जो हमारी विमेंस टीम है वो बिल्कुल तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। और इस बार वर्ल्ड कप में कुछ क्या कुछ खास कुछ अलग होने वाला बता देते हैं आपको कि हर बार जो कि 10 टीमें पार्टिसिपेट करती थी, इस बार जो है पहली बार अब 12 टीमें जो है इस विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगी। पहला एडिशन इनका होगा जिसमें 12 टीमें हिस्सा लेंगी। इससे पहले 10 टीमें खेला करती थी। और नीदरलैंड्स का जो है वो डेब्यू होने वाला है। नीदरलैंड्स पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। इस टीम ने ग्लोबल क्वालिफायर में 4th स्थान हासिल कर इस टूर्नामेंट में जगह बनाई है। अब बात करते हैं कि भाई भारत का जो इंडियन विमेंस का जो T20 प्रदर्शन है वो वर्ल्ड कप में कैसा कुछ क्या रहा है? कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन हाँ टीम जो है वो एक बार फाइनल में पहुंची है और सेमीफाइनल में भी इस भारतीय टीम ने, विमेंस क्रिकेट टीम ने जो है वो 4 बार प्रवेश लिया है। लेकिन फाइनल की दौड़ भी बाकी है, जीतना बाकी है। 9 वर्ल्ड कप अभी तक भारत ने खेले हैं और इसमें एक बार फाइनल और 4 बार सेमीफाइनल में ही पहुंची। लेकिन इस बार का माहौल जबरदस्त होने वाला है, तैयारी बहुत खतरनाक है। और कप्तान की बात करें और उप कप्तान की बात करें, स्मृति मंधना सब अब बढ़िया फॉर्म में, और विल होप कि इस बार का वर्ल्ड कप भैया हम जीत ही जाएंगे और जीतेंगे क्यों नहीं साहब। बड़े फिलहाल के लिए आगे और कुछ मजेदार से गानों का जिक्र करेंगे इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: वेलकम बैक जी आपका इस मज़ेदार से गाने के बाद एक बार फिर से कहा ओनली ऑन 102.1 एफएम पर प्रोग्राम युवाणी को इस वक्त आज की शाम गुरुवार आप एंजॉय कर रहे हैं दो आवाज़ के साथ। आज इस आवाज़ का नाम आपके साथ राहुल और मेरे साथ हैं
1: यानी कि मैं आपकी दोस्त स्वस्ति।
0: देखो भैया, युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है तो युवाओं के प्रोग्राम में सरकारी भर्ती की जानकारी होना तो ऑब्वियस है, मतलब होनी ही चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारे जो युवा है सरकारी नौकरी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खास बातचीत तो ज़रूर होती है। और अभी कुछ देर पहले हमने जो युवा स्पोर्ट्स में योगा में इतना बढ़िया जो काम कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल हमारे जोधपुर से, इतने कम लोगों को शायद ये पता होगा लेकिन जिनको पता चला है हमारे लिए बड़ी ये गर्व की बात है। और फिलहाल जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काम की बात आ चुकी है RAS यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2026 की प्री एग्जाम के लिए जो है वो डेट भी आ गई है। और RAS 2026 की जो पोस्ट है वो भी बता देंगे आपको। पोस्ट है टोटल 607 यानी 607 पोस्ट पर भर्ती जारी कर दी गई है। स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 जून 2026 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रखी गई है वो है 3 जुलाई 2026। और इसमें पोस्ट की मैं बात करूँ तो राजस्थान स्टेट सर्विसेज के लिए 192 यानी 192 पोस्ट हैं और राजस्थान सब ऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए इसमें 415 यानी कि 415 पोस्ट रखी गई हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो बहुत सिंपल सी, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है तो आप RAS 2026 के लिए एलिजिबल होंगे, इस भर्ती में अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर इस भर्ती के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको बता देता हूँ जो कि है rpsc.rajasthan.gov.in। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, rpsc.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि भैया ये भर्ती हमारे काम की है या नहीं। अगर आपको लगता है कि यार इस भर्ती के लिए मैं एलिजिबल हूँ तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस भर्ती के लिए आपका कोई भाई बहन या फिर दोस्त एलिजिबल है, तैयारी कर रहा है काफ़ी लंबे टाइम से RAS परीक्षा की, तो भर्ती आ चुकी है, उसको जल्दी से इस भर्ती के बारे में और इस शानदार से वेबसाइट के बारे में बता दीजिए। फिलहाल के लिए प्रोग्राम युवाणी जा रही है, मजेदार से गाने आपके लिए हाजिर हैं। अगला गाना ट्रैक आपके कानों तक ये रहा साहब।

0: दोस्तों, आज का ये यूवाणी का सफर बस यहीं तक। अब हम दोनों को दीजिए आज के कार्यक्रम से इजाजत, यानी कि मैं स्वस्ति और आज मेरे साथ है
1: जय बिल्कुल इस आवाज का नाम राहुल और आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति रही राजेश शर्मा रोड की कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।

0: अभी आप
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के

0: दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर।
4: जानते हैं सनातन धर्म की

अगर हम वक्त में थोड़ा पीछे चले तो इस शहर की सड़कों का एक अलग ही मिजाज हुआ करता था। गिनती की गाड़ियां, गिने चुने टू व्हीलर्स और एक अलग सा ठहराव। पर अब नजारा पूरी तरह बदल चुका है। आजकल सड़कों पर सिर्फ लगातार बजते हॉर्न, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक और लंबे जाम्स का शोर है। शहर ने रफ्तार तो पकड़ ली है, पर उस रफ्तार ने सड़कों से वो पुरानी खामोशी छीन ली है। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और आप सुन रहे हैं FM Sun City। ये है गुड इवनिंग जोधपुर।

आप जानते हैं सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य? जानिए सनातन धर्म, पुनर्जन्म, आत्मा और जीवन के गूढ़ प्रश्नों के उत्तर डॉक्टर सुशीला चौधरी की पुस्तक गीता का अनुभूत भावार्थ में। आज ही प्राप्त करें, सर्वोदय बुक स्टॉल जोधपुर या ऑनलाइन व्हाइट फाल्कन पब्लिशर से मंगवाएं।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS व चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

बाहर सड़कों पर जो शोर है उसे हम और आप शांत तो नहीं कर सकते, लेकिन उस शोर को अपने दिमाग तक पहुंचने से जरूर रोक सकते हैं। जिंदगी की इस बढ़ती हुई रफ्तार और बाहर के इस क्योस के बीच अपने दिमाग में एक शांत लेन ढूंढना ही असल चुनौती है, और इस फोकस को लॉक करने का सबसे बेहतरीन टूल है क्वालिटी म्यूजिक।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ,
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आज ही जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अगर आप भी इस वक्त किसी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं, हॉर्न की आवाजों से परेशान हो रहे हैं या दिन भर के शोर से अभी अभी फ्री हुए हैं, तो अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ सेट रखिए और वॉल्यूम थोड़ा ऊपर कीजिए। बाहर के शोर को इन बेहतरीन मेलोडीज के पीछे फेड आउट हो जाने दीजिए। आज की शाम का यह संगीतमय सफर जारी रखते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग जोधपुर। आकाशवाणी जोधपुर का ये FM सन सिटी चैनल है। सुनेंगे कार्यक्रम जयमाला विविध भारती मुंबई से।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूँ विधि जैन, हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फौजी भाइयों को विशेष प्रणाम करती हूँ और यह सुंदर सा गीत भारतीय सेना के नाम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना के लिए इस प्यारे से वंदन गीत के साथ में आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम जयमाला की। पहला गीत हम ले रहे हैं मुकेश की आवाज।

हम सुन रहे थे ये गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में अगला गीत, जो कि है साथी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और नौशाद का है संगीत।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला का अगला गीत, जो कि है फिल्म आया सावन झूमके से। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की हैं बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

हम सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में एक और सुंदर सा गीत जो कि है सौदागर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन का ही है संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत वापस फिल्म से मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें

0: रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
1: हम सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी के संगीत के साथ। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम जयमाला। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए दूसरा भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए राजेश हमाल जी एक नेपाल के आज के सुपरस्टार हैं वहाँ के।
0: अच्छा,
2: उनके विषय में भी एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। छत्तीस जी करके एक थे, वो डायरेक्टर ही थे वहाँ के, काफी फेमस डायरेक्टर थे नेपाल के, सतीश कुमार सर
0: जी,
2: अंधेरी में रहते थे। सतीश जी ने मुझे कॉल करके बुलाया। नेपाली फिल्म का नाम था गोपी किशन। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी फिल्म करनी है।
0: जी जी।
2: मैंने सर वो पूरी फिल्म की, राजेश हमाल जी की फर्स्ट फिल्म थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर वो फिल्म जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई थी नेपाल में।
0: ओके।
2: और पहली फिल्म थी राजेश हमाल जी की, आज वहां के सुपरस्टार हैं। तो ऐसा मैंने सर बहुत सी फिल्में की और सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उम्र भी होती जा रही है।

0: सीखने में तो जीवन निकल जाएगा, पूरे जीवन में आदमी कभी पूरा हो नहीं सकता है।
1: जी जी।
0: तो मैं स्वतंत्र रूप से फिर मैंने सबसे पहले तो यूनियन ज्वाइन की, मेंबर बना मैं, के बाद में सर फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन के क्षेत्र में मैंने संघर्ष शुरू किया। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अजय शाह, और उनके एक साथी थे हितेश शाह, अजय शाह हितेश शाह, ये दोनों महावीर सीरियल बना रहे थे।
1: जी जी।
0: भगवान महावीर, और उस दौर के अंदर काफी मतलब सीरियलों का दौर था, तो बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी। तो किसी ने इनको सजेस्ट किया कि यार वो लड़का जो है ना इकबाल अली, उसको लो आप, पता नहीं किसी ने तारीफ कर दी कि मेरी।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये सीरियल बनानी है, मैथोलॉजिकल सीरियल है, भगवान महावीर के ऊपर है, और मुझे पहले इनके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, मुझे इनके बारे में जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कहीं कोई मुझसे गलती ना हो जाए।
1: जी जी।
0: तो सर मैं तुरंत आपको हाँ नहीं बोल सकता हूँ। तो सर देखिए उनकी महानता, उन्होंने मुझे फुल हेल्प की, और मैंने 2 साल तक मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जैन हो गया, और 2 साल तक मैं मतलब बड़े बड़े गुरुओं से मिलता गया। हमारे जो प्रोड्यूसर थे वो जैन थे दोनों, तो वो मुझे ले जाते थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, महावीर पुराण पढ़ी। 2 साल तक मैंने सर बहुत मेहनत की, और ये 2 सालों में मैंने कोई काम नहीं किया, और मैं थोड़ा फाइनेंशियली परेशान तो होता था क्योंकि थोड़ा गरीब आदमी हूं मैं भी, लेकिन एक शौक था मुझे, जुनून था मेरे अंदर कि नहीं मुझे अगर करना है तो करना है, और ईमानदारी से करना है, और आगे एक कामयाब निर्देशक बनना है, ये एक मेरे अंदर वो था।
1: जी।
0: तो सर मैंने भगवान महावीर सीरियल जो है, फिर हमने उमरगांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है जहां पर रामायण वगैरह की शूटिंग हुई थी, तो पटेल साहब का है, अभी तो उनका ध्यान हो गया, बहुत नेक इंसान थे। उमरगांव में हम गए, उमरगांव में हमने सेट वगैरह लगाया। सर पहले क्या था कि आप जानते होंगे कि पायलट एपिसोड बनते थे दूरदर्शन के लिए, कि भाई आप 4 पायलट बनाइए, वो पहले दीजिए, हाँ अप्रूवल होंगे, उसके बाद में फिर आपको वो मिलेगा, टाइम वगैरह जो भी है, स्पॉन्सर वगैरह जो भी है। तो मैंने वो 4 एपिसोड मेहनत करके उस 4 एपिसोड को मैंने कंप्लीट किए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि वो 4 एपिसोड को बनाने के अंदर मुझे कम से कम 3-4 साल लग गए।
1: अरे बाप रे।
0: 3-4 साल इसलिए लगे कि मैं 3 साल तक तो अध्ययन ही करता रहा जैन धर्म के बारे में, भगवान महावीर के बारे में जानने की।
1: जी।
0: और उसके बाद में फिर साल भर तो मुझे मतलब उसको पिचराइशन करने में लग गया, क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा था, और उस टाइम बड़ा टफ मामला था सर, दूरदर्शन के ऊपर बड़ी बड़ी सीरियलें आ रही थी उस टाइप की, और न्यूज़पेपर के अंदर काफी चर्चे, मुझे काम भी तो फिर उस हिसाब से करना था, और मेरा तो मतलब सब कुछ था इसके ऊपर ही दारोमदार था। तो मैंने सर वो बहुत खूबसूरती से मैंने वो 4 एपिसोड बनाए, लेकिन वहां भी नसीब ने साथ नहीं दिया, कुछ प्रोड्यूसर को आपस में कुछ उनका था मामला, कुछ जमा नहीं, उसके बाद में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया।
1: ओहो,
0: बहुत बड़ा धक्का लगा, मैंने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और मैंने मेरा पूरा समय मेरा इसमें गया, खैर होता है जिंदगी के अंदर। फिर संघर्ष में लग गया सर, संघर्ष करता रहा, फिर अब मुझे अब तो जागो फिल्म मेरी वो मैंने कंप्लीट की, मतलब ये सोच लीजिए कि मैंने कम से कम 20-25 फिल्में मेरी शुरू हुई होगी, कुछ मुहूर्त हुआ, कुछ 2-4-5 रील बनी, कुछ 10-15 दिन की शूटिंग हुई, कुछ ये हुई, लेकिन मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, हमेशा प्रोड्यूसर की तरफ से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते थे, और पिछले बंद हो जाती थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम या कुछ भी प्रॉब्लम बोलिए, कहीं प्रोड्यूसर का देहांत हो गया, कहीं कुछ हो गया, बड़े मसले हुए मेरे साथ में।
1: जी जी।
0: हाँ, बहुत संघर्ष मेरी लाइफ में रहा सर। तो उसके बाद में अब तो जागो मैंने एक फिल्म बनाई, मैंने ईश्वर से अल्लाह से ये प्रार्थना किया सबसे पहले कि मालिक अब ऐसा कुछ मत होने देना, इस फिल्म को तो कंप्लीट करवा दे। तो सर वो मेरी फिल्म कंप्लीट हुई, मैंने राजस्थान में शूट किया।
1: जी।
0: उसके अंदर तो सर ऐसा हुआ कि जो दो हमारे जो प्रोड्यूसर थे, एक अनिल चेलानी साहब और एक विजय शर्मा साहब, बहुत नेक इंसान है वो दोनों, जो कलाकार थे, थिएटर के आर्टिस्ट थे, तो उन्होंने बोला कि इकबाल जी हम इसमें एक्टिंग करेंगे। तो हमने ठीक है सर कोई बात नहीं, एक कहानी लिख देते हैं, एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, आप बताइए आपको किस टाइप का आइडिया आपका है। उन्होंने बताया इस टाइप का है, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, वो फिल्म हमने कंप्लीट कर दी सर, और बहुत बेहतरीन हमारी फिल्म बनी वो, लेकिन सब नए आर्टिस्ट थे, पैरा कोई फेमस था नहीं फिल्म के अंदर। आप तो जानते हैं कि पोस्टर के ऊपर जो है वो कम से कम अगर फिल्म का पोस्टर लगता है सिनेमा हॉल के बाहर, तो उसमें कम से कम कुछ चर्चित चेहरे तो होने चाहिए ना।
1: जी जी।
0: तो उस हिसाब से शायद हम उस पिक्चर में भी सही ढंग से सफल नहीं हो पाए, लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा उस फिल्म के बारे में, देखिए हीरोज कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, बड़ी बड़ी फिल्में चाहे वो शाहरुख साहब की हो, चाहे वो अजय देवगन साहब की हो, या सलमान भाई की हो, बड़ी बड़ी फिल्में जो है वो करते हैं, अपना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाया, तो उसने मेरी फिल्म को ही सजेस्ट किया।
1: जी जी।
0: और मेरी फिल्म को ले लिया उन्होंने, और अब तो जागो को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलीज किया हीरोज ने।
1: बिल्कुल।
0: तो ये एक मेरे लिए कामयाबी वाली बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए।
1: इसके बाद आपने क्या किया?
0: इसके बाद एक शॉर्ट मूवी बनाई, वो मुंबई एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मुंबई एंटरटेनमेंट इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो उसके बाद में मेरी उम्र भर की एक मेरी एक वो थी, बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला।
1: जी जी।
0: 2022 में। उसके बाद में फिर मैंने एक मूवी और बनाई, शॉर्ट मूवी। अब मैं थोड़ा सा मतलब क्या है कि मैं

0: आपको ये करने के लिए, मैं भाई काम तो काम है।
1: जी जी जी
0: फिर उसके बाद मैंने देवता बनाई। सर देखिए वो देवता भी जो है मेरी चले गई खजुराहो इंटरनेशनल के अंदर, उसको भी बेस्ट मूवी का अवार्ड मिल गया।
1: जी जी
0: उसके बाद में सर मैंने अभी फिलहाल मैंने 5 एपिसोड आखिर कौन वेब सीरीज, बहुत प्यारी वेब सीरीज है, और उसके साथ आमिर खान साहब एक हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उस फिल्म के अंदर। हम लोगों ने वो बहुत प्यारी वेब सीरीज, सस्पेंस वेब सीरीज है, तो वो बन चुकी है। बस अभी हम OTT पे बहुत जल्दी आएगी, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी तो मेरे काफी प्रोड्यूसरों से मीटिंग चल रही है, और काफी मतलब प्रोजेक्ट है मेरे हाथ में, बस अब वो कंप्लीट होंगे उसके बाद में फिर देखेंगे क्या होता है।
1: बिल्कुल
0: सर मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ।
1: जी बताइए।
0: वो ये है कि मैंने तो संघर्ष किया,
1: जी
0: 35 वर्ष संघर्ष किया, संघर्ष क्या होता है ये मुझे पता है। तो सर मैंने एक अपना चैनल बनाया,
1: अच्छा,
0: वन टेक,
1: ओके,
0: और उसमें मैंने ये सोचा कि जो संघर्षशील लोग हैं, जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं,
1: यस,
0: उनकी प्रतिभाओं को जो मैं लोगों के सामने लाऊं, तो सर मैं उसमें बहुत कामयाब हो गया। तकरीबन आज समझ लीजिए कि 10 एपिसोड उसके मैंने कंप्लीट कर दिए हैं।
1: जी जी
0: उसमें मैंने फिरोज बॉस करके फाइट मास्टर है, बहुत काफी फेमस फाइट मास्टर है और बहुत नेक इंसान है, मैंने सबसे पहले उनका एक प्रोग्राम बनाया, उसके ऊपर उनकी प्रतिभाएं बताई, उसके अंदर उनका इंटरव्यू लिया। देखिए ये तो एक ऊपर वाले की देन होती है, आदमी अगर सच्चे दिल से अगर मेहनत करता है, लगन करता है, तो ईश्वर उसको जरूर कामयाब करता है। तो कुछ ऐसा हुआ कि फिर से मुंबई जो फेस्टिवल था, वो फेस्टिवल के अंदर उस एपिसोड को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया।
1: अरे वाह,
0: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर। फिर मेरे अंदर एक ऊर्जा पैदा हो गई, और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो मैं अभी मतलब मेरा एक प्रोग्राम आता है, जो मैं नई प्रतिभाएं हैं, जो हमारे भारतवर्ष में, भारत देश के अंदर जो प्रतिभाशाली लोग हैं, और जिनकी प्रतिभाएं लोगों तक पहुंच नहीं पाती है, जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उनका प्रोग्राम बनाऊं, दर्शकों तक मैं वो पहुंचाऊं। तो मैं ये काम भी करता हूं, और निःशुल्क करता हूं सर, और मैं उसमें कामयाब भी हूं, और ईश्वर चाहेगा तो आगे भी कामयाबी मिलेगी।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आप आए और अपने सफर के बारे में आपने अच्छी बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने का।
0: धन्यवाद।
2: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।

दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता। आशिक का तेरे क्या होगा अंजाम तो बता।

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: अंगना में बाबा द्वारे पे मां।
0: रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगली।
2: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर मां।

0: आनंद।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती हूँ। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सांसों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुनो, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?

0: कहने को तो बहुत कुछ है ना। कल रात मैंने एक सपना देखा, तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करती हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी है।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत पद कामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके, फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अफुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
2: देख झरना, मुझे तंग मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है,
0: इसीलिए तो कहती हूँ प्रीत किए दुख होए।
2: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
2: कब तक नहीं मानेगा, मैं इंतजार कर सकती हूँ।
3: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
2: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, तो ज्यादा भरोसा मत करना।
2: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती है।
3: तुम घंटी बजाओ और बेटे को बुलाओ।
2: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
3: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
2: अच्छा आओ चले।
4: नीरा जी।
0: कौन है?
4: वही आपका रोमियो।
0: ओ, आप क्या कहना चाहते हैं?
4: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर ये कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो ये है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
4: करेक्ट, पर ये मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ पर प्रेम नहीं।
4: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
4: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
4: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
4: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए।

0: हेलो नीरजा,
1: तुम यहाँ भी?
0: यहाँ तुम, हाँ हम।
1: मेरा ख्याल छोड़ दो,
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह, धन्यवाद।
0: सुनिए, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: मुझे देर हो रही है, चलो धरना। कुछ भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी। तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी।

0: क्यों नहीं कर लेती? अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है।
1: A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं, मुझे तो उससे नफरत है।
0: चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए। बेचारा कितने अरमान रखता है।
1: देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊंगी।
0: अच्छा भाई, चुप हो गई।

0: अच्छा भी चुप हो गई, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करे।
1: मैं मगर हूँ।
0: यू सिलिगम। लो वो आ गया तुम्हारे चहेते का बंगला।
1: रामू
2: जी,
1: आनंद बाबू हैं?
2: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
1: अकेले?
2: जी नहीं, साथ में एक थी।
1: थी? नाम?
2: नाम तो मालूम नहीं, पर
1: ठीक है। आनंद जी आए तो कहना मैं आई थी।
2: जी अच्छा।
1: ओह छन्ना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
0: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
1: फिर मजाक।
0: वो तो मेरी आदत है सच। तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
1: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दिया। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम उसे क्यों रूठ कर, क्यों रूठ कर। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जब मैं तुम्हें नहीं पा सकी। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।

0: नीरजा
1: हेलो
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम देते हो?
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए नीरजा, फैशन की गुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुल मिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: शायद दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के लिए।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। ठीक है और मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
0: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ओ नीरजा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा?
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो नरूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, तो मैं कभी तुम्हारा दिल ना दुखाती।
0: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
1: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
0: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो?
1: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
0: बस
1: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
0: बस
1: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
0: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता, अब बहुत देर हो चुकी है।
1: क्या?
0: और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए तो, मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक थोड़ी ही देर बाद प्रस्तुत होगा आपके बीच में।

हम सुन रहे थे ये गीत यंगिस्तान फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज में। कौशर मुनीर ने इसे लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत, शान और श्रेया घोषाल ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

0: हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रेफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर के बोलों के साथ अनु मलिक के संगीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

हम सुन रहे थे यू मी और हम फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। मुन्ना दीमान ने इसे लिखा और विशाल भरद्वाज ने इसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चित्रलोक का यह अंतिम गीत।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हम सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का यह गीत एआर रहमान की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके

0: राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि

0: भारत में वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
1: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं स्वास्थ्य एवं परिवार

0: कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए में। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ, जिसे लिया गया है गजल फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, साहिल लुधियानवी के हैं बोल, मदन मोहन।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में कैफी आजमी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज़ की आवाज़ें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की पुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्रीबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहां पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफी म्यूजिशियनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा प्यार, और गाने बजाने की बातें ज्यादा होती थी राधर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज, जो तबले की जो पहली आवाज या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पे डाला कि अगर मैं

रो रहा हूं और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह रखा
1: साहब, और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और किन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीजें जो है वो देखने से आई, कुछ चीजें सीखने से आई, और कुछ चीजें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, खास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब,

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहां मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: और वहां पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई। उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति

0: सहयोग दिया रमेश गोखले ने, विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी, जो

0: विविध भारती छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती पेस्ट।

की खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नजारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नजर में समाये लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जो वो आ जाए तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के बाकी नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

यहाँ भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरी नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़ दिल पे एक तराना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा, दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना, तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए
1: कहिए सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सनसिटी चैनल है। सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11 शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: Governing Council की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26